0: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज। जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 9052829868।
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज। इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू।
2: सिंस 1993 MWC फूड बैंक्स हैव प्रोवाइडेड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद नॉन पेरिशेबल फूड, हलाल मीट एंड एसेंशियल हाउसहोल्ड आइटम्स। ओवर 10,000 फैमिलीज अक्रॉस कनाडा रिलाई ऑन MWC फूड बैंक्स टू सप्लीमेंट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। वी सर्व इन स्कारबोरो, मिसिसागा एंड इन फर्स्ट Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: Apna Hum Safar Global Travel and Tour.
4: Global Travel and Tours. मिसिसागा में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। IATA अप्रूव्ड एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं। PIA के कंसोलिडेटर

0: 3555-905-275-3555.
1: 918 Dundas Street East, Unit 1C, Mississauga. तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777 आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजुर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें 416-566-3642 घर तो सभी ले देंगे अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642
2: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
1: 416-904-2046 or 416-662-7861.
3: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at Law and Personal Injury Lawyer. At Alam Law Office, no fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
4: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
5: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में मौका हाथ से ना जाने दें अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6777

यूएस में वो इम्पैक्ट आता है उसकी नीचे जाने का। अगर ऑयल स्टेबलाइज होती है तो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज या एनर्जी सेक्टर टोरंटो में कनाडा में ऊपर जाता है, क्योंकि हम हमारे पास एनर्जी सेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है स्टॉक मार्केट के हवाले से। ओके जी, टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजिंग, नो मेजर सेल ऑफ दिस वीक और रिकवरिंग आफ्टर प्रायर वॉलिटैलिटी और टेक इज होल्डिंग ग्राउंड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल फ्लो, पैसा कहाँ से कहाँ मूव हुआ, रोटेशन जो है वो इंडस्ट्रियल और स्टेबल टेक में रही और मार्केट इज स्टिल वेटिंग फॉर नेक्स्ट कैटलिस्ट कि नेक्स्ट जो है वो ट्रिगर क्या होगा और उसमें मार्केट मूव करेगी। अच्छा जी, यूएस सेगमेंट में जो बड़ी चीज रही, एक तो फेड डिसीजन, फेडरल डिसीजन रहा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टडी रहेंगे 3.5 to 3.75%, नहीं मूव हो रहे वहां से। और जो अर्निंग हैवी वेट है इस वीक वो इंटेल रहा, उनकी मैसिव Q1 जो है वो रिपोर्ट आई है, और मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड एज सेफ हेवन क्योंकि एआई के बहुत ज्यादा काम होने की वजह से दे आर गेटिंग इनटू अ प्रॉपर टेक स्टॉक एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इट। बैंकिंग क्रैक जो है वो रेयर आर पब्लिक डिवाइड विद इन द सेंट्रल बैंक, द अनसर्टिनिटी इज कॉजिंग ऑल सेल ऑफ द रीजनल यूएस बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर में कुछ डिफरेंस रहा यूएस के मार्केट में, क्योंकि जो है वो अगेन बाइंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन दैट साइड। टोरंटो मार्केट को डिस्कस करते हैं, TSX जो है वो स्लाइटली मोर स्टेबल देन यूएस जो हम देख रहे हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो स्टडी रही है, बट स्ट्रांग ग्रोथ नहीं रही है, लेकिन इट्स नॉर्मल, इट्स गेटिंग टुवर्ड्स दैट। की ड्राइवर्स कौन से, अगेन ऑयल स्टेबलाइजेशन की वजह से एनर्जी सेक्टर ने लूज किया थोड़ा सा अपना जो है वो पॉइंट, लेकिन टेक TSX बिकम्स मोर बैलेंस क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा जो है वो डायनामिक्स नहीं है जिस तरह यूएस में है। सो वी आर हैविली रिलाय ऑन इधर ऑयल, वी आर हैविली रिलाय ऑन इधर एनर्जी इन ऑयल एंड हैविली रिलाय ऑन टेक, और जो भी हमारा इम्पैक्ट आता है वो यूएस के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, विच इज वाई वी आर सींग इट। कमोडिटी बैलेंस, मेटल जो है स्टेबल रहा और मटेरियल सेक्टर दे आर एट द न्यूट्रल लेवल। डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी जो इस वक्त चल रही है कैनेडा की, दे आर इन टू अ डिफरेंट शेप क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी इम्पैक्ट आता है, दैट्स वॉट उसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो उस इम्पैक्ट से गुजरती है। अच्छा जी, क्या रहा कैनेडियन में, कैनेडियन ऑडियंस जो है वो जो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जंप हुआ 2.4% अप फ्रॉम 1.8%। देर आर लॉट ऑफ ले ऑफ, प्रॉब्ली यू हैव हर्ड अबाउट, रॉजर्स ने अपने 10,000 जो है वो एम्प्लॉयज को उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट देने का जो है वो ऑप्शन निकाला है, और मेजॉरिटी जो जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, दे प्रॉब्ली आर टेकिंग इट। दूसरा जो है वो डिफरेंट टेक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं। The Canadian market from job perspective or from that perspective is not that big right now and we are seeing a lot of gaps in the market. Achha ji, TSX mein rotation kya raha, winners jo hai wo energy rahi, Suncor, CNRL aur materials mein Barrick Gold raha, oil jo hai 107 pe raha aur gold jo hai wo nearly staying near records. Canada's dirts and pipes are only thing that keeping the TSX in the deeper side. लूजर्स कौन रहे, टेलीकॉम और यूटिलिटीज, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी की वजह से दे आर लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन। स्प्रिंग इकोनॉमिक अपडेट की क्या रही कि इस वक्त ऑटवा रिसेंटली टेबल दिस अपडेट शोइंग अ डेफिसिट ऑफ $66.9 billion और ये फिस्कल एक्सपेंशन जो है ये हाई एनर्जी कॉस्ट पे एंड इज पुटिंग कैनेडियन डॉलर ऑन प्रेशर। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इस वक्त। जो ट्रेड चल रही है यूएस वर्सेस कनाडा इज 0.73 और ये जो है वो अब प्रेशर आ रहा है कैनेडियन डॉलर पे। अगर हम यूएस तो कैनेडियन मार्केट का कंपैरिजन करें इस वक्त, सो वोलेटिलिटी में मार्केट फेस कंसोलिडेशन यूएस की है और स्टेबलाइजेशन जो है टीएसएक्स की है। वोलेटिलिटी मॉडरेट वर्सेस लोअर, लीडरशिप एक वीक है, रोटेटिंग है, लीडरशिप चेंज हो रही है, सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं वहां पे, कैनेडा में बैलेंस हो रहा है, राइट, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्टर लीड ले रहा था एंड देन टेक वॉज गेटिंग डाउन, बट नाउ इट्स बैलेंसिंग इट आउट। की ड्राइवर्स क्या रहे यूएस में, इन्फ्लेशन और रेट्स रहे, यहाँ पे ऑयल एंड स्टेबिलिटी रही की ड्राइवर्स। स्ट्रांग सेक्टर इंडस्ट्रियल वर्सेस इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल्स और वीक सेक्टर एनर्जी एंड एनर्जी ऑन द बोथ साइड।
अच्छा जी, बिफोर वी गो आई वुड लाइक टू शो यू गोल्ड प्राइस, जो कि हम हर वीक देखते हैं। इस वक्त आज की जो गोल्ड शेयर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये, और ये इस वक्त की प्राइस है, अगर ये लोड हो जाए, 423.68, ये थोड़ा सा नीचे आया है। और इसको आप बिल्कुल जो है वो देखें, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गोल्ड की प्राइस से। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी, सो यू विल सी इंक्रीज इन दिस चार्ट एज वेल। ETF हम देखते हैं, आई शेयर का जो है ETF, एक सेकेंड, हाँ जी, ETF हम देखते हैं यहाँ पे, और ETF की प्राइस इस वक्त है 53.42, ये इसी रेंज में फ्रॉम 49 टिल 55, दैट इज मूविंग हियर एंड देयर, लेकिन इट्स गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इट विल गिव यू रिटर्न इन द लॉन्ग रन। इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यूज करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें, एंड दैट्स वेयर यू विल गेट मेजर रिटर्न आउट ऑफ इट। So this was it, folks. Thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Kiani. Inshallah, next week we'll see you with the different market. Hopefully, sari business sahi hona shuru ho jaye. Aur jo maine shuru mein Microsoft ki jo nahi product ke baare mein zikr kiya tha, usko zarur uske upar research karein. It's called Microsoft Silicon, and that is going to change a lot of things. Aur uski wajah se Microsoft ka jo stock hai, wo bhi aage badhega. So keep watching The Art of Investing. I'll see you inshallah in the next week. Bye.

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
4: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
5: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
6: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
7: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
8: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्फ बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
9: At Alam Law Firm, our tireless efforts in the pursuit of justice for our clients include an unwavering belief. Beyond the courtroom battles, we forge meaningful connections with our clients.
10: Supporting our local community is integral to the values we hold dear.
11: Every single client file we represent at Alam Law bears my personal touch, a commitment that I stand by.
12: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.

0: Then let Talhawar Tea serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhawar Tea. 647-295-7861. Then let Talhawar Tea serve you the best.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: The Law Professionals at TM Law providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters and real estate serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca.

0: इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी थी. इस गाने में बड़ी मुश्किल मुश्किल मींडे थी, बीच में जगह थी, वो चीज भी आपने अच्छी निभाई, और फिर जो उसमें वेस्टर्न बिट्स थे वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से किया. देन ऑफकोर्स टूडे यू आर ऑल्सो ऑन अनदर, लाइक यू नो, इन अनदर एवटार, यूर अ वेरी, यू नो, फ्रॉम वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम, एंड beautiful, enjoyable performance. Thank you so much for it.
1: Thank
0: it was
1: so much,
0: wonderful. Thank you
1: so much.

0: एक्साइज टैक्स जो है उसके हवाले से, उसको सस्पेंड करने, फ्यूल टैक्स जो है उसको सस्पेंड करने के बारे से बात की. सो कितना इंपॉर्टेंट है आजकल जो ईरान अमेरिका वॉर के बाद जो क्राइसिस है, स्पेशली इन दी पावर एंड फ्यूल हम रोजाना देख रहे हैं, तो क्या इसके पीछे क्या खास बात थी, गवर्नमेंट ने क्यों सोचा इसको?
1: तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि रहे हैगे अभी प्राइस ऑफ गैसोलीन हैगी या डीजल, इट्स फ्लक्चुएटिंग डेली बिकॉज देर इज अनप्रडिक्टेबिलिटी, राइट? यूक्रेन वॉर वेले भी अपन ने देखा देखा था कि प्राइसेस स्काई रॉकेटेड, इंक्रीज क्वाइट अ बिट, एंड इट वाज डिफिकल्ट. राइट नाउ प्राइसेस आर कंटिन्यूइंग टू फ्लक्चुएट, एंड वी वांट सपोर्ट कैनेडियंस इन दिस टाइम. दैट्स
0: सही
1: व्हाई अंटिल we're going to suspend the federal excise tax on fuel, and that will help save 10 cents per liter for gasoline and 4 cents for diesel. Previously, जो मार्क कार्नी साहब प्राइम मिनिस्टर बने,
0: जी.
1: एक्चुअली दो इनिशियल स्टेप्स थे. पहला तो उन्होंने इनकम टैक्स दी ब्रैकेट जी हैगी है वो कटाई सी, पहले इनकम टैक्स ब्रैकेट थी, एंड दैट हेल्प्ड रिलीव इनकम टैक्स एट अबाउट $800 अ ईयर फॉर अबाउट 22 मिलियन कैनेडियंस. दूसरी चीज जो की सी, वो जो कंज्यूमर कार्बन टैक्स सी वो रिमूव कर दिता सी, उदो 18 सेंट्स का फर्क पिया सी गैस दे विच. वी सॉ गैस कम डाउन इन जून ऑफ 2025, एंड नाउ वीव टेकन दिस नेक्स्ट स्टेप टू रिमूव और सस्पेंड एक्साइज फ्यूल टैक्स सो दैट दोबारा लोगों को रिलीफ मिल सके एट द पंप. ये नाल काफ़ी इंडस्ट्रीज भी इंपैक्टेड हैगी है, जिस तरह अपनी ट्रकिंग इंडस्ट्री खास करके अपने एरिया दे विच इज़ अ हब फॉर लॉजिस्टिक्स, एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मेकिंग श्योर दैट अपना जरा जो भी चीज़ें लॉजिस्टिक्स के थ्रू जा रही हैगी ने भी वो भी इंपैक्ट ना पवे. सो दैट्स अबाउट 28 सेंट्स एट द पंप.
0: ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਲਕੁਲ ਸਸਪੈਂਡ ਕੁਝ ਲਿਮਿਟਿਡ ਟਾਈਮ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰੈਵਨਿਊ ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ. ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੀ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਬਸ ਇਤਨੇ ਅਰਸੇ ਸੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਉਹ ਫਿਲਹਾਲ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਔਰ ਇਸਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਾਮਲਾ ਦਾ ਫਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ, ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਸੋ ਮੈਨੀ ਟਾਈਮ, ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਲੇਕਿਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸਦਾ ਅਸਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ.
1: देखो एवरी डे जो उन्हों की नैगोशिएशन हैगी है, जो स्टेटमेंट्स आ रही ने, वैदर इट्स ईरान की स्टेटमेंट तुसी कल देखो, जां प्रेजिडेंट ट्रंप दियां, जां दूसरे जिहड़े एलाइज पार्टनर्स इस नैगोशिएशन दे विच मदद कर रहे हैगे ने, वी आर होपिंग फॉर अ पॉजिटिव रेजोल्यूशन ऑफ द स्ट्रेट ऑफ होर्मूज, सो दैट जिहड़ी ग्लोबल price of oil hegi a oh dobara stable price te aa jave. That's why eh ek temporary relief hega for the time being, so that lok up de future summer de levy plans bana sakan. We know in Canada there are many communities that Canadians live in jithe car hona necessity hegi a, it's not a luxury but it's a necessity, and we want to make sure be is time de vich ohna te impact kataya jave, but of course long term we want a resolution of that situation. Situation. And so that's why we are going to wait and watch and see. But as we work on long-term solutions, a temporary relief hega lokale, just like the groceries and essentials benefit jidi tusi gal kiti hegi hai pehla, oh June 5th nu, oh date assi huni announce kiti hegi hai, June 5th nu, jira pehla payment. ਹੈਗਾ ਆ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ GST HST ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇਸ ਬੈਨੀਫਿਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ. ਜੂਨ 5th ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਆਊਗਾ. ਇਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ 50% ਮੋਰ ਦੈਨ ਦੇ ਯੂਜੁਅਲੀ ਗੈਟ, ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਟੋਪ ਅਪ ਹੈਗਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਉਹ 25% ਹੋਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਫੋਰ ਦ ਨੈਕਸਟ 5 ਈਅਰਸ. ਦਿਸ ਇਜ਼ ਟੂ ਹੈਲਪ ਜਦੋਂ same thing, temporary relief for the next 5 years so that lokan nu support aj mil sake, but at the same time we're not just relying on this. Assi investments vi kar rahe hai gyan greenhousing de vich supply chains nu hor majboot karne di koshish kar rahe hai gyan through diversification, name partners lab rahe hai gyan outside of the US that we can do trade with, and jede apne interprovincial trade barriers vi hage apne mulk de vich provinces nu bitha ke oda vi samjhota ho reha hai ga ya, so that the price of goods

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
4: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
8: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
1: मिसेस आगर रिचवे
0: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
2: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti, 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca.
2: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677

जैन, मुझे लगा कि तुमने शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था तुम्हारी आवाज में, लेकिन जिस तरह ये गाना चलता गया मुझे लगा कि तुम कंफर्टेबल होते जा रहे हो। अंतरे में आके मुझे लगा कि तुमने गाने को पकड़ा और उसके बाद से गाना खुल गया। मैं समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस थी और आई होप कि लोगों को भी अच्छी लगे।

0: ये महमूद और अयाज है जो रोटी कमाने के लिए भाग रहे हैं, और ये है करीम से, इन्होंने ज्यादा रोटी खा ली और अब भाग रहे हैं। बेचारे गुलखान के पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो एक बनियान खरीद सके। और ये है स्वीटी, इनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी बनियान ही खरीदती हैं। अमजद सुबह से एडमिशन की लाइन में खड़ा, और शहरी जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सकीना आपा आज बहुत खुश है, उन्हें राशन की पर्ची जो मिली है। पर्ची तो हमें भी मिली थी लेकिन भत्ते की। हमें लगता था इस शहर में पैसे का ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन पैसे आने के बाद की प्रॉब्लम्स का हमें कोई आइडिया नहीं था।
1: फरहान यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इतनी शोबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस महीने की दूसरी पर्ची है, दूसरी।
2: मैं भी तो कब से कह रहा हूँ आपसे कि सब कुछ बेचते हो, निकलते किसी दूसरे मुल्क।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं ये फैक्ट्री नहीं बेचूंगा। क्षमा गया, आखिरी निशानी है यार, आखिरी।
2: अभी की आखिरी निशानी अचार है शकील भाई, वो तो हम किसी मुल्क में भी बेच सकते हैं।
3: हेलो, पैसे मिलते ही एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर।
1: जी पप्पी भाई, जी पप्पी।
2: क्या क्या क्या कर रहे हो शकील भाई?
1: मेरे लाल, देख, मैं तो कहता हूँ कि ये सब कुछ बेच के यहाँ से निकल जाते हैं यार।
2: वाह शकील भाई, आप तो पर्ची से ज्यादा पप्पी से डर गए हैं।
1: क्या करूँ यार, शरीफ वादी हूँ ना यार।

0: हेलो
1: समझ रही है।

0: कुछ काम मिला?
1: नहीं, मेरे कैलिबर की कहीं कोई जगह खाली नहीं। सुबह बिल्डिंग का ठेकेदार मिला था, उसको मजदूरों की जरूरत थी, मैंने तो अपना नाम लिखवा दिया भाई।
2: क्या क्या कह रहे हो शकील भाई, पागल हो गए हो क्या? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे है? समाचार के सीईओ का साला बजरी उठा रहा।
1: अबे जहां का तू सीईओ था ना, वहां का मैं एमडी था।
0: अब तो जाग जाओ फरहान, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हम इस हाल में।
2: मेरी

0: मेरी हरकतें और तुम
1: ये देखो ये
0: इन हालात में भी ब्रांडेड जॉगर्स पहन के घूम रही है ये औरत।
2: मिट्टी देखी है तुमने? मेरा पेडिक्योर खराब होगा तो दोबारा कराने के पैसे तुम दोगे?
0: पैसे तुमने छोड़े कहाँ है ना, छोड़े कहाँ पैसे, लाखों रुपयों के तो ब्रांडेड बैग खरीद लेती थी तुम। आज उन बैग में रखने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं हमारे पास।
2: अच्छा, और खुद को भूल गए हैं? गाड़ियाँ ऐसे बदल रहे थे जैसे फोन बदल रहे हो, और फोन ऐसे जैसे कपड़े बदल रहे हो।
0: कपड़ों का नाम लेके तपाना नहीं मुझे, कपड़ों का नाम लेके नहीं तपाना। ये तुम्हारे फैशन के चक्कर में ना सारा दिवालिया निकल गया हमारा। और किधर गई तुम्हारी वो सारी सहेलियाँ, गर्ली गैंग, जिनके चक्कर में वो तुम लॉन की एग्जीबिशन लूट लेती थी? अरे इतने तो आसमान में तारे नहीं है नैना, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है तुम्हारे फोन में है।
2: देखो
3: यार, बस करो यार, बस करो, बस करो। शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था।
0: हमारी किस्मत? हमारी किस्मत नहीं, तुम्हारी किस्मत शकील भाई। अरे क्रिकेट से लेके घोड़ों की रेस तक आज तक कभी कुछ जीता है तुमने? अरे 25 करोड़ डुबा दिए तुम्हारे भाईजान ने, 25 करोड़।
4: चले थे शाहरुख खान बनने,
0: क्रिकेट टीम खरीदूंगा। किसने कहा था कराची प्रिंस खरीदने को, किसने कहा था?
3: अरे माफ कर दो भाई, माफ कर दो, सारा कसूर मेरा है यार।
0: क्या हुआ? क्या हुआ?
3: मिलावट वाली दाल खा खा के ना पथरी हो गई है यार।
0: ऐसे हालात में ना शकील भाई लोग फाके करते हैं। आपको किस गधे ने कहा था दाल खाने के लिए?
3: अबे ओ ख्वाबों के शहंशाह, कल को दाल भी नहीं मिलेगी।
2: क्या हो गया हम लोगों को? पहले भी तो गरीब थे, ऐसे लड़ते तो नहीं थे ना। वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा।

0: तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तुम्हें मेरी शॉपिंग से प्रॉब्लम थी?
1: छोड़ो ना इन बातों को। वो देखो चांद कितना खूबसूरत लग रहा है।
0: हाँ, आज फुल मून है ना?
1: हाँ, ये मून कहाँ है?
0: वो तो रहा आसमान पे।
1: अरे ये नहीं, अपना मून।
0: आज इतने सालों बाद उसकी याद कैसे आ गई?
1: अच्छे वक्तों में किसी की याद नहीं आती, बुरे वक्त में ही दोस्त याद आते हैं। अरे मून की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है। अरे तू कॉल कर रहा है?
2: ओए कैसा है यार तू?
1: मून
2: है किधर?
1: मैं ठीक, साइड पे हूँ ना।
2: साइड पे? साइड पे? कौन सी साइड पे?
1: हाँ साइड पे, साइड पे ही तो हूँ। वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया ना, बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग
2: है रात में?
1: दिन में टाइम कहाँ मिलता है यार, क्लाइंट्स, मीटिंग्स, शोरूम्स। और नैना, नैना भी तो है, उसको भी तो टाइम देना पड़ता है। शादीशुदा जिंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं है दोस्त।
2: वो तो सुन, फिर मैं भी अपनी जिंदगी मुश्किल करने जा रहा हूँ।
1: क्या?
2: और शादी कर रहा हूँ मैं, शादी।
1: क्या कह रहा है यार?
2: और तुम सबने आना ही आना है।
1: कहाँ?
2: साउथ अफ्रीका।
1: साउथ अफ्रीका? अरे नहीं यार मून, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, वो काम बहुत फैल गया यार।
2: और तू फैलना बंद कर, मैंने टिकट करा दिया और तुम सब लोगों ने आना है। अब केप टाउन में मुलाकात होगी। ओके फिर
1: मून,
2: टीसी टीसी आना है। हां बाय
1: शकील भाई। मुबारक हो शकील भाई। मुबारक हो शकील भाई, हम साउथ

0: सोचा खुशी का मौका है, एक एक हो जाए आज फिर है।
1: शकील भाई आप लो ना। नहीं यार पहले तुम पियो ना।
0: ओ कमाल करते हो, पकड़ो यार शकील भाई, ओ पकड़। चेयर्स भाई।
1: हाँ ये है ना, बैठो।
2: अरे चेयर्स शकील भाई, चेयर्स।
0: चेयर्स चेयर्स चेयर्स। यार अच्छा किया तुम लोग यहाँ पे आ गए, और यू गाइस आर द ओनली फैमिली आई हैव यार।
1: ये क्या कह रहा है? अरे कह रहा है कि
0: मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन है।
2: अच्छा तू ये बता, तू यहाँ पहुंचा कैसे?
0: भाई पैसे आने के बाद मैंने सोचा वर्ल्ड टूर करना चाहिए, और यार पाकिस्तान से आगे कभी गया ही नहीं था। तो सबसे पहले मैं गया दुबई, उसके बाद मैं आ गया साउथ अफ्रीका।
1: अच्छा
0: फिर यहाँ से आगे कहीं जा नहीं सका।
2: क्या पासपोर्ट खो गया तेरा?
0: ओ नहीं यार, यहाँ एक पार्टी में ना परी दिख गई।
1: फरहान मैं पहले ही कह रहा था कि इसके पास परी है, तभी तो इसके पास इतना पैसा आ गया।
0: ओ नहीं यार शकील भाई, परी फियांसे मेरी।
1: पाप पाप पाप पाप पाप पाप
2: मंगेतर मंगेतर।
0: उसके बाद मैंने तय कर लिया कि यहाँ से आगे तो नहीं जाता।
2: पर तू करता क्या यहाँ पे?
0: और म्यूजिक के अलावा आता ही क्या था? तो आज यहाँ का सबसे बड़ा डीजे कौन है?
2: कौन?
0: आपका भाई। ओ, ओ, ओ, है यहाँ पे।
3: क्या बात है,
0: इसी बात में चेयर शकील भाई। चलो हो जाए। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम लोग तो बताओ क्या किया इतने पैसों का है?
1: यार हमारे पैसे तो
2: स्टॉक्स में डाल दिए।
1: एक रात में डबल
2: डबल।
1: फिर वहां से निकाले तो प्रॉपर्टी में डाल दिए। एक महीने में ट्रिपल
2: ट्रिपल।
1: तो मल्टीपल बिजनेस है हमारे।
3: क्या बात है,
1: पानी से लेके पेट्रोल तक सब बेच रहे। अभी शकील भाई कंस्ट्रक्शन का काम भी तो शुरू किया हमने। वो बना रहे, वो लंबा सा नहीं होता, लंबा सा
0: घंटा घर।
1: वो घंटा नहीं यार, वो बुर्ज खलीफा बना रहे कराची में। कटी पहाड़ी पे बीचो बीच।
0: क्या कहने, बड़ा लोकेशन घुट चुके
1: हैं अपनी तो किस्मत ही चमकी।
0: और रोने की क्या बात है इसमें?
1: यार तेरी समझ में नहीं आएगा पगले, तरक्की बहुत हो रही है। हमारी खुशी के आंसू है।
0: कमाल हो गया, जब भी दे
4: उनकी तो किस्मत ही चमक गई। घर कितना अच्छा है और परी भी कितनी अच्छी है। वैसे पता चला करता क्या है?
1: बड़ा मशहूर डीजे है। हाँ, और उसका यहाँ पे अपना डिस्को भी है।
4: वाह, काम का काम, पार्टी की पार्टी।
5: पार्टी तो हम भी कर सकते थे अगर तुम्हारे भाईजान मान जाते तो। कब से कह रहा था सब कुछ बेच बाज के दूसरे मुल्क चलते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो पाकिस्तान में अचार बेचना था। अब हो गया ना सब चट।
1: अपना मुल्क अपना होता है फरहान।
5: तो अपना मुल्क अपना होता है ना, लेकिन अपने मुल्क में अपना पैसा कौन रखता है? सारे पाकिस्तानी रईस अपना पैसा मुल्क से बाहर रखते हैं, और एक हम है पर्चियों के हाथ डाले बैठे।
0: हाँ जी, किस सार की बातें हो रही हैं भाई?
4: गुड मॉर्निंग।
0: इधर मॉर्निंग जी।
5: वो शकील भाई कह रहे थे कि तेरी शादी है ना, तो दूल्हे को नोटों के हार डालेंगे।
0: कमाल है यार शकील भाई, इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो और आर नोटों का, हीरो का, आर पेनों का बता रहा हूँ मैं।
2: क्यों नहीं?
6: The famous Prince Sheikh Sultan Al Baklava has graced Cape Town. His Highness ki tashreef aavri kisi mulk ke liye sirf fakhr ka baais hi nahi hoti balki betahasha zar-e-mubadla bhi saath lati hai. Khawateen o hazrat, jaise ki aap apni screens par dekh sakte hain ki is waqt Sheikh Sultan Al Baklava Cape Town pahunch chuke hain aur unke saath aaya hai nihayat hi beshkeemat o nayab unka ye golden kamo
7: जी हाँ, ये पॉट सिर्फ सुनहरे रंग का ही नहीं है खवातीन हजरात, बल्कि ये बना है 24 कैरेट खालिस सोने से। इसकी मालियत का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस पॉट की एक खास बात ये भी है,
2: कमाल है यार, पॉट शेख सुल्तान हमारे मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ये सोने पे अगर
8: लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ये पीछे सोने का कमोट लेकर।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: पहले कि हम कस्टमर को ढूंढते, कस्टमर ने हमें ढूंढ लिया।
1: अच्छा है ना, फालतू की लुक्का छुप्पी से बच गए। अब उसका पॉट उसी को बेचेंगे।
0: एक दफा तो मूतूंगा।
2: घर आई लक्ष्मी पे मूते नहीं है रे।
1: ए सिंगाड़े, उठा इसे अंदर रख, फालतू में दोबारा पैक करना पड़ेगा।
3: ओ यार,
4: हेलो बेबी, और तुम्हारा ड्रेस मैं इधर ही ले आया हूँ घर पे, अब ये ही आके ट्राई कर लेना, ताकि सबसे पहले दुल्हन को दुल्हा जी देखें, हैं?
5: Moon, listen to me. There's been a situation. शेख का पॉट चोरी हो गया, पूरे स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
4: वो सोने का कमोड।
5: हाँ, मेरा फोन बंद रहेगा, घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो घर पे बता देना प्लीज।
4: हाँ बता दूंगा। अच्छा सुनो, ओ फरहान, ओ सुन तो सही। अरे ओए, वो शेख अल बकलावा था ना, उसका सोने का पॉट और चोरी हो गया।

0: कादर ड्रेस देखना, हमने खोला तो ये निकला।
1: ये क्या है मून?
2: परी ने तो ड्रेस ही दिया होगा। ये कहां से आ गया? कोई कंफ्यूजन है।
1: सोना?
0: सोना?
1: सोना?
2: फोन पे कह रही थी कि पॉट चोरी हो गई है, पुलिस आई हुई है, अब उसका फोन बंद जा रहा है। पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है?
3: मैं न्यूज में देखती हूँ, शायद कुछ आ रहा हो।
1: गुड आइडिया, लगाओ जल्दी।
4: कहा जा रहा है कि मालियत के एतबार से ये दुनिया की पांचवी बड़ी चोरी है, और इस नौयत की चोरी के पीछे किसी बहुत ही बड़े और खतरनाक गैंग का हाथ है। ये वाकया रोनुमा हुआ है जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में, जहाँ शेख सुल्तान अल बकलावा ने ऐलान किया है कि जब तक उनका एक अमाउंट मिल नहीं जाता वो बाथरूम नहीं जाएंगे।
5: अबे और ठाकरे, जल्दी से फोन लगा बेचारे को, कहीं प्रेशर से फट ही ना जाए।
6: ए, तेरे हगने का बंदोबस्त हो गया है।
7: What?
6: We found your pot.
7: Good job.
5: शेख, एक घंटे के अंदर अंदर नेल्सन बॉलीवुड पहुंच, पैसों के साथ।
4: गोल्डन कमोड चोरी हो गया है।
3: लगा फोन?
2: नहीं, उसका फोन अभी तक ऑफ जा रहा है। परी किसी मुश्किल में ना हो यार। सुनो, मैं पुलिस को फोन करने लगा हूँ, उनको सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये बॉटम तक कैसे पहुंचा।
1: मर पाएगा, पागल हो गया क्या तू?
2: क्यों?
1: तू पुलिस को फोन करके सब कुछ बताएगा और वो मान लेगी? अरे पॉट के साथ साथ हमें भी उठा के ले जाएंगे।
2: और ये पाकिस्तानी पुलिस थोड़ी है।
1: वही तो, पुलिस पाकिस्तानी नहीं है, हम तो पाकिस्तानी है। और ऊपर से मुसलमान भी। चोरी के साथ साथ दहशतगर्दी का केस भी डाल देंगे। दुनिया में सबसे पतली गर्दन किसकी शकील भाई है? सारे फंदे हमें ही फिट आते हैं। दुनिया में जब भी कुछ बुरा होता है सबसे पहले हमें ही तो उठा के ले जाते हैं। देखो हम सब परेशान हैं, मिलके कोई हल निकालते हैं।
7: ओए, ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसको समंदर में फेंक देते हैं, ओसामा बिन लादिन की तरह।
3: नहीं, और... नहीं, नहीं, नहीं, एक सेकंड। घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। हम इसको गार्डन में दफना देते हैं। फिल्मों में वैसे भी यही होता है।
8: वो लाश को दफनाते हैं नैना, ये कमोड है।
2: यार क्या बातें कर रहे हो तुम लोग यार, ऐसा करने से क्या होगा? और पुलिस तो फिर भी ढूंढ लेगी इसको, और कुत्ते लेके पहुंच जाएंगे वो इसको तलाश करते। देखो हमें ये पॉट किसी भी तरह पुलिस तक पहुंचाना ही होगा।
1: एक आइडिया है, एक आइडिया है इस पॉट को पुलिस तक पहुंचाने का।
7: क्या?

0: कॉइन दे, कॉइन, अरे कॉइन दे दो,
1: ये लो, पांच,
0: अरे पाकिस्तानी नहीं चाहिए यार। हेलो,
2: हेलो,
0: पॉट नेल्सन बॉलीवुड में है, आके ले जाओ।
2: व्हाट?
3: अबे अंग्रेजी में?
0: गोल्डन पॉट इज एट नेल्सन बॉलीवुड, कम कम जल्दी, कम कम गेट इट।
2: Who is this?
0: रामानुम अफराज।
2: What?
3: चलो क्या?

0: करने के लिए तो ये भी ठीक है, फिर सारे शेख को सोने का पॉट क्यों चाहिए? इतने सारे सोने से कितने लोगों की जिंदगी बन सकती है यार? बन तो हमारी भी सकती है। शकी भाई, शकी भाई उठो, शकी भाई।
1: कौन?
0: चलो चलो उठो। अरे उठ जाओ ना।
1: कौन लेके जा रहा है यार?
2: Hold it, buddy. Not so fast. I want to see what's inside.

0: the fuck's this? Where's the pot?
1: Pot to isi mein tha. Koi gadbad hai.
0: Bloody cheaters!
2: Sheikh, hamari baat suno, Sheikh.
0: You call the cops.
2: Police!
3: You call the police, bastard kullu arami.
2: Fat pig.
4: क्या कर रहे यार, पुलिस आ जाएगी।
1: किस्मत दूसरा मौका दे रही है भाई, तब्दीली आ सकती है, हमारी जिंदगी बदल सकती है। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। चलो चलो, हिम्मत करो।

0: Good morning, ladies and gentlemen. I understand and appreciate that you've all been extremely anxious about this case. So it is my pleasure to announce that after a grueling investigation, we have managed to recover the pot. After a day or two with our forensic team gathering evidence, it will be returned to Prince Sultan immediately. I would also like to take this opportunity to make mention of our detectives.
1: Oh, yaar, shukr hai, yaar. Oh, mil gaya pot police ko. Wala. Aur tera idea kaam kar gaya, Farhan meri. John. Oh, Shakil bhai, mubarka. Oh, chappiya. Eh, chappiya. Bhai, bhajiwa. Oh, kyo ka?
2: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
3: सुने आप लोग नाश्ता तो कर लें।
2: हाँ हाँ
1: और नाश्ते ही बाहर करते हैं।
3: मैकडॉनल्ड्स चलते हैं।
1: ओए ओके हो गया फिर तो है? कौन है कौन है कौन है कौन है
2: फरहान ये क्या हो गया
4: शकील भाई चुप हो जाओ
3: पता चला पॉट मिल गया
1: पता तुझे क्या लग रहा है मैं अपनी शादी की खुशी में नाच रहा
4: हूँ शकील भाई मैंने खुद रखा था मेरी पुलिस कैसे लगी
3: मुझे बताओ अब अगर जेट लैग उतर गया तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो बहुत मजा आ रहा है यहाँ भी क्या कर रही हो ये तुम क्या कर रही हो हेल्प करा रही हूँ पर हम तो नाश्ता करने के लिए बाहर जा रहे हैं
1: ओ,
3: तो पहले क्यों नहीं बताया आई एम आल्सो स्टार्विंग चलो
1: चलो ए पिया सेब आओ जाओ आओ बेबी कांट वेट चलो आओ शकील भाई आओ फरहान जल्दी
3: चलो
2: चलो चलो चलो
3: नैना मेरे साथ चलो तुम वहीं से घर चले जाएंगे ठीक है
1: See you there, take care.
5: पॉट पुलिस तक कैसे पहुंचा
6: बॉस कसम से मुझे कुछ नहीं पता बॉस
5: पता तो तुझे है और तू बताएगा भी
6: नो बॉस नो नो बॉस नो
7: मुकतलुल नदाल आर रईस अल कुरूफ अल
8: बला ये क्या बोल रहा है शेख
7: यू ब्लडी खराबी
8: गाली नहीं शेख देखिए सब में कुछ लोचा है अपने को सेटल करने दे
7: से तो तुम किया जो पॉट पुलिस को दिया
8: शेख पॉट पुलिस को हमने नहीं दिया वैसे भी तुझे पॉट चाहिए था ना वो हम देते या पुलिस क्या फर्क पड़ता है
7: फर्क पड़ता है पॉट में डायमंड्स दे
8: डायमंड अबे कौन से डायमंड्स
7: बिग डायमंड्स जो मैंने तुझसे खरीदा और पॉट में रखा
8: शेख चूतिया मत बना यार पहले तेरा पॉट चोरी हुआ उसमें हीरे आ गए थोड़ी देर बाद तू कहेगा कि तेरी 150 बीवियां और 500 बच्चे भी उसमें थे हम मान लेंगे क्या अबे तेरा पॉट है या पोतने का कान जो हर चीज उसमें घुसने जा रही है
7: घुसेगा तो पुलिस वाला अगर पॉट से हीरे निकले अगर नहीं निकले तो मैं ऐसा घुसाऊंगा कि हीरे तुझसे निकलेंगे समझा

0: पॉट में हीरे थे और हमें पता ही नहीं था।
1: शेख को फोन मिला और थैंक यू बोल।
0: क्या?
1: शेख को फोन मिला और थैंक यू बोल, क्योंकि उसी ने हमें बताया है कि पॉट में हीरे हैं। अब ना उसे हीरे मिलेंगे और ना पॉट। फिर देखते हैं कौन किसके अंदर घुसता है।
2: क्या हुआ?
3: वो यार मून, हमने तुझसे कुछ छुपाया है।
2: ओ, क्या छुपाया है? क्यों सस्पेंस बढ़ा रहा है?
3: अब हम अमीर नहीं रहे यार। हमने तुझसे झूठ बोला था।
4: हाँ यार, हमारे साथ वही हुआ जो हमने बैंक के साथ किया था।
3: फैक्ट्री चल गई यार मून, फैक्ट्री चल गई।
4: हाँ यार, हमारे तो दिवालिया निकल गया यार। फैक्ट्री के जलते ही हमारे पैरों से जमीन और सर से छत निकल गई। एक रात में सब खत्म हो गया यार, सब खत्म।
3: हमारे खाने के लाले पड़ गए यार। कसम से 3 दिन के बाद फ्लाइट में खाना खाया
4: और मैंने तो दो मंगवाया था यार।
3: कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और अचानक से एक दिन तेरा फोन आया दोस्त।
2: ओ यार, तो ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
3: क्या बताते तुझे यार, क्या बताते? हमने सोचा तू इतना खुश है, अपना दुख बता के तेरे रंग में भंग क्यों डाले हम।
4: हमारे पास तो तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है यार। तू इंसान नहीं है, फरिश्ता है। फरिश्ता?
3: हाँ फरिश्ता।
2: ओ यार, तुम लोग परेशान नहीं हो यार? हम दोस्त हैं, वी आर लाइक ए फैमिली। और तुम लोगों का जब तक दिल करता है मेरे पास रहो यहाँ पे। मैं हूं ना, सब देख लेंगे। हैं शकील भाई?
4: क्या बात की है यार।

0: Cekil Bey.
1: Ha. Alo.
0: मोहन
1: हाँ?
0: हमने तुझसे कुछ और भी छुपाया है।
1: अब क्या छुपाया है वो भी बता दे।
0: वो पॉट था ना
1: हाँ?
0: वो सोने का था
1: हाँ? और ये बात पूरे साउथ अफ्रीका को पता है फरहान। चल आजा।
0: वो पॉट हम रात को वापस ले आए थे
2: हाँ? मगर अब वो पुलिस ले गई है।
0: हाँ।
1: कहाँ से?
2: मेरा ख्याल है गाड़ी में से निकाल के।
1: वो गाड़ी में से?
0: फक।
1: अबे साले यार तीन के साथ तीन में क्या बोले थे? क्या बोले थे? ओ फरिश्ता, ओ फरिश्ता, ओ साला चूतिया बना तेरी गाड़ी के अंदर मुझे।
3: क्या कर रहा है शकील भाई है यार। शकील भाई है।
1: और शकील भाई की पैर को चल। ओए अपना दिवालिया निकलवा के फिर निकलवाओगे?
0: सही है।
1: तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? कह दो ना, कह दो मजाक कर रहे हो हैं?
4: कौन सी मनहूस गली थी जब मैं तुम लोगों को यहां ले आया और डायन भी साल घर छोड़ देती है? जल गए है ना? जल गए मेरी खुशियों से जल गए।
0: अरे
4: झाड़ के किया तूने, तूने झाड़ के।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं।
4: तू क्या कह रहा था?
0: क्या
4: तू क्या कह रहा था? हैं रंग में भागी डालना चाहता और डाल दिया और तूने रंग में भागी डाल दिया यार। और कीड़े पड़े तुम दोनों को।
1: हेलो
5: क्या कर रहे हो? आ जाओ।
1: आ रहे चलो।
6: कितनी अच्छी जगह है ना।
5: हाँ? हाँ?
6: हाँ? जगह हाँ? अच्छी है। यू ओके?
1: या
5: थैंक यू।
7: कांग्रेट्स
5: फॉर व्हाट?
7: दे फाउंड द पॉट। आई कैन सी यू वर्क एट द ग्रैंड हेरिटेज होटल।
5: ओह या थैंक्स।
7: यू आर वेलकम। एंजॉय योर ब्रेकफास्ट।
5: पूरे केप टाउन को पता है यार होटल की रेपुटेशन तो गई।
7: पता कितनी पुलिस आई थी?
5: अच्छा? पूरे स्टाफ को रोक लिया था। सारी रात इन्वेस्टिगेशन की है। लग रहा था जैसे हम ही चोर हैं। उल्लू के पट्टे। बट यू गाइस हैव नो आइडिया यहाँ की पुलिस का बहुत ही तेज है। कैन यू इमेजिन एक रात में पॉट ढूंढ लिया।
6: वाओ।
5: आई एम टेलिंग यू नेक्स्ट 24 आवर्स में तो चोर को भी पकड़ लेंगे। फिर देखना कैसा जूस निकालते हैं उसका।
6: निकालना भी चाहिए।
8: Please help us! We are Pakistani!
9: Currently the most wanted criminals by the police.
6: क्या कर रहे हो फरहान?
0: Sorry.
5: You okay?
0: Sorry.
7: Hope you're enjoying your breakfast.
6: I'm loving it.
5: Moon, bye!
1: Okay.
0: यार गलती हो गई, माफ कर दे। हम पाकिस्तान वापस चले जाते हैं।
2: हम आज ही चले।
4: हाँ सही बात है, बहुत अच्छे। और सारा कचरा करके है? और मेरे पीछे पुलसे लगा के अब कटने के चक्कर में हो? एक इंच नहीं ले दूंगा तुम लोगों को यहाँ से।
10: ओके आई एम फॉलोइंग।
4: और जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता ना तुम दोनों। ओ पुलिस, ओ पुलिस, पुलिस,
0: गाड़ी नहीं रोकता, गाड़ी नहीं रोकता। बोल
4: गाड़ी नहीं रोकूंगा, गोलियां मारने का मुझे। इसको सच बता दो कि मेरा कोई कसूर नहीं है इस मामले में। मैं नहीं हूँ।
0: क्या कह रहे हैं?
4: मैं इतनी शराफत की जिंदगी गुजार रहा था, कहाँ से आ गए तुम लोग?
2: हम तो तुम्हारी खुशियां बांटने आए थे।
4: यार खुशियां बांट रहे थे कि चाट रहे थे? कौन सा ड्रेस?
5: मेरा वेडिंग ड्रेस।
4: वो शादी वाला। मैं दोनों में कॉल कर दूँ।
0: अबे ये तो गंदी फिल्मों का हीरो लग रहा है।
2: Your tire is flat. Your tire is flat.
4: Oh, thank God.
2: What?
4: Thank you.
0: Thank you.
4: Thank you.
2: Have a nice day.
4: You too. वो सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी थी। हाथ ना लगाई गाड़ी को। तेरी खराब है। फरार? शकील भाई?
2: What do you mean?
0: तो फिर पुलिस को क्या मिला?
10: Sir, excuse me, sir. So, why are you talking that we have the pot?
11: To confuse the thieves. Get them relaxed, get complacent, and then we go after them hard. They think they're so smart. They don't know who they're dealing with.
10: हेलो
12: सिपी पुलिस को जो पॉट मिला है वो अपना है बता किधर है
13: साला लगता है तुम लोग का भी कोई बाप निकला है पुलिस को कोई पॉट नहीं मिला इट्स अ ट्रैप
0: अगर पॉट पुलिस को नहीं मिला और अपने पास भी नहीं है तो ये पॉट है कहां
14: बॉस Give me one chance, boss. मैं पता लगा लूंगा बॉस कि पॉट कहाँ है
0: पॉट यहाँ है और पुलिस को जो भी मिला है हमें एक और मौका मिला है सोच मूल इतना सारा सोना हमेशा के लिए गलाजत का ढेर बना रहेगा लेकिन अगर हम हिम्मत करें तो सैकड़ों लोगों की किस्मत चमक सकती है
10: क्या
0: अगर हम ये पॉट रख लें हम इसे बेच के दोबारा फैक्ट्री ले सकते हैं उसमें हजारों लोग काम करेंगे यार उनके घरों के चूल्हे जलेंगे उनके बच्चे स्कूल जाएंगे अरे लोगों के पास खाने को नहीं है यार खाना तो क्या पीने का पानी तक खरीदते हैं यार लोग और ये सलेच्चे इनको हगने के लिए अरबों रुपए चाहिए अबे जब लगेगी तो ना जंगल देखेंगे ना बिस्तर कहीं भी पूत लेंगे यार देख ये अमीर लोग ये लोग अगर आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दें तो दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी यार मून सोच
2: मून फरान ठीक कह रहा है यार
0: कुछ बोल यार
14: इसको रखेंगे कहां पे

0: वो यार ये तो लग नहीं रहा सोने का है ना।
1: शकील भाई हग दे यार।
2: अरे उर्दू वाला नहीं शकील भाई, अंग्रेजी वाला हग दे।

0: कौन है?
1: बहुत चील लोग है। आई हैवन्ट सीन देम बिफोर। देसी लगते हैं।
0: एक काम कर, उठा ला। हम भी तो देखें ये नामालूम अफराद कौन है जिन्हें हम नहीं जानते।
1: ओके।
2: फरान उठना यार, उठो यार, मेरे पेट में पथरी नहीं है।
3: लाउड वाली दाल नहीं खाई।
2: अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, पथरी नहीं है, हीरे हीरे असली।
3: किस सटिया गया क्या शकील भाई सुबह सुबह?
2: अरे चल के देख लो,
3: क्या बकवास है यार। शकील भाई यार छोड़ दो यार, शकील भाई क्या यार मुंह समझाओ यार, क्या है
2: ये देखो। अबे देख
4: मुंह, ये देख खूब तरीके है। शकील भाई क्या खाया था?
2: अरे यार तुम लोग ही बुफेट में ले गए थे, सब कुछ खा लिया था मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा था।
4: लग तो असली रहे।
2: हाँ
4: तू निकाल ना।
5: थैली लेके आता हूँ, थैली लाता हूँ, ठहरो जरा।
4: थैली
5: थैली थैली थैली थैली थैली थैली कहाँ, थैली कहाँ, थैली कहाँ है?
4: किधर है? यहाँ देख ली, यहाँ पे इधर तो नहीं है। चाहिए भी आपको मिली?
2: अबे छोड़ो, घर में थैलियाँ कहाँ मिलेंगी? अरे वो तो अम्मियाँ होती हैं जो थैलियाँ छुपा के रखती हैं।
4: अरे चाहिए भी बातें कम करो यार, ढूंढो यार।
2: अबे ढूंढो ओए, अरे कराची होता तो सड़क से उठा लेते। अबे

0: के बारे में तो सुना था,
1: हीरे देने वाला बुड्ढा पहली बार देखा है।
2: ओ, अच्छा हुआ ऑपरेशन नहीं करवाया, वरना सारे हीरे डॉक्टर ले जाता।
3: शकील भाई फिर आएगी क्या?
2: अरे खिलाओगे तो आएगी ना, तेज गांव की तरह आएगी। इसमें क्या मसला है, ये क्या कोई रॉकेट साइंस है?
4: मैं पकाता हूँ, मैं पकाता हूँ। शुक्रिया भैया, बैठो आराम से। मैं पकाऊंगा आपके लिए। तो ओके, चावल चावल तो खाओगे ना? चलिए कर रहे हैं।
2: खिलाओ।
4: क्या खाऊं शकील भाई? केला खाओगे? केला?
2: अबे एक से आना बंद हो जाएगी, दो खिला।
4: नहीं नहीं नहीं नहीं, रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये लो, दो खा, दो खा।

0: पैसे के लिए तुम्हारा पेट है पॉलिटिशियन, सब कुछ खा के भी कुछ नहीं कर रहा।
1: नहीं यार, मिस कॉल थी।
2: माश की दाल है तेरे पास? अब अबे चने पड़े तेरे पास?
3: और शकील भाई एक बार जमाल को डका लो, सारे ही रेबार आ जाएंगे। हैं
0: आ गई।
4: शकील भाई कर ली?
1: अबे कर रहा हूँ यार, कर रहा हूँ।
4: हाँ करो करो आराम से, खुल के आ।
5: पता है क्या मुन, ये हीरे ना तूने बड़ी मेहनत से निकाले, ये सारे तू रख ले, अब जो भी निकलेगा

0: and let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: वो मैं रख लूंगा।
1: है, पागल समझा तूने मुझे है? और इस दफा ज्यादा खाना खाया उसने, इतना ही रह निकलेंगे, सारा राशन भी खत्म कर दिया ऊपर से उसने।
2: शकील भाई कर ली।
3: शकील भाई क्या हुआ? हुई
2: शकील भाई हुई
1: ओई।
4: अबे लगता है जितने थे वो पहले ही निकल गए।
3: अच्छा झूठ बोल रहे हो, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, इसने छुपा लिया सब। खोलो दरवाजा, खोलो खोलो, मुझे देखना है अभी, खोलो। अबे तू क्या कर रहा है? देख रहे थे, खोलो दरवाजा। तू छुपा लिया सच्ची भाई। ए चली भाई ये क्या? ओ ओ ओ ओ
1: क्या बोल रहा था तू? इस बार जो भी निकला वो तेरा
5: ले ले ले ले ले ले।
3: ये तो चले गए।
1: पाइप पे आ जाओ।

0: पीछे तो गटर कितने साफ हैं।
1: हाँ यार, मैं भी पहली बार ही अंदर आया हूँ। कोई इनमें से हमारा भाई कौन सा है, ये कैसे पता चलेगा?
0: शकील भाई, आप सुन के बताओ ना, आपको तो अपनी का आइडिया होगा।
2: अबे मैं क्या कुत्ता हूँ जो सुन के बताऊंगा, या मैं निंजा टर्टल हूँ जो गटर।
0: अच्छा, लड़ो नहीं, हीरे ढूंढो, चल पाइप ढूंढते हैं।

0: There's nobody. पर पॉट मिल गया बॉस।
1: उनको छोड़, पॉट लेकर आ।

0: क्या मिल गया?
1: और पाइप मिल गया हमारा।
0: अबे मिल गया शकील भाई, पाइप मिल गया। निकल निकल निकल जल्दी निकल जल्दी। देखे हाँ देखे
2: शकील भाई।
3: क्या अबे क्या हुआ?
0: देख रहे कि नहीं है? अबे क्या हुआ
3: यार शकील भाई?
0: हाँ
3: यार लगता ही रहे तो आगे निकल गए।
0: कैसे आगे निकल गए? ठीक से देख।
1: तू देख ले आगे यार, तू अपने नाक घुसा ले।
0: बदबू है यहाँ पे। अभी तो देख नहीं रहे, तो कुछ भी नहीं है।
1: ओ हीरे, ओ हीरे, ओ हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे, हीरे,

0: सुनो,
1: ओए ओए इनको रखे कहाँ पे?
2: अमन, तू यही रुकना, मैं दोबारा जाके फ्रेश करता हूँ, यही रुकना, चल चल चल, चल।
1: अरे चुप चुगी भाई,
2: चल चल, आराम से, देखे।
1: आजा, शकील भाई, ओह, आये।

0: तो शकीब भाई।
1: अच्छा बेटा, इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत थी? इतनी ज्यादा बरी बना ली तुमने? हाँ,
0: वो अपनी खुशी से लाए भाई, पूरे खानदान के लिए गिफ्ट्स होंगे ना, सिर्फ बरी थोड़ी होगी, है ना?
2: देना। अब बरी में तो सिर्फ ये ज्वेलरी आंटी जी, अगली।
0: ओके।
1: अच्छा,
3: और ये भूल गया, ये कौन देगा?
2: ये भी है, ये भी। ये बड़ा कीमती आंटी जी, तो संभाल के
3: प्लीज।
1: उफ, इट्स वेरी ब्यूटीफुल,
3: है ना?
1: डोंट वरी बेटा, I'll put it in my safe.
0: Oh, very good, very good. और इनका सेफ तो इतना सेफ है कि उसका कोड आज तक मुझे भी नहीं पता।
4: लो, कर लो बात। वादी बात।
0: शेख भाई,
2: यही रहना है। बोलो ना, बताओ ना। इसका।
0: वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं?
3: जे? हम तो आ रहे हैं।
0: हाँ। कहाँ से?
5: इसका मतलब है कि हम आपके आ रहे हैं।
1: लेकिन आप लोग तो आ चुके।
5: यही तो हम आपको बता रहे हैं आंटी, कि हम आ गए हैं।
0: मैं समझा ना?
5: दरअसल हमारे यहाँ रस्म है कि शादी से 2 दिन पहले लड़के वाले लड़की के यहाँ रहने के लिए आते हैं।
1: मून बेटा
2: जी,
1: ऐसी किसी रस्म के बारे में आपने पहले तो नहीं बताया।
2: होता क्या ना कि लड़का जब
3: ये भी तो रस्म है आंटी, ये भी तो रस्म है, बताना नहीं होता, बताना नहीं होता आंटी। अगर बता देते हैं तो दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक बहुत बुरे तरीके से बीमार हो जाता है आंटी, और कभी कभी तो
1: नहीं बेटा, बताओ बताओ
3: आंटी। ऐसे मुंह से निकली हुई बात भी तो कभी कभी सच हो जाती है ना। वैसे पहले आंटी मैं इनमें से किसी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता था, बिल्कुल नहीं। लेकिन जब मैंने नहीं माना था, याद है आपको, एन रुखसती वाले दिन नैना को चिकन पॉक्स।
1: अच्छा किया तुम लोगों ने बता दिया। यू ऑल मस्ट स्टे हियर, मस्ट, आई इंसिस्ट।
4: क्या बात कर रही आंटी, पॉप इनकी बातों में आ गई, इनकी। आई डोंट बिलीव ऑल दिस। नो,
0: मून बेटा, बड़ों की बात को मानना चाहिए, और फिर आंटी इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो फिर यू मस्ट स्टे हियर। यस,
4: एग्जैक्टली।
5: हां मून, देख ले फिर चिकन पॉक्स। हां
3: आंटी, चाय बहुत अच्छी बनाती है आंटी।
1: ओके
2: जी, बड़ी
1: ये खाए ना आप लोग बिस्किट।
5: हां, वन बिस्किट
1: ये ले।
5: ओह, वन ओनली
1: चिकन पॉक्स। हां
3: जी जी।
6: क्या हुआ ठाकरे?
7: हाँ। बॉस, बॉस, पूरी सस्ते के तो पार्ट।
6: साले सिंघाड़े, हीरे कहाँ हैं? हीरे कहाँ हैं?
7: बॉस, हीरे तो पार्ट में होंगे।
8: हीरे पार्ट में नहीं है।
9: Where the fucking diamonds?
6: पहले तू कह रहा था हीरे पॉट में, अब कह रहा है कि पॉट में नहीं है। खेल रहा है क्या? तू जानता है कि हीरे हमारे पास नहीं है।
9: तो ढूंढो, या तो मैं हीरे लूंगा या तेरी जान। जॉब इस घंटे तेरे पास, अदरवाइज खलास।

0: चलो ना,
1: कहाँ ले जा रही हूँ नैना?
0: पहले मेरी बात सुनो।
1: अच्छा देखो तो सारे,
0: नहीं ना इधर आओ।
1: क्या हुआ?
0: सुनो तो सही, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या नई नई कहानियाँ बना रहे हो तुम? कब हुए थे मुझे चिकन पॉक्स? चल क्या रहा है फरहान?
1: नैना तुम्हें नहीं पता बहुत मसला हो गया है।
0: कैसा मसला?
1: अरे ये मोहन के हालात तो बहुत ही खराब है, हमसे भी ज्यादा फुकड़ है।
0: क्या?
1: हाँ तुम्हें पता है उसने हमें यहाँ टिकट देके क्यों बुलाया?
0: क्यों?
1: क्योंकि उसको लगा हमारे पास पैसे हैं, हम कर्जा चुकाएंगे उसका।
0: हैं?
1: हाँ बहुत खतरनाक लोगों से कर्जा लिया हुआ उसने। वो तो घर पे आ गए थे, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकले। अब कहाँ जाते, होटल के पैसे तो है नहीं ना, तो दो तीन दिन यहीं गुजार लेते हैं, शादी हो जाएगी फिर निकल जाएंगे, फिर मुंह जाने और वो लोग।
0: बिचारी परी।
1: क्या बिचारी परी, हमें अपनी पड़ी है बिचारी परी, बताना नहीं किसी को। चलो चलो सब देख।
0: फरहान नहीं मुझे ये तो बताओ।
1: रहने दो ना, वो देखो सब। हाँ बहुत आला, अरे हमारे नाचो नाचो।
2: अगर हीरे पॉट में होते तो पुलिस शेख को नहीं छोड़ती, इसका मतलब है जिसने हमसे पॉट उड़ाया हीरे उसी के पास है।

0: Moon.
1: तुम क्या कर रही हो इधर?
0: एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी थी।
2: करो बेबी।
0: ज़्यादा चिपको नहीं।
1: तू शांति से इनकार तो नहीं कर रही? वो क्या होती है, वो लास्ट मिनट एंग्जायटी, वो तो नहीं हो रही ना बेबी?
0: अरे नहीं यार, इंपॉर्टेंट बात है। वो शेखल बकलावा है ना, उसको मैंने फोन पे बात करते हुए सुना है।
1: क्या कह रहा था वो?
0: वो किसी को कह रहा था कि जो पॉट है ना, उसमें हीरे थे। और अब हीरे नहीं है।
1: ये बात तुमने पुलिस को तो नहीं बताई ना बेबी?
0: नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब बता देनी चाहिए।
1: क्या पुलिस को थोड़ी बतानी है? पुलिस को नहीं बताते बेबी? ये शेख लोग जो होते हैं ना, ये बड़े डेंजरस होते हैं, हैं? तो तुमने ये बात तो नहीं बताई ना किसी और को?
0: नहीं।
1: भूल जाओ, हैं? बिल्कुल ही भूल जाओ। और दो दिन में शादी है हमारी,
0: तो
1: क्यों बिलाओ जा हम हीरों के चक्कर में पड़े?
0: लेकिन मैं सोच रही थी कि
1: और नहीं सोचो ना, तुम ना सोचो। अब तुम जाके वो लो, वो ब्यूटी स्लीप लो, हैं? वो डार्क सर्कल्स हो जाएंगे आपको। जाओ शाबाश।
0: Okay.
1: सो जा जाके। गुड नाइट, बाय।
0: आर यू श्योर कि नहीं बताना चाहिए?
1: यार मैं करता हूँ हीरो का कुछ, है? आप सो जाओ जाके। ओके
0: ओके ओके।

0: मैं तो कहता हूँ हीरे बेच देते हैं।
1: और बेचेंगे तो तब ना जब हमारे पास होंगे। हीरे तो आंटी के पास रखवा दिए थे।
2: तू तो ऐसे कह रहा है यार जैसे 10 साल बाद शादी। अरे कल शादी है, कल मिल जाएंगे हीरे, परसों भेज देंगे।
1: एक काम करते, उधर आ, नुक्कड़ पे खड़े होते हैं और आवाज लगाते हैं, भाई हीरे ले लो, हीरे ले लो हमसे।
0: अरे
1: और हीरे है खीरे नहीं है जो एमवी बिक जाएंगे। करोड़ों का पॉट है शेख का, करोड़ों का, तो हीरे कितने के होंगे? एमवी चलते फिरते कस्टमर मिल जाएगा। मेरी बात मानो, चुप करके ना शेख को हीरे वापस कर देते हैं। जान भी बचेगी और इज्जत भी, सुकून की जिंदगी गुजारते आगे। क्यों बहुत हो गया यार एडवेंचर, बस सब।
3: मून सही कह रहा है फरवान, बहुत हो गया एडवेंचर।
0: ठीक है यार, हीरे शेख को वापस कर देते।
1: हाँ
0: हाँ, लेकिन मुफ्त में नहीं।
4: तुम मून को कब से जानती हो?
5: It seems like I've known him forever.
4: तो तुम मून के बारे में सब कुछ जानती हो?
5: Of course यार, और वो भी मेरे बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन हाँ एक बात नहीं जानता।
4: वो क्या?
5: तरा,
4: ये क्या है?
5: उसके घर की चाबी।
4: एक
5: नंबर का भुलक्कड़ है वो। मैं कब से कह रही हूँ मुझे मेरा शादी का जोड़ा ला दो, मेरा ड्रेस ला दो, लेकिन लाके नहीं दे रहा। अब क्या मैं शादी का ड्रेस शादी के बाद पहनूंगी?
4: परी, हम मून के घर नहीं जा सकते।
5: हम मून के घर आ गए हैं।
4: क्या यार,
5: हम बस आ गए हैं, बस थोड़ी सी देर, बस
4: 2 मिनट की बात,
5: 2 मिनट लेंगे
4: परी,
5: बस ड्रेस उठाएंगे और हम अभी चले जाएंगे।
4: परी
5: बस 2 मिनट यार, 2 मिनट लेंगे, चलो चलो।
4: परी मेरी बात तो सुनो।
5: अरे यार अभी हम निकल जाएंगे,
4: बस 2 मिनट, हम बाद में। मैंने बोला था ना कि बाद में आ जाते हैं।
3: सोना और हीरे दोनों एक साथ थे, औरत ने तो हाथ मारना था।
6: साला, लगता है लाइफ लॉन्ग ज्वेलरी बनाने का प्लान था।
3: चले
4: जी,
5: जी।
0: अपने कपड़े और जेवर ठीक कर लो।
3: प्लान क्या है?
0: पता नहीं।
3: हाँ?
0: सोचा नहीं ना।
1: फिर हम प्लान के आगे पागल हैं।
0: अरे रिसेप्शन पे चल के शेख का रूम नंबर किसी तरह निकालना है। अपना सारा जनान अपन इस्तेमाल करो, ठीक है? चल।
3: Hello, beautiful.
7: Hello, beautiful. What? I'm here to see Sheikh Baklava. Could you please tell me where the princess stays?
0: Selfie.
7: Sheikh Baklava. Sheikh Baklava. Oh, don't shoot, please. I'm just a big fan. You're so gorgeous. Can I take a selfie with you, please? Just one. Please make a bout. You're so lovely. I can't believe this. Mr. Baklava, you're so handsome. He's right. Oh, she's and right. So big.
6: Too big. You are too what?
7: Hot.
3: Shukran. Shukran.
7: Naughty Sheikh.
3: Why don't you come to my room?
7: No.
3: I will treat you with some baklava. It make your life more flavorful.
6: I love all kind of flavor.
7: And I love baklava. You're so sweet.
3: Okay, come with me.
7: Let's go. Come on.
3: खली
7: so smart. Oh, don't do this. Oh, come on.
3: You come on.
7: Come
1: on. Hey, it's poison. Chup, chup. Shor mein jaega na, to dubha denge andar.
2: If you want your diamonds, call on this phone. Okay?
0: तेजाबी पत्तियां ले रहा हमारी।
8: बाय बक्कू।
0: साले का फोन भी सोने का यार। चलो चलो।
4: हम किडनैप हो गए हैं परी। और अब हमें रेप होने से बचना होगा। हाँ?
5: तुमने YouTube पे सेल्फ डिफेंस वीडियोस देखी है ना?
4: हाँ, नहीं।
5: Okay, then just follow me.
2: कर रही है चुप कर
4: बच्ची है स्टूपिड है ना थोड़ी सी पता है क्या आप लोग इतने डिसेंट लोग लग रहे हैं लग ही नहीं रहा कि किसी लड़की को नुकसान पहुंचा सकते हैं है ना पता है क्या आप लोग हमें प्लीज जाने दें हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे है ना मून आपके सारे पैसे वापस कर देगा इजी सिंपल नो प्रॉब्लम नो टेंशन
6: अरे चौपाटी की पानी पूरी पर हमें तो पैसे चाहिए ही नहीं छिपकली
3: हीरे कहाँ
2: साला नाम बखलावा और इतना कड़वा दिल कर रहा तेजाब से कुल्ली कर लूं
1: तू एक काम कर तू हार्पिक पी ले
3: यार मैं तो कह रहा हूँ कि यार इसको चार्ज करो बकलावा फोन करेगा तो ये बंद
2: अरे जानबूझ के बंद किया शकील भाई जानबूझ के बंद किया जरा उससे तड़पने दो थोड़े रेट बढ़ाते हैं कितने पैसे मांगे
3: नहीं नहीं मैं कहता हूँ पैसे वैसे छोड़ो एक दो तेल के कुएं मांग लेते
2: एक तो जहाज भी मांग लेते दो चार महल भी मांग लेते 70-80 टन सोना भी मांग लेते ये शेख है आमिर लाकर सिर्फ कैश की ऑप्शन है हमारे पास कैश के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है क्यों उनसे ही कह रहा हूं तू बता
1: देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी खुशी से जो भी देगा ना चुप करके रख लेंगे वैसे भी टाइम कम है हमारे पास
2: अबे हीरे बेच रहा है सिग्नल पे फूल जितने खुशी से दे देगा रख लेंगे अरे भाई रहने दे यार तू मैं खुद ही कर लूंगा इस डील के बीच में तू मत पड़ तेरे जितने पैसे होंगे ना तेरे मुंह पे मारेंगे एंड में
3: हां तेरे मुंह पे मारेंगे गरीब लोग
1: हेलो
9: कल सुबह 10 बजे अटलांटिस फैक्ट्री आ जाना
1: कौन बात कर रहा है कहाँ आ जाना
6: क्योंकि हीरे तुम्हारे पास हैं
2: नैना
0: नैना नैना
2: भरी
3: अब लड़कियां हमारे पास अब जल्दी से गूगल खोल और यहाँ पहुंच
6: ले आ लौंडियां

0: वहां से कैसे निकलवाएंगे चोर?
1: तुझे तो पता होगा ना कि आंटी लॉकर कहाँ रखती है। मैं सोच रहा था कि
2: अबे जेम्स बॉन्ड, तू अपनी प्लानिंग बंद कर दे यार, तेरी मेहरबानी। बच्चा अगवा करवा दी यार तूने। मून तू सोच यार, मैं भी सोचता हूँ।

0: अब मैं कुछ कहूं, नैना भी उन लोगों के पास है शकील भाई।
1: इन्हें ऊपर रख देना ठीक है, और फिर रूम की कीज मुझे दे देना। थैंक यू। Is her phone switched off?
2: कोई आंटी को देखे भी? आंटी जी, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको।
1: और मैं परी को कब से ढूंढ रही हूँ। परी परी
2: हाँ परी परी ने ये भेजी आपके लिए, डायमंड की रिंग है, संभाल के रखना सेफ के अंदर।
1: लेकिन ये लोग खुद कहाँ हैं? फोन भी बंद आ रहा है उसका।
2: वही आंटी जी, वो लड़कियों की लास्ट मिनट शॉपिंग यू नो, आ रही है, आ जाएगी बस।
1: तो उसे कहो मुझे फोन करे।
2: हाँ जी।
3: आंटी को पता लगने से पहले परी को घर लाना होगा। हाँ
2: रुको, इसको बंद कर दो।
1: कौन है?
4: रिंग रख दी सेफ में आपने?
1: बस दो मिनट देना बेटा।
4: टेक योर टाइम जी।

0: दो, फेफड़े जल जाएंगे।
1: हाय, सुबह से सिगरेट तक पीने का टाइम नहीं मिला। कल शादी है, फिर परी चली जाएगी। इतनी मुश्किल से पाल कर बड़ा करो और फिर कोई उल्लू का पट्ठा आता है, दो दिन में आई लव यू बोलता है और आपकी बेटी को ले जाता है। लुक इट हिम एंड लुक इट हर, जैसे हूर के साथ लंगूर। पता नहीं परी ने क्या देखा उसमें, क्या पता दिल का अच्छा हो।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: लॉकर ही उठा लेते हैं।
1: अरे कोर्ट का क्या करेंगे,
0: लॉकर तो उठा लेते, फिर कोर्ट को भी देख लेंगे ना। कोई है? जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्द

ना, ये तो कपड़े उतारो। शर्ट में टैटू भी है इसका, देखो सूरज बना हुआ है। टट्टू कितने बाल है इसके। अबे जाना।

0: 가요. 아주 저기 빨리 하죠. 잘하게 잘하게. 할 말이면 끄소, 할 말이면 끄소. 저. 오빠 안 잘리가 이 아저씨 와피스 미래 가면. 왜 간다 잘리 가루? 꼴이 니 봐다. 또 또래 비디오 니 봐라이 थी. तुझे किसने कहा था पीछे से आवाज देने के लिए? आंटी सामने आ गई कद्दू कुछ नजर नहीं आया. तू तू ट्रिपल जीरो ट्राई कर. अबे ट्रिपल वन ट्रिपल जीरो ट्रिपल नाइन सारी ट्रिपलें ट्राई कर ली नहीं खुल रहा.
1: हाँ सारे ट्रिपल ट्राई किए.
0: अबे तू रोक मून. मैं इसको तोड़ के खोलूंगा शकील भाई. रोक गाड़ी रोक जल्दी रोक
1: रोक कर.
0: अबे रोक दे.
2: अबे हाँ
0: पत्थर पत्थर पत्थर पत्थर पत्थर. अरे मून पत्थर ढूंढ. अरे शकील भाई पत्थर ढूंढो.
1: अरे संजय करेगा क्या.
0: अरे चुप शकील भाई. अबे तेरी मैं चोट.
2: अब तो इसका कोड अंटी बताएगी.
0: हो गया ठीक हो ना.
3: आपा है ना कितना मजा आ रहा है. सब लोग एंजॉय कर रहे हैं. देखें डांस हो रहा
4: है. भाभी कहाँ बैठी हैं? आए ना बच्चे कितना अच्छा डांस कर रहे हैं.
5: हाँ मैं आती हूँ आप जाओ.
4: अरे मून बेटा कैसे हो?
0: आओ जी बैठो बैठो.
2: आंटी जी वो परी ने रिंग वापस मांगी थी. वो कोई और डिजाइन पसंद आ गया उसको.
5: दिस गर्ल इज सो कंफ्यूज्ड. और उससे जरा पूछना बारात से पहले घर आ जाएगी. लेट मी गो गेट द रिंग.
6: सोनिया सोनिया रिलैक्स. लिसन लॉकर प्रोटेक्टेड है. कोड लगा हुआ है और वो सिर्फ आपको मालूम है राइट. वो कहीं भी खुलवाने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा. रिलैक्स. और वैसे भी अलार्म है उसमें. तुम देखना पुलिस का फोन अभी आता ही होगा. मुझे बताइए खाई क्या उसमें. ज्वेलरी थी ना. ज्वेलरी जान का सदका समझो. रिलैक्स सोनिया रिलैक्स. देखा पुलिस का फोन अभी आता ही होगा. प्लीज फोन लो आ गया उठाओ ना.
7: हेलो.
8: तुम्हारी बेटी और लॉकर दोनों हमारे पास है. कोड बताओ और बेटी ले जाओ. कोड बताओ.
7: परी
8: बताओ. कोड
7: परी किडनैप
8: हो गई.
0: क्या
7: परी
0: इधर देख. हेलो सॉरी कौन बात कर रहा है. हेलो मून. अबे अबे आंटी को फोन दे. अबे आंटी को फोन दे. मून
2: सोनिया
0: अबे क्या कर रहा है. मून अबे भेड़ के आंटी को फोन. हेलो. अरे ये किधर फंस गए शकील भाई. क्या बकवास है
2: अंकल. आप आंटी को संभालिए
6: ठीक है.
2: परी को मैं वापस लेके आता हूं.
0: ये सब माओ का दिल इतना कमजोर क्यों होता है. कोर्ट बताकर बेहोश हो जाती बुट्टी.
1: आए मैं तो कहता हूं ये कोर्ट वोट का चक्कर छोड़ो. ऐसे ही दे देते हैं. देखो ना इतने बड़े गुंडे हैं. लड़कियां उठाई हैं. इसको भी खोल लेंगे.
0: सही कह रहे शकील भाई. सही कह रहे ना मून.
2: यार खुल जाता तो अच्छा था. उन्होंने तो सिर्फ हीरे मांगे. जेवर तो बच जाता. लेने के देने पड़ गए यार.
0: अबे तू कैसा घटिया आदमी है यार मून. वहां नैना और परी पता नहीं किस साल में और तुझे ज्वेलरी की पड़ी. शर्म कर यार.
1: अजीब आदमी है तू.
2: मैं तो सिर्फ कह रहा था कि हीरे.
0: क्या क्या कह रहा था.
2: कुछ नहीं.
0: बस अब जल्दी से सुबह हो जाए यार.
1: हाँ यार

अरे उठो, चलो चलो चलो चलो चलो शकी भाई, चलो उठ जाओ, आ जाओ आराम से, देख आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चला जाओ चलो

0: सर पहले तो उधर ना।
1: पटरी है ना।
2: और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग हीरे लेने के बाद हमें छोड़ देंगे।
0: तो फिर एक वादा करते हैं, अगर आज हम यहां से जिंदा बच गए ना तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे आज के बाद।
3: चलो
0: चल।

0: यार, वैसे हमारा कोई बैकअप तो होना चाहिए था।
1: सुनो, एक काम करते हैं।
0: क्या?
1: तुम लोग अंदर जाओ, मैं बैकअप पे खड़ा।
2: चलो अंदर।
1: अरे मैं तो पहले ही कह रहा था अंदर चलो, तुम लोग खड़े बातें कर रहे हो यार।
2: गैरन, चलो
1: चलो चलो चलो चलो।
0: सलामुअलैकुम।
1: हीरे कहाँ हैं?
0: लड़कियाँ?
2: लड़कियाँ कहाँ हैं?
3: ए शाणे, बहुत जल्दी है रे तेरे को।
1: नहीं भाई, वो बात दरअसल ये है कि कल इस बेचारे की शादी है।
3: तो बारात यहीं ले आते, अग्नि पे फिरा देता इसे।
1: हीरे कहाँ हैं?
0: हीरे इसमें माई बाप।
1: खोल
0: भाई, वो कोड नहीं पता।
3: अच्छा शाने, लॉकर तेरा, हीरे तूने इसमें रखे और तेरे कोई कोड नहीं मालूम, येड़ा समझा क्या?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं वो भाई कुछ नहीं समझा, वो ये लॉकर भी हमारा नहीं है।
3: साले तेरी तो
1: बताता हूँ, मैं बताता हूँ भाई, दो मिनट दे दे, दो मिनट, मैं पूरी कहानी बताता हूँ भाई।
2: भैया,
1: ये दो मिनट की कहानी दस मिनट में सुनाएगा। ओए तू, तू सुना।
0: मैं देखिए, ये लॉकर है, ये इसकी सांस का है
4: मेरी,
0: और कोड भी उन्हीं को पता है। हाँ। लेकिन वो बता नहीं सकती।
1: गूंगी है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, वो बेहोश है ना।
4: बेहोश
1: क्या?
0: हाँ वो
4: भाई भाई भाई भाई, मैं बताऊं?
1: तू बता
4: भाई। जब हमें ये हीरे मिले ना, तो मुझे लगा कि हमें इनको किसी सेफ जगह पे रखना चाहिए।
0: हाँ।
4: तो मैंने ये हीरे उठा के अपनी सास को दे दिए।
0: हाँ।
4: मेरी सास ने हीरे उठा के इस लॉकर में रख दिए।
0: हाँ।
4: अब मेरी सास को थोड़ी पता है कि वो लॉकर में हीरे रख रही है, क्योंकि अपनी सास को ये हीरे देने से पहले ना मैंने ये हीरे जूली के डिब्बे में डाल दिए। तो जूली के डिब्बे में हीरे, और हीरे डिब्बे के लॉकर में, और लॉकर के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर हीरे, हीरे डिब्बे में, ये सास को नहीं पता, तो इसीलिए डिब्बे के अंदर आपके हीरे महफूज है।
3: तो लॉकर में क्या है?
4: हीरे।
3: लेकिन हीरे तो डिब्बे में।
0: अरे तो हीरे तो डिब्बे में ही है ना।
1: तो डिब्बा लाना चाहिए था ना सालो। ओ यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे बताने दो। देखो भाई को गुस्सा आ गया।
0: सॉरी
1: भाई, मैं बताऊं?
0: सॉरी,
1: बस बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। ठाकरे, एक कोड़ा, सारा सच बाहर आ जाए।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं,
3: मेरे को सुननी है कि सालिया

0: करते तो यहाँ आने के लिए लेट हो जाते। तो हमने सोचा कि हीरे सबसे पहले आपके पास पहुँचने चाहिए, तो हम ये ले आए। और माशाल्लाह आप इतने बड़े गुंडे हैं, एक गोली चलाएंगे साले का भेजा बाहर आ जाएगा।
1: सही
2: ओए, सही कह रहे। कोई होशियारी तो नहीं कर रहा ना तू?
1: नहीं नहीं बॉस, नहीं नहीं नहीं नहीं, होशियारी बंदूक के आगे कौन होशियारी करेगा बॉस। आप बोले तो अपना फोन और ये वॉलेट ये भी रख देता हूँ, कराची में तो हमें आदत है।
2: साले डेढ़ो शहर, तुझे क्या लगा था अलार्म बजते ही लॉकर से पुलिस बाहर आ जाएगी? हैं साले चूहे।

0: इतनी फायरिंग क्यों हो रही है? मेरी शादी थी यार, मैं तो कुंवारी ही मर जाऊंगी।
1: शर्म नहीं आती तुम्हें? अजीब आदमी है, इतनी जोर से मारा मेरे सर पे घोबड़ा बन गया। पहले मेरे पांव पे लॉक।
2: अरे यार शकील भाई, तुम बिल्कुल सही हो गए, ये तो अकेला ही नहीं
1: रहे। पर ये गोलियों की आवाजें क्यों नहीं आ रही? क्या सारे लोग घर चले गए?
3: ओ यार लगता है शकील भाई बहरे हो गए।
2: शकील भाई आप यही रहना, बहुत फायरिंग हो रही है, आप अपना ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ।
4: क्या?
5: ओ शकील भाई आपने इधर ही रहना है, ठीक है? आप लोग आ रही है लड़कियाँ छुड़ा के, यहाँ पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है।
1: पेशाब करने जा यार, ये कमाल है यार, पेशाब करने जाओगे तो लड़कियों को कौन छुड़ाएगा?
2: अरे

0: स्टार्ट नहीं हुई यार।
1: हमें तो किसने कहा था 2017

0: 160 की गाड़ी रखने के लिए पागल।
1: अबे फास्ट एंड फ्यूरियस में तो ठीक चलती है।
0: अबे तो चला।

0: बस इतनी टेंशन ले रही थी, रिलैक्स रहा करिए।
1: स्माइल प्लीज।
2: आज हम आखिरी बार साथ हंस रहे थे क्योंकि हमने वादा किया था कि अगर जिंदा बचे तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। मून की तो हो रही थी हैप्पी एंडिंग और हमारी पाकिस्तान में लैंडिंग। मनहूस हीरो ने सबको जीरो कर दिया। इकबाल ठाकरे की हड्डियों के साथ साथ उनके भरम भी टूट चुके थे। पुलिस ने कूट कूट कर शेख की असलियत भी उगलवा ली और अब सुल्तान अल बकलावा अपनी शाही तशरीफ सोने पर नहीं बल्कि जेल के गंदे पॉट पर जमा था। पर ऑफिसर फ्रेडरिक अपनी जिद का पक्का है, हीरो के मिलने तक उसकी तलाश जारी रहेगी।
3: एक्सक्यूज मी, आमिर थोड़ी सी जगह दीजिएगा। बेटा सब कुछ तो चोरी हो गया था, बस ये एक बॉक्स मैं लॉकर में रखना भूल गई थी।

0: Then let Talhawa Tea serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhawa Tea. 647-295-7861. Then let Talhawa Tea serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
4: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.

Coke Studio, Season 15.

0: न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें। अमरीकी और ईरानी फौज के एक दूसरे पर हमले के बाद आबनाए हुरमुज में जंगबंदी की सूरत हाल नाजुक हो गई है। ईरान ने आबनाए हुरमुज में एक अमरीकी जहाज पर हमला किया है, जिसके बाद यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर जहाज पसपाई पर मजबूर हो गया। सेंटकॉम का कहना है कि उसने 7 छोटी ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में ड्रोन हमले के बाद 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई है। उधर आबनाए हुरमुज में जनूबी कोरिया के एक जहाज में धमाके के बाद आग लग गई। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी जहाज या फ्रीडम प्रोजेक्ट में रुकावट डाली गई तो ईरान को सफाई हस्ती से मिटा देंगे। उधर सेंटकॉम ने 2 अमरीकी जहाज आबनाए हुरमुज से निकालने का दावा किया है, जबकि पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि गुज़श्ता चंद घंटों में कोई तिजारती जहाज या ऑयल टैंकर आबनाए हुरमुज से नहीं गुजरा। अमरीकी जहाज को निशाना बनाने के ईरानी दावे के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी। अमरीका ने अपने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज और उसके अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया। इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तमाम पार्टी अहदेदारों और रहनुमाओं को मंगल के रोज अडियाला जेल पहुंचने की हिदायत की है। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में फौज की पोस्ट पर एक नाकाम खुदकुश हमले के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए। खबरों के मुताबिक PIA 25 मई तक आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले कर दी जाएगी। पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल में पेशावर जिल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से हराकर दूसरी मर्तबा चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया। इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे।
2: खास खास खबरें इस बार दिन सुबह आपके लिए पेश किया करते हैं। स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003। गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 203 रुपये 50 पैसे।

डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांसफर कर सकते हैं। पाकिस्तान के तमाम बैंकिंग जितने भी बैंक हैं उनमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं, अकाउंट नहीं कैश बैंक डॉट भी हासिल कर सकते हैं। घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए, gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए। आज का रेट है 203.50 रुपये, कॉल कर लीजिए 905-306-0000, 905-306-0000। मंडे अंजुम कुरैशी साहब हमारे साथ हुआ करती हैं, एक्सलेंट क्लेम के वाले से गुफ्तगू करते हैं, मॉर्गेज की मालूमात शहराज हुसैन साहब तक पहुंचाते हैं, अहमद मलिक साहब डेट कंसल्टेशन के वाले से गुफ्तगू करेंगे और ईद फेस्टिवल के वाले से शैला जाफर साहब से भी आपको मुलाकात कराएंगे। कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव कॉल आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब। और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें होंगी, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक। मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ। मेरे चिर प्यारे सामिन, कभी कभी हालात हाजरा के मुशाहदे के बगैर भी मुस्तकबिल अपने आने की कबल इस वक्त इत्तला दे देता है। इकबाल ने अगर कहा कि महव हैरतों की दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, तो इस खबर का ताल्लुक हाल से कतन नहीं है, ये अलग इत्तला है या इसका ताल्लुक नज़र से है। मकाम खबर और मकाम नज़र का फ़र्क तो सिर्फ अहल बातिन ही मालूम कर सकते हैं। अहल बातिन की नज़र में अपने ज़माने के अलावा भी ज़माने होते हैं। वो जानते हैं कि वजूहात और नताइज के रिश्ते इंसानी रिश्तों की तरह हमेशा कायम नहीं रहते, बाज़ात वजह कुछ और होती है, नतीजा कुछ और। बेसबब नतायज की खबर ही नज़र कहलाती है। साहिब नज़र नकीब फितरत होता है, फितरत उसे जो कुछ दिखाती है वो उसे बयान करता है, वो साफ साफ बयान करता है, लेकिन सुनने वाले समझ नहीं सकते। सामईन हैरान होते हैं कि उसने कौन सा अखबार पढ़ लिया है, ये शख्स बहक तो नहीं गया, लेकिन नहीं, वो बहकता नहीं है। फितरत बहकने वालों के जरिए कोई पैगाम नहीं भेजती, यूँ भी जानने वालों और ना जानने वालों में फ़र्क रहता है, उसी तरह जिस तरह जागने वालों और सोने वालों में फ़र्क है। हर दौर में जानने वालों ने ना जानने वालों को अपने इल्म से मुतारिफ कराए हैं, सुनने वालों को यकीन आए ना आए ये अलग बात है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अरशद बैठी हूँ।

Students good afternoon, number 416-593-0003, Radio Pakistan Toronto, CMR 11.3 FM. 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान डॉट एफ एम पर सुन सकते हैं. फेसबुक में हमारा पेज रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से भी लाइक कीजिए. ट्यून इन पे हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है. फोन के जरिए सुनना चाहें 647-506-0003 पे कॉल करके हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं. हमारा टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी तमाम आई टीवी बॉक्सेस जादू बोल जो बस के साथ साथ एप्पल टीवी अमेजान फायर टीवी रोकू टीवी के साथ साथ टूबर ऐप के थ्रू रॉजर्स पे भी आप हमारे निशा देख सकते हैं. हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. ऐप स्टोर पे जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी. एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए हमारी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं. दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन निशात भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं. आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए. अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए. रिजल्ट के वाले कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए. कॉल तला भट्टी 647-295-7861. आपको घर खरीदना है, बेचना है, लीज करना है, इज़ अ वेरी गुड टाइम फॉर बाइंग. ये बायर्स मार्केट है. बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इस मार्केट में मौजूद हैं. बहुत से ख़ास तौर पे जो टाउन हाउसेज हैं वो बहुत ही प्राइस अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं. आप तलहा को कॉल कर लें 647-295-7861. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के निशात आप हमारे टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी पे भी 7 से 9 बजे देख भी सकते हैं. सुन तो आप सकते हैं सीएमआर पे, लेकिन हमारे टीवी चैनल टोरंटो 360 टीवी पे आप हमारे निशात देख भी सकते हैं. आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए. अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 11.3 FM. मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ.

बेहतरीन वक्त है इस बायर्स मार्केट में। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से रابطہ कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 12458।
2: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
3: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
4: हाँ हाँ, ब्रैम्पटन टीवी और अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
3: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
4: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
3: दैट्स वंडरफुल।
4: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
3: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
4: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 9054502828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस।
5: अलकरम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009। इट्स 9058280009। योर लॉगिन हो अलकरम ज्वेलर्स.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।

0: ICC Immigration की RDMD और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कारग्रोव और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर लें 905-461-2424। इट्स 905-461-2424।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसास कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसास वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden or Shepherd ka intersection, 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. Tamam major repair work karte hain, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service, 24/7 towing service bhi available hai. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Awais Chaudhary or Munir Hussain, 647-321-7444. 444 It's 647-321-7444। क्या आपके विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट 1 साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200।
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
0: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते के नंबर है। खुदा ना खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, कॉल कर लीजिए। फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम इसी प्रोफेशन में हैं, बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ ही काम करते हैं। मैक्सिमम कंपनसेशन आपको मिल जाएगी, और हमेशा जब केस सेटल होता है फीस एक्सीडेंट क्लेम की, उसके बाद ली जाती है। 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के नंबर है। एक्सीडेंट क्लेम का नाम आए तो साथ ही अंजुम कुरैशी साहब का नाम आता है, हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीन कहेंगे। अंजुम कुरैशी साहब, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमेशा बात करते हैं एक्सीडेंट की, अवेयरनेस देते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन जिस तरह दिन रात हम एक्सीडेंट की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि अवेयरनेस क्या है, इसी तरह से जब आपको ट्रैफिक टिकट मिल जाते हैं तो उसकी अवेयरनेस आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब टिकट मिलता है तो लोग कहते हैं कौन कोर्ट जाएगा, उसके पर लिखा हुआ $560 या $400 देने, तो कौन इस सारे हैसल में पड़े, सीधा सीधा जाके फाइन पे कर देते हैं। जब आपने फाइन पे कर दिया, इसका मकसद हुआ कि आपने एक तो गिल्टी ले ली, उसके बाद फर्ज कीजिए कि अगर आपको केयरलेस का टिकट मिला है तो राइट अवे आपके 6 पॉइंट जो है आपके लाइसेंस से कट गए, और वो 3 साल तक आपके एब्स्ट्रैक्ट पे आते रहेंगे कि आपको केयरलेस का टिकट मिला था। इसी तरीके से मुख्तलिफ सेक्शंस के हिसाब से मुख्तलिफ आपके पॉइंट जाते हैं, और अगर आपको जो टिकट मिलती है आपने पैसे पे कर दिए, इसका मकसद हुआ कि मैंने इसको कबूल कर लिया कि ये मेरा जो चार्ज था वो सही था और मैं गिल्टी करता हूँ जब आप पैसे पे करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आपके रिकॉर्ड पे रहता है, आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है, अल्लाह ना करे आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और टिकट मिल जाए तो पिछला रिकॉर्ड निकाला जाता है कि आपके रिकॉर्ड पे तो दो टिकट पहले सही है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको जब टिकट दी जाती है तो आपको ये कहा जाता है कि आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप गिल्टी कर लें, एक ऑप्शन है अर्ली रेजोल्यूशन, एक ऑप्शन है आपके पास ट्रायल एंड आप उसको जो है नॉट गिल्टी करते हो। हमेशा आपको ट्रायल और नॉट गिल्टी करना चाहिए ताकि आपका अपना वर्जन भी आप बयान कर सको, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से टिकट मिला, ऑफिसर ने ये कहा, जाहिर है आप ऑफिसर से आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, तो वो आपको टिकट देके चले जाते हैं, लेकिन आपका एक अपना वर्जन होता है कि ऐसा नहीं था ऐसा था, तो वो आपको बताने का एक मौका मिलता है आपके रिप्रेजेंटेटिव को। नॉर्मली टिकट जो है वो पैरालीगल करते हैं, हमारी टीम में लॉयर मौजूद हैं जो आपके टिकट को डील करते हैं, जो कि बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। तो ना सिर्फ आपको हम उन टिकट से निजात दिला देते हैं या कोई बेहतर तौर से आपको कोई फैसला लेकर देते हैं जो कि आप खुद नहीं ले सकते, और आपको कम से कम आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्लीन रहता है या कम से कम आपकी इंश्योरेंस बिला वजह नहीं बढ़ जाती। लेकिन जहां हम हमेशा रेडियो पे बताते हैं कि कार एक्सीडेंट जब भी होता है आपको कंटिजेंसी फीस होती है और आपको इन द एंड ऑफ द डे आपको अपनी टिकट के पैसे, आपको अपने जो सेटलमेंट के पैसे हैं वो आपको लॉयर की फीस जो है इन द एंड ऑफ द डे देनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं टिकट की तो आपको टिकट में अप फ्रंट पैसे देने होते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में जाके आपकी टिकट को नॉट गिल्टी करके फाइट करता है और इसका तरीकेकार बिल्कुल डिफरेंट है और ये कंटिजेंसी फीस नहीं होती। हमेशा की तरह अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट हो गया है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, जमाना बीत गया, क्या मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, 3 डकैत हो गए, आपका हमारा साथ है, आवाज सुनते रहते हैं, प्लीज मुझे कॉल करें 416-570-0157। कोई कार एक्सीडेंट हुआ हो, कोई आपको टिकट मिली हो, आप जरूर कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैशी साहब, फ्राइडे आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू। नंबर नोट कीजिए मदरम सामी, 416-570-0157। पेशावर जलमी पी एस एल 11 की चैंपियन बन गई है, बाबर आजम ने ट्रॉफी उठाई है, अंडर 19 की ट्रॉफी उन्होंने उठाई, तो उसके बाद शायद बड़ा इंतजार करना पड़ा उन्हें एक ट्रॉफी उठाने के लिए। हैदराबाद को उन्होंने शिकस्त दी, हैदराबाद की टीम वन साइड एक वक्त में हो गया था क्योंकि हैदराबाद की टीम 129 रन पर आउट हो गई थी। तफसील हम बताएंगे थोड़ी ही देर में, और इस वक्त आपके लिए पहले पेश कर रहे हैं आज की शायरी।
5: शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। अपने आप से आंख चुराए फिरती हूं मैं, आईने में किसका चेहरा देख लिया है। अब भी सपने बोए तो ईमान है उसका, उसने इन आंखों में सहरा देख लिया है। उसने मुझे दरअसल कभी चाहा ही नहीं था, उसने मुझे दरअसल कभी चाहा ही नहीं था, खुद को देखकर ये भी धोखा देख लिया है। उससे मिलते वक्त रोना कुछ फितरी था, उससे बिछड़ जाने का नतीजा देख लिया है। रुखसत करने के आदाब निभाने ही थे, बंद आंखों से उसको जाता देख लिया है। शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने खुश के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 4168143600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 लाइसेंस नंबर 12374।
2: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 9057831922। इट्स 9057831922।
4: जी हाँ, 9057831922 अहमद मलिक साहब के रबते के नंबर है। अहमद मलिक कर्जा माफ 20 साल से ज़्यादा अरसे से कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उनको उनका कर्ज माफ़ करवा चुके हैं, उनकी ज़िंदगी आसान करा चुके हैं। आप भी किसी वजह से, अपनी गलती से, किसी गलती से अगर कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, आप एक बार रबता ज़रूर करें 9057831922। हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद के मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम।
5: बहुत बहुत शुक्रिया अशर भाई, आपको और रेडियो पाकिस्तान सुन रहे तमाम लिसनर्स को जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम को बोलो।
4: बहुत शुक्रिया आपका। जो सिचुएशन है, आपने पिछली दफ़ा जो मॉर्गेज डेलिक्वेंसी के हवाले से भी बात की थी, आज रेस्टोरेंट्स 36% जो हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि ब्रेक इवन या नुकसान में जा रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन मईशत की जिस तरह से है, सीबा लोन लोगों ने कईयों ने पे नहीं किया और बहुत से मसाइल हैं, ओवरऑल किस तरह से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को और आप किस तरह से मदद कर सकते हैं लोगों की?
5: आशिष भाई, गुज़िश्ता जब से जिस दिन से कोविड आया है, उस दिन से जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल जियोग्राफी है, वो चेंज हो गई है तकरीबन हर इंसान की। पिछले 6-7 साल में वही लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके लाखों डॉलर कमाए, और फिर वही लोग हैं जो दोबारा उन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके स्टक हो गए, मजीद आगे प्रॉपर्टीज लेके स्टक हो गए।
4: बिल्कुल।
5: तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा टाइट चल रही है, काफी सिचुएशन जो है कैश फ्लो का जो है वो हर बंदे को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि कैश फ्लो बहुत ज्यादा मुतासर हो गया है। आपने पैसे देने तो हैं, लेकिन जहां से आपने पैसे देने हैं वहां से आपको पैसे मिल नहीं रहे, तो सिचुएशन ऐसी चल रही है इस टाइम। बहरहाल हमारे तमाम वो लिसनर जो कर्जे के बोझ में आए हुए हैं, तो ये बात याद रखें कि यहाँ पर कंज्यूमर सिस्टम चलता है और ये सिचुएशन यहाँ पर चलती रहती है। तो इसलिए अगर आप किसी वजह से भी कर्ज के बोझ में आ गए हैं, आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर दिए हैं, आपने कोई लोन लिया था जिसकी अब आपसे पेमेंट नहीं की पा जा रही, या आपको रेवेन्यू कैनेडा ने किसी तरह की आपसे पैसे की डिमांड कर ली है जो आप नहीं पे कर सकते, तो फिर इस कानून को इस्तेमाल करने में कोई मजायका नहीं है। जो कानून हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस कानून को हम प्रैक्टिस करने की आपको एडवाइस कर रहे हैं, जिसके तहत आप कर्जे से निजात हासिल कर सकते हैं, फिर इस कानून को अर्शद भाई यूज करने में कोई मजायका नहीं है। तो हमारा ऐसा कोई लिसनर है जो अगर कर्जों के बोझ में आया हुआ है, तो हम आपके कर्जों को 75% तक माफ कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी के रहते कर्जे पर एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट लगवा के आपको एक नई जिंदगी शुरू करने में आपकी मदद की जा सकती है। तो हमारा कोई लिसनर है अगर आप कर्जे के बोझ में आए हुए हैं तो 9057831922 पर आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इन कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं।
4: थैंक यू वेरी मच अमित साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच,
5: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
4: नंबर नोट कीजिए आप अहमद मलिक साहब का और अभी कॉल कर लें। खुदा खास साहब कर्ज के बोझ तले आ गए हूँ 905-783-1922 इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को कैपिटल बैंकुट हॉल में होने जा रहा है। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, बेशुमार इनामात हैं और एवरी डे सोने के गिफ्ट दिए जाएंगे। एवरी डे इनाम घर इनका होता है, उसमें मुख्तलिफ इनामात दिए जाएंगे। फैशन शो होगा, मदर्स डे के हवाले से प्रोग्राम है, सिंगिंग कॉम्पटिशन हैं, कपल्स प्रोग्राम, बेशुमार इंटरटेनमेंट हैं, बच्चों बड़ों सभी के लिए बेशुमार तहफ भी होंगे। स्टॉल बुकिंग, अभी स्टॉल्स अवेलेबल हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इन्होंने स्पेशल स्पेशल जो है वो डील स्टॉल्स पर लगाई हुई है 416-710-6777 पे शम्स रहमान साहब से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज़ खाने खाने हैं तो चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन पे चले जाइए। रिजवे में चाइनीज़ खानों के वाले से ये एक ज़बरदस्त किस्म की एडिशन है। इनका यूनिट 30 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। पाकिस्तान पीसी की जो शेफ़ हैं जिनका 14 साल से ज़्यादा से तजर्बा है, स्पेशली वो यहाँ पर आए हैं। 100% हलाल फूड, फ्रेश ऑथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट, नो पैकेट मसाले। एक बार आप जाइएगा और चाइनीज़ पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज़ खाने खाने हैं तो आप चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन तशरीफ ले जाइए। 905-514-7877 905-514-7877 पर रब्ता कर लीजिए। 24 घंटे माइनस पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चल है टोरंटो 360 TV। रियल स्टेट के बारे से कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ते कीजिए, कॉल तलाब भट्टी 6472957861 लिए चलेंगे। आपको न्यूज़ की तरफ जो पेश करें जनाब जुमैरुद्दीन साहब।
6: You're listening to CMR FM 101.3।
7: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
8: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
7: न्यूज के लिए तावन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500। इट्स 4374252500 आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861।
9: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी और ईरानी फौज के एक दूसरे पर हमलों के बाद आबनाए हुरमुज में जंगबंदी की सूरतेहाल नाजुक हो गई है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीकी जंगी जहाजों ने मुबैना तौर पर अपनी रडार सिम्स बंद करके खुफिया अंदाज में आबनाए हुरमुज के करीब आने की कोशिश की, जो खत्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक इकदाम समझा गया। ईरानी बहरिया ने सख्त पैगाम देते हुए अमरीकी जहाजों के करीब क्रूज मिसाइल, रॉकेट और जंगी ड्रोन्स के जरिए वार्निंग शॉट्स फायर किए ताकि उन्हें इलाके से दूर रहने पर मजबूर किया जा सके। उधर जनूबी कोरिया

0: चैनल सुबह अजानी फजर के बाद एक पारे की तिलावत उर्दू तर्जमे के साथ इस्लामिक सेगमेंट करंट अफेयर्स के प्रोग्राम सोशल इश्यूज एजुकेशन और इंटरटेनमेंट के साथ साथ कॉमेडी प्रोग्राम भी हर रात 8 और 10 बजे टोरंटो 360 स्पेशल प्रेजेंटेशन पाकिस्तानी फीचर फिल्म रात 11 और दिन 1 बजे शहर में होने वाली तकरीबात की कवरेज और बहुत कुछ टोरंटो 360 टीवी पाकिस्तान की पहचान आपका अपना 24/7 चैनल टोरंटो 360 टीवी आपकी आवाज आपके
1: बेहतर नहीं हो रही है। सऊदी अरब ने आबनाई हुरमुज में बहरी आमदरफ्त की बहाली का मुतालबा किया है, साथ ही उन्होंने पाकिस्तान की सालसी की कोशिशों की हिमायत का भी ऐलान किया है और उन्होंने कशीदगी जो है अस्करी कशीदगी उस पर तशवीश का इजहार किया और अफ्रीकन से कशीदगी कम करने मजीद तसादम से गुरेज और तहमुल इख्तियार करने की अपील की है। सऊदी वजारत की जानिब से सोशल मीडिया साइट एक्स पर जारी करदा बयान में कहा गया कि सऊदी अरब पाकिस्तानी सालसी और सिफारती कोशिशों की मुकम्मल हिमायत करता है। उधर अमरीकी परचम बरदार जहाज था तजारती जहाज अमरीकी फौजी हिफाजत में अबनाए हुरमुज से वो गुजरा है, शिपिंग कंपनी का ये कहना है और उन्होंने कहा कि कामयाबी के साथ ये वहाँ से गुजर गया है, किसी भी नाखुशगवार वाक़े के बगैर ये सफ़र मुकम्मल हुआ है और जहाज़ के अमले के तमाम अरकान जो है महफूज और खैरियत से हैं। उधर यूएई ने कहा है कि फिजाई दिफाई निज़ाम ने पीर को ईरान के 15 मिसाइल और 4 ड्रोन रोके हैं। तफसील उन्होंने जारी की है, 12 बैलिस्टिक मिसाइल 3 क्रूज मिसाइल और 4 ड्रोन्स को नकारा बनाया है। 3 अफराद को कहते हैं दरमियानी नोयत की चोटें भी आई हैं। यूएई के मुख्तलिफ इलाकों में हमलों की मुतअद्दिद आज इत्तला'आत मौसूल हुई थी जिनमें अल-फजीरा में ड्रोन हमले की रिपोर्ट भी शामिल है जहाँ बताया जाता है कि 3 इंडियन शहरी जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं। वजारत दफा के मुताबिक तनाज़े के आगाज से लेकर अब तक मुल्क में जख्मी होने वालों की मजमू तादाद 227 हो गई है जबकि 3 अफराद जो हैं वो हलाक भी हुए हैं। दूसरी जानब ईरान के सरकारी टीवी ने एक नामालूम सीनियर फौजी अहलकार के बारे से बताया है कि ईरान का यूएई को निशाना बनाने का कोई इरादा नहीं था, तहम ईरानी हुकाम की जानब से इस बयान पर मजीद कोई रद्द अमल जो है वो नहीं दिया गया है। अब जो सिचुएशन है ये और ख़राब हो सकती है अगर इस तरह से हमले हुए और अमेरिका और ईरान ने भी एक दूसरे पर दोबारा हमले शुरू कर दिए तो जंगबंदी भी जो है अब वो भी ख़त्म हो जाएगी और उसके बाद सूरत हाल जो है वो ख़राबी की तरफ चली जाएगी। बाज़ूकात लगता है कि बयानबाजी तक ही महदूद हैं चीज़ें, लेकिन ये जो मिसाइल फायर हुए जिस पर ईरान कहता है कि नहीं किए और यूएई जो है उसकी तादाद तक बता रहा है तो ये यकीनन जो है तशवीश की बात है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM स्टूडियोज़ में रबते के नंबर 416-593-0003 में आपका होस्ट और दोस्त अर्शद भट्टी हूँ।

0: eventsbyteamoftwo.com.
1: जनाब इवेंट बाई टीम ऑफ टू डॉट कॉम पर जाकर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं. फाइव डेज वर्ल्ड लार्जेस्ट ईद उल अज़हा फेस्टिवल होने जा रहा है. 26th एनुअल फेस्टिवल है जिसमें एग्जीबिशन प्रमोशन सेल्स आपके लिए. आप अभी भी स्टॉल बुक करा सकते हैं 6472732393 पर रब्ता कर लीजिए. 22, 23, 24, 25 और 26 मई को मैपल बैंकुट हॉल 1325 एग्लिंटन एवेन्यू ईस्ट में सागा में. As usual, free entry है, free parking है, business expo भी होगा, variety of stalls होंगे, shopping, मेहंदी, food, family entertainment है. आप किसी किस्म की information stall booking के लिए शैला जाफरी साहब से रब्ता करें 6472732393. हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहें. शैला साहब अस्सलाम वालेकुम.
2: वालेकुम अस्सलाम अरशद एंड रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के सुनने वालों को अहमद एंड शैला जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू का बहुत सारा सलाम और बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपके मैसेजेस जो आप देते हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के थ्रू उसको सुनकर जो लोग अटेंड करते हैं, मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके हमें जरूर बताएं कि हम रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से ये खबर सुन के यहाँ पहुंचे, हमें अच्छा लगेगा और हम ऑफकोर्स और ज्यादा प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा हमारे आपके लिसनर्स और हमारे दरमियान. तो बिल्कुल आपने सही सारी इंफॉर्मेशन दे दी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तैयारियां जारी हैं और हर दिन कोई ना कोई अट्रैक्शन और कोई ना कोई एक्टिविटी रखी गई है ताकि हर रोज आने वालों को भी दिलचस्पी का शॉपिंग के साथ साथ इंटरटेनमेंट भी हो. रोज आना ही होगा, पूरे 5 दिन कुछ ना कुछ इंटरटेनमेंट चलती रहेगी, सेलिब्रेशन रहेगी. वो जब हमारा इवेंट करीब आएगा तो हम आप सबको बताएंगे कि वो क्या किस दिन क्या हो रहा है, ताकि आप रोज भी आ सकें और जो आपको ज्यादा पसंद है उस दिन जरूर आने की कोशिश करें. मेपल बैंकवेट हॉल मिसिसागा में 22 मई से शुरू होगा और रुकता नहीं है. इवेंट बाय टीम ऑफ टू चलता रहता है जब तक कि चांद रात नहीं आती. तो हम लोग इसको 26 तारीख तक जारी रखेंगे. बहुत अच्छे पैकेजेस बनाए गए हैं वेंडर्स के लिए, क्योंकि अब शादी ब्याह का भी सीजन है, पार्टीज का सीजन है, छुट्टियों का सीजन आ रहा है. तो तमाम तैयारी आपने मेपल बैंकवेट हॉल मिसिसागा में आके करनी है. हर तरह की चीजें वहां मिलेंगी और हमेशा की तरह मैं इसको रिपीट करती हूँ बार बार, ज्वेलरी का सबसे अच्छा, सबसे अपडेटेड और सबसे बड़ा फेस्टिवल मेपल बैंकवेट हॉल में ये एग्जीबिशन सजाया जाता है. फूड हलाल फूड फेस्टिवल भी होगा वहां पर. इसके अलावा ऑफ कोर्स तमाम डिजाइनर्स कोशिश करते हैं कि शोकेस करें, तो सारे डिजाइन वहां शोकेस किए जाएंगे और बहुत से नए स्टाइल नए डिजाइनर्स भी हमारे साथ शामिल हुए हैं. और इसके अलावा छोटे बिजनेसेस, होम बेस्ड बिजनेसेस या बुटीक जिनकी है, जिनके बड़े बिजनेसेस हैं, वो सब लोग हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं. तो मेरी रिक्वेस्ट है बिजनेस कम्युनिटी से कि जो भी आपका बिजनेस है आप जरूर वहां लाएं, प्रमोशन एग्जीबिशन एंड सेल करें और इवेंट्स बाय टीम ऑफ टू पे जरूर जाके विजिट करें और आपको पता चलेगा कि आपको भी हम प्रमोट करते हैं और आपकी पोस्ट भी बनाएंगे, उसको भी प्रमोशन मिलेगी कि आपके बिजनेस को कि आप हमारे साथ मौजूद हैं. और दूसरे आप हमारे वेंडर्स को देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, उनको टैग करें, उनको वहां से लिंक हमारे वेबसाइट पे सबके लिंक हैं. तो इंशाल्लाह ताला बहुत खूबसूरत ईद उल अज़हा वर्ल्ड लार्जेस्ट 5 डेज का फेस्टिवल आप लोगों के लिए सजाया जा रहा है. लिहाजा आपने अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली को भी रेकमेंड करना है यहाँ आने के लिए और यहाँ एग्जीबिशन एंड सेल करने के लिए. अरशद आपका शुक्रिया फिर से अदा करती हूँ मैं कि आप इसकी प्रमोशन में हमारे साथ बहुत हिस्सा लेते हैं. थैंक यू सो मच.
1: थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका. इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर बात करते हैं. थैंक यू, बहुत शुक्रिया.
2: इंशाल्लाह
1: अल्लाह हाफिज. नंबर नोट करें 6472732393. 22, 23, 24, 25 और 26 मई को मैपल बैंकवेट हॉल मिसिसागा में ये प्रोग्राम होने जा रहा है. आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो एफएम 101.3 स्टूडियोज में. रबते के नंबर 416-593-0003. टोरंटो और इसके किरदनवाह में मगरिब की आजान का वक्त हो गया है. दूसरे

0: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 9052829868।
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू।
2: सिंस 1993 MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: Apna Hamsafar Global Travel and Tours.
4: Global Travel and Tours. Mississauga mein community ko duniya bhar ke liye saste tarin ticket offer kar rahe hain. IATA approved agent tamam major airlines se deal karte hain. PIA ke consolidator hain aur PIA tickets ke special low fare available hain. Book in advance and get special discount. Umrah aur ziyarat ki special package deal ke liye call kare 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East, Unit 1C, Mississauga. तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777। आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642.
5: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
1: 416-904-2046 or 416-662-7861.
6: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर, सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में, और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: राजधानी
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

0: tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure. Clothing, jewelry, mehndi, churiyan, food, entertainment, and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
1: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर चरगा लाहौरी fish, चपली कबाब, कड़ाही गोश, chicken tikka masala, chicken biryani, सीख कबाब, रेशमी कबाब, chicken boti, chicken tikka, बिहारी कबाब, lamb chops, अफगानी tikka, नेहारी और बहुत कुछ. खूबसूरत कुशादा patio, Barbecue Tonight Restaurant, 905-268-0088. It's 905-268-0088. टन और डंडास के इंटरसेक्शन में सिसागा. आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं. वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं. इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें. 416-566-3642. घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642.
2: सिर्फ मॉर्गेजेस. दैट्स राजीव तलवार, द मॉर्गेज सुपरस्टार. मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार. मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा. तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं. कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 905-819-1001. 905-819-1001. License number 12374.
3: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
1: प्रोग्राम का ये हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है. फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861. 647-295-7861.
4: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. Students mein aapte ke number 416-593-0003. पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल जमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं. आपके लाइव कॉल्स भी लेते हैं, चंद अहम मौजूदात पे गुफ्तगू करते हैं. कल एक साहब से मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम के आगाज़ में जो टॉपिक्स जिन पे आप डिस्कस करते हैं थोड़ा सा वो बता दिया करें एडवांस में, ताकि लोगों को इस हवाले से कोई आइडिया हो जाए. तो मुझे मुनासिब लगा उनका मशवरा, तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं ये भी करके. पहले बिलास साहब को खुश आमदीद कह लेंगे. बिलास साहब अस्सलाम वालेकुम.
5: जी वालेकुम, क्या चल रहा
4: है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया. आज सामिन कराम जिन मौजूदात पे कोशिश करेंगे गुफ्तगू हो जाए. लीमा खान साहब ने तमाम पार्टी उहदेदारों को कहा कि कल वडियाला जेब पहुंचे. अब MNAs हैं, MPAs हैं, सेंटर्स हैं, उहदेदार हैं, बड़ा इम्तिहान है. कल पहुंचेंगे नहीं, मतलब खुशी होगी या सुबकी होगी ये तो कल ही पता चलेगा. एक खातून गायनेकोलॉजिस्ट की जानिब से जस्टिस ऑफ पीस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी किया गया है. इसके अलावा 2000 रुपये का पेट्रोल सब्सिडी जो है अवाम को दी जाए ऐलान किया था, पता ही नहीं है लोगों को, परेशान हैं अवाम, इस हवाले से बात करेंगे. आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ी बात चल रही कि ख्वाजा साद रफीक साहब के जो वन कॉन्स्टिट्यूशनल जो एवेन्यू है वहाँ पे उनका कोई फ्लैट्स वगैरह है, तो उन्होंने कैटेगोरिक लिस्ट से जो है वो लातालुकी का ऐलान करते हुए कहा कि उनका इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है. इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से एक इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने जो कहा था, एक उन्होंने उसको कोर्ट ने जो है वो रद्द किया है और कहा गया है कि ये तो शायद उनका दायरा इस्तेहकाक ही नहीं आता. चल इन कोशिश करेंगे इन मौजूदात पर गुफ्तगू करें. बिलास साहब, लीमा खान साहब ने तमाम पार्टी उहदेदारों रहनुमाओं को डियाला जेल पहुंचने की जो है वो हिदायत की है. हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि MNAs, MPs और सेंटर्स कल डियाला जेल जो है वो पहुंचेंगे और मुतालबा जाहिर है उनका यही है कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा हॉस्पिटल से करवाया जाए, ज़ाती मालिश के जरिए निगरानी करवाया जाए. अगर तो पहुंच जाते हैं सारे तो फिर क्या दबाव में गवर्नमेंट आएगी, और आपका ख्याल है कि लोग पहुंच जाएंगे?
5: जी देखें, इससे पहले भी जितने दफा कॉल दी गई है बड़ी मतलब ये कि मायूसी हुई पीटीआई को, और पीटीआई अंदरूनी तौर पे काफी खलफशार का शिकार है और उनकी जो क्यादत है वो चार हिस्सों में बटी हुई है. उसमें केपीके की हुकूमत अलग है और अलीमा खान अलग है. अब उनके जो सेक्रेटरी जनरल है सलमान अकरम राजा उनके साथ भी कुछ जो है ना वो मामला के ऊपर इख्तलाफात सामने आए हैं। फिर बैरिस्टर गौहर हैं जो चेयरमैन हैं, जिनको चेयरमैन ही कोई जो है ना वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। चौथे नंबर पे हदायत कहते हैं इमरान खान साहब से जो है ना वो डायरेक्ट लेंगे, और कुछ कारकुनान जो हैं वो अपने तौर पे जो है ना मतलब ये कि वो क्यादत को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी क्यादत जो है वो सिंसियर नहीं है और इमरान खान साहब को जो है ना वो जेल में ही रखना चाहती है। तो कुछ लोग जो है वो खुद से मतलब ये कि उसकी एफर्ट में है, और ज्यादातर जो हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर वो कीबोर्ड वॉरियर्स जो है, यानी कि जो सारा फोकस और सारा जोर जो है सारी कैंपेन, चाहे वो दूसरों को जो है ना वो मतलब ये कि ट्रोल करना हो, जलील करना हो, तो वो उस मामले में जो है ना वो सब आगे आगे हैं। लेकिन जो असल उनका इशू है इस वक्त कि उनका लीडर जो है वो जेल में है, उसको किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से अगर आप मान भी लें कि चले हुकूमत के ऊपर आपने प्रेशर डालना है, तो वो प्रेशर जो है वो हफ्ते बाद एक दिन जो है वो मंगल वाले दिन इकट्ठे होके जेल के बाहर एहतजाज करके, तो उससे तो जो है ना वो प्रेशर जो है ना वो क्रिएट नहीं होगा। इससे पहले भी जब कारकुनान ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए थे तो हुकूमत ने वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पे किया था, और उसके बाद हमने देखा कि उतनी तादाद में भी दोबारा कारकुनान जो है वो जमा नहीं हो सके। हालांकि अगर पीटीआई इतनी ही जो है ना मतलब ये कि वो समझती है कि वो ताकत रखते हैं और अपने लीडर के लिए सिंसियर हैं, तो वाटर कैनन के बाद तो अगले दिन ही उससे ज्यादा उसे डबल तादाद में जो है ना वो लोग वहां पे मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन जब तक आप अगले हफ्ते का इंतजार करते रहेंगे और उससे बाद अगले हफ्ते का, तो ये तो मामला नहीं है। तो रोजाना की बुनियाद पर जब तक आप एहतजाज नहीं करते तब तक हुकूमत के ऊपर कोई ऐसा जो है ना वो दबाव नहीं आएगा।
4: खातून गायनेकोलॉजिस्ट की जानिब से जस्टिस ऑफ पीस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी। तिबी गफलत एक तकनीकी मामला है जिसके लिए पेशा वराना महारत रखने वाला फोरम जरूरी है, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। तो क्या मेडिकल से मुंसलिक जो मामला हैं उनको हेल्थ केयर कमीशन बेहतर अंदाज में देख रहा
5: है? जी देखें, ये बहुत जरूरी और सेंसिटिव इशू है। मेरे काफी अर्सा पहले मुझे ना इस खबर से याद आया, एक डॉक्टर के साथ भी मैंने इस बात पे जो है ना वो मशवरा हुआ था, तो मैंने उनको यही कहा था मैं जिस तरह हर चीज के लिए अदालत होती है, इसलिए इसी तरह जो मेडिकल के केसेस हैं उसके लिए भी कोई अदालत होनी चाहिए। तो उन्होंने ही मुझे इन्फॉर्म किया था कि जो हेल्थ कमीशन है उसके तहत जो है वो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के खिलाफ, और उस पर बड़ी सख्त कार्रवाई होती है, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी मुअत्तल हो जाता है और उसको दोबारा प्रैक्टिस भी करने नहीं दी जाती, और अगर गफलत पाई जाती है तो बाकायदा कंपनसेशन होती है, सजा दी जाती है। तो उसने कहा, मुझे बताया था, उसने कहता बड़ा फाल इंतजाम है और कहता लोग उस फॉर्म को समझते नहीं है और उसको एक्सरसाइज नहीं करते। तो हमने देखा है कि लोग हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करेंगे, हॉस्पिटल में जो है ना मतलब ये कि, और उसके ऊपर बकायदा एसओपीज जो है ना वो हुकूमत ने जारी कर दिए हुए हैं, क्योंकि ये वाकयात तवातुर के साथ बहुत सारी जगहों पे सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट में हुए थे, उसके बाद जो है ना मतलब कि हुकूमत ने बकायदा ये स्टेप लिया था। तो हमारे यहाँ पे जो एक बड़ी बुनियादी चीज है वो इन्फॉर्मेशन का फुकदान है कि आपको पता नहीं होता। हाँ, गफलत हो सकती है, अगर आपको फील होता है कि आपके मरीज के साथ गफलत हुई है और आपने उसको अकाउंटेबल जो है ना वो ठहराना है, तो उसका एक बकायदा रेलिवेंट फॉरम जो है ना वो मौजूद है। उस फॉरम पे अगर आपकी सुनवाई जो है वो नहीं होती तो फिर जो हाई कोर्ट्स का फॉरम है इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो है ना वो डायरेक्टली अगर आप अदालत के पास जाएंगे तो अदालत का इख्तियार नहीं है कि वो मेडिकल के मामलों को जो है ना वो उसको।
4: अच्छा सर, अभी जैसे लोगों को आपने कहा इन्फॉर्मेशन नहीं है, 2000 रुपए पेट्रोल सब्सिडी के वादे ने भी लगता है आवाम को रुला दिया, एक ऐसा तबका भी इसको मालूम ही नहीं है कि हुकूमत 2000 महाना दे रही है। हुकूमत इस मामले में आगाही फैलाने में आपको क्या लगता है, सुस्त है, नाकाम है, क्या ऐप डाउनलोड करना इस्तेमाल मुश्किल है, सब्सिडी लेने का तरीका है क्या?
5: जी देखें, ये जो सर्वे हुआ है ये निजी टीवी चैनल ने जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर जाके लोगों से जब इंफॉर्मेशन ली तो मेरे ख्याल से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो उस सब्सिडी से फायदा उठा रहा हो। हुकूमत ने जो ट्रांसफर है उसको जो है ना वो लीगल किया कि अगर किसी के अपने नाम के ऊपर नहीं है तो अपने नाम के ऊपर जो है ना वो करवा ले, ये भी एक बड़ा इशू है। हमारे यहाँ पे जो मोटरसाइकिल जो सवार हैं, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी तादाद है उनकी, लेकिन एक अच्छी तादाद है जिन्होंने यूज्ड जो है वो मोटरसाइकिल पुराने जो है वो मार्केट से लिए हुए हैं और वो पेपर के ऊपर या जो है ना वो बगैर रजिस्ट्रेशन के जो है ना वो बाइक्स वगैरह जो है ना वो चल रहे होते हैं। बहुत कम ऐसा होता है कि अगर आपको पुलिस वाले जो है ना वो रोकें तो आपका आईडी कार्ड चेक करते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है ना बाइक्स की हद तक बहुत कम चेक की जाती है। अगर गाड़ी को वो जो है ना वो रोकें तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सबसे पहले वो, तो वहां पे जो है ना वो उल्टा है, रिवर्स है कि आपका आईडी कार्ड और लाइसेंस जो है वो बाद में चेक होता है, पहले वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो आपकी।
4: बिलाल साहब, ये तो खुदा न खास्ता अगर कहीं वारदात में इस्तेमाल हो जाए तो ये तो बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन है जो मोटरसाइकिल सवार को पता होना चाहिए کہ اگر چوری ہو گیا کہیں کہیں کئی واردات میں استعمال ہو گئے تو وہ تو مصیبت آ جاتی.
5: کراچی میں تو 90% یہی ہو رہا ہے. ہم نے مطلب کہ آپ دیکھیں آئے دن فوٹیجز جو ہے نا وہ سامنے آتی ہیں کہ دو موٹر سائیکل سوار آتے ہیں, وہ اپنا موٹر سائیکل چھوڑتے ہیں, کسی اور کا موٹر سائیکل لیتے ہیں اور جو ہے نا وہ چلے جائے, اور اس پہ واردات ہی ہوتی ہیں اس پہ. لیکن یہ کہ لوگوں کا اندر مطلب یہ کہ وہ نہیں ہوتی ہے کہ اگر کسی کی بائک وغیرہ چوری ہوتی ہے اور اس کے اپنے نام کے اوپر ہو تو لوگ فوری طور پہ جو ہے نا اس کی کرتے ہیں, جس کی اپنے نام کے اوپر ہی نہیں ہوتی اس کو پرواہ بھی نہیں ہوتی کہ اگر اس کے اوپر جو ہے نا وہ کچھ ہو بھی جائے تو اس کو جو ہے نا کوئی جو ہے نا فرق نہیں پڑتا. تو بہرحال مطلب یہ کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو سبسڈی حکومت جو ہے نا وہ دے رہی ہے اس کے اندر جب تک حکومت اس کو باقاعدہ ایڈورٹائز نہیں کرتی, اور میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اس پروسیس کو آسان کرتی کہ اگر آپ کو جو ہے نا وہ 2000 کی اگر آپ نے دے ہی دی ہے سبسڈی تو اس کا تو فائدہ جیسے نا ہمارے جو ٹیکس حکومت نے اکٹھا کرنا ہوتا ہے وہ تو بل کے اندر لگا کے بھیج دیتے ہیں اور ہر بندے کو جو ہے نا بل کے ساتھ ہی جمع کروانا پڑ جاتا ہے. تو اگر یہ ریلیف آپ نے لوگوں کو دینا ہی ہے 2000 روپے کا تو کسی ایسی صورت میں دیں, بل کی صورت میں دے دیں, کسی صورت میں دے دیں تاکہ وہ 2000 اس کی جیب میں تو ہو, اس کا چاہے پھر وہ پٹرول ڈلوائے یا نہ ڈلوائے.
4: جب اس کے نام ہی نہیں ہے تو کیسے دے دیں؟ اب کسی کے نام ہے اس کے بل میں چلا جائے تو فائدہ, مطلب یہ تو طریقے کار ہی تو دیکھا سر, یہ تو موٹر سائیکل اتنا آ گئی یہاں پہ. اگر آپ کہیں نا جی مجھے پتا نہیں تھا, وہ کوئی ذمہ دار نہیں ہے, حکومت کو کہتی کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے, آپ کا فرض ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. تو میں خیر
5: بالکل میں نے یہ کہا نا کہ میں نے پہلے نمبر پہ یہ کہا کہ اس کو آسان کرے, اگر آسان جو ہے نا مطلب کہ اس کو کر سکتے ہیں تو بالکل ٹھیک ہے. جو ایشو ہے وہ بالکل مطلب کہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر بائک آپ کے نام پہ ہے بالکل آپ کو جانا
4: بالکل ٹھیک. اچھا ایک ابھی سعد رفیق صاحب کی بڑی تصویریں میمز بنی ہوئی ہیں جی, کہ وہ پرتعیش عمارت میں ان کے شیئرز ہیں اور ون کانسٹیٹیوشن میں جو ہے وہ ان کا فلیٹ ہے. وہ کہتے ہیں میرے پاس جانے والوں کے ہیں ان کی سرمایہ کار, ان کو مبارک ہو, انہوں نے اس وضاحت کی ہے. ایک تو یہ عمارت کیوں مشہور ہے, اس کا معاملہ کیا, اور زیادہ تر اپارٹمنٹس ہیں کس کیس میں؟
5: یہ دیکھیں یہ معاملہ جو ہے وہ عمران خان صاحب کا جو دور تھا 2018 کا, اس وقت بھی جو ہے نا مطلب آیا تھا اور ثاقب نثار جو تھے چیف جسٹس تھے انہوں نے ہی اس کو جو ہے نا وہ لیگلائز بھی کیا تھا, اور تب بڑا مشہور یہ مطلب ہے کہ ہوا تھا, اور تب نام نہیں لیا جاتا تھا اس کا, صرف یہ بتایا جاتا تھا کہ عمران خان صاحب کا فلیٹ ہے اس کے اندر. تو عمران خان صاحب نے تب خود بھی ایڈمٹ کیا تھا اور بتایا تھا, انہوں نے وہ سارے دستاویزات اور وہ سارے ثبوت بھی دیے تھے کہ کیسے انہوں نے کب یہ فلیٹ جو ہے نا وہ لیا تھا, کون سی زمین, غالباً میاں والی کے اندر جو ہے نا زمین بیچ کے, اور اس کو جو ہے نا انہوں نے آبائی زمین بیچ کے تو یہ فلیٹ لیا تھا. خیر ریگارڈلس آف دا میٹر اس کے اندر زیادہ تر جو فلیٹس ہیں وہ پی ٹی آئی کے اپنے لوگوں کے اور کچھ صحافیوں کے بھی جو ہے نا پلاٹس سوری اپارٹمنٹس جو ہے نا وہ اس کے اندر موجود ہیں. اب وہ اپارٹمنٹس لیگل ہیں انلیگل ہیں, کیسے خریدے ہوئے ہیں, یہ ایک الگ جو ہے نا وہ معاملہ ہے. جب وہ زمین ہی جو ہے نا مطلب ہے کہ اس کے لیز جو ہے وہ غلط ہے اور جو بنیاد ہے وہی جو ہے نا وہ غلط رکھی گئی ہے, تو اس کے اوپر بہرحال مجھے ہمیشہ میں یہ کہتا ہوں کہ اب سی ڈی اے کو جو ہے نا اس بات کا خیال آیا, مطلب جب معاملہ جو ہے نا جب بلڈنگ بن رہی تھی, جب زمین خریدی جا رہی تھی, جب اپارٹمنٹس بن رہے تھے بیچے جا رہے تھے, یہ بڑا مطلب ہے کہ ایک وہ ہے آپ کو یاد ہوگا ایک نسلہ ٹاور تھا
4: کراچی کے اندر, اس کو تو انہوں نے
5: ہاں تو مطلب وہاں پہ بھی یہی ہوا تھا کہ مجھے نہیں اب یاد ہے کہ مطلب اس وقت حکومت نے آرڈر تو کیا تھا سندھ ہائی کورٹ نے کہ ان کو کمپنسیشن جو ہے نا وہ دی جائے, اب حکومت نے کیا کمپنسیشن دی ہے وہاں پہ ان لوگوں کو, دوبارہ فلیٹس ملے نہیں ملے, پیسے ملے نہیں ملے, کتنے ملے, یہ مطلب بہت سارے لوگ جو ہے نا بےچارے رول جاتے ہیں.
4: ابھی اس میں کیا ہے
5: انہوں نے وہاں پہ
4: اس میں اس پہ کیا کریں گے, مطلب ابھی روکتی ہے, مطلب ابھی تو کہتے ہیں پرائم منسٹر نے کہا کہ
5: ہاں جی ابھی تو وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی ہے, اچھی بات ہے, لیکن کہنے کا مقصد بڑی سادہ الفاظ کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں نے وہاں پہ اپارٹمنٹ خریدے ہیں اور جائز انکم سے جو ہے نا وہ خریدے ہوئے ہیں ان کو تو مطلب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے نا,
4: سعد رفیق صاحب کا نہیں ہے اس میں اپارٹمنٹ,
5: نہیں نہیں وہ ان کا جو ہے نا ان کا اپارٹمنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہے, لیکن جو ہے نا وہ ایک بڑی جگہ ہے 13.5 ایکڑ کا جو ہے نا, اور بہت بڑا پروجیکٹ ہے, جو ہے نا تقریباً 300-400 کے قریب جو ہے نا فلیٹس ہیں.
4: اچھا سر آخر میں سوال, آج ٹائم پتہ نہیں کیوں میں تھوڑا لیٹ ہو گیا, انجیر محمد علی مرزا صاحب سے متعلق اسلامی نظریاتی کونسل کی رائے کے خلاف اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا ہے. اسلامی نظریاتی کونسل کسی فرد کے خلاف فوجی مقدمے میں رائے دینے کی مجاز نہیں ہے, اور انجیر محمد علی مرزا کو گستاخی کا ملزم قرار دیا گیا تھا. کیا اسلامی نظریاتی کونسل کسی خلاف اس طرح فیصلہ دے سکتی ہے؟
5: جی دیکھیں اس کے اوپر 495C جو ہے وہ کلاز لگتی ہے اور وہ گستاخی کے زمرے میں آتی ہے, لیکن کیونکہ پاکستان کے اندر پینل کوڈ ہے اور اس کا جو ہے نا سزا اس کی مقرر ہے اور عدالت کے اندر اس کا کیس چلتا ہے, تو جو مجاز فورم ہے وہ عدالت ہی ہے اور سیشن کورٹ ہے वहां पे जो है ना वो केस चलता है, लेकिन अगर जो है ना वो नजरियाती कौंसल जो है कोई कोई मामला भेजा जाता है तो पहले देखा जाएगा कि क्योंकि नजरियाती कौंसल जो है इस्लामी नजरियाती कौंसल या हुकूमती इदारा है, तो वहां पे हुकूमत जो है वो किसी रहनुमाई के लिए अदालत भी अपना केस रेफर करती है, फिर हुकूमत भी करती है, सदर और वजीर आजम जो है वो भी एडवाइस लेते हैं इस्लामी नजरियाती कौंसल से अगर किसी कानून को पास करने में कोई मामला हो, इवन कौमी असेंबली जो है वो भी रहनुमाई ले सकती है इस्लामी नजरियाती कौंसल से, तो वो सिर्फ अपनी राय देने के जो है ना वो मिजाज है, राय देने की जो है ना वो अथॉरिटी है, वो केस के ऊपर कोई फैसला जो है इस तरीके का या किसी को मुल्जिम जो है ना वो ठहराने की वो अथॉरिटी।
4: बिल्कुल ठीक है, मैं उनके दायरे इख्तियार नहीं आता। चलें अच्छा जनाब कॉल्स ले लेते हैं, रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा आज मुख्तसर बात कीजिएगा ताकि मैं 8-10 कॉल्स मेरे पास आए तो मैं सबको ले लूँ। 7997 सर फर्स्ट कॉलर एज यूजुअल आप हैं, 7997 आप बात कीजिए।
6: कैसे हैं आप?
4: जी बिल्कुल ठीक है, शुक्रिया सर, थैंक यू।
6: अभी ये बात तो अभी आपने बड़ा अच्छा किया है कि एक एक एक वो लगा दी है कि भाई ये टॉपिक है इसी पे बात करने, वरना कोई कहाँ से चीजें बताता है, कोई कहाँ से बताता। बात ये है पीटीआई वालों के पास लीडरशिप है ही नहीं, ठीक है। इमरान खान की बहुत बड़ी मिस्टेक ये है, इमरान खान की क्या है, जितने भी सियासी है पाकिस्तान में जिनको आप सियासतदान कहते हैं, इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं होती, ना ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना के उन लोगों तक बात करने, ये चाहते हैं कि भाई हम जैसे चौधरी हैं और नीचे वो क्या होता है वो गांव में क्या उसको
4: कमी कहते हैं।
6: हाँ वो ये पब्लिक वो है और उनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है, वो जहाँ ये लोग जाए वहां जा नहीं सकते, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, उनकी चीजों में अटेंड नहीं कर सकते, उनकी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है। तो खान साहब की जो गलती है ना, इसीलिए वो अभी जेल में है। अगर उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती तो ऐसा नहीं होता।
4: चले थैंक यू सर, आज
6: आप कह रहे हो रिकॉर्ड्स का,
4: जी जी,
6: पाकिस्तान में किसी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ इंडस्ट्री में हम भी इन्वॉल्व हुए हैं, करने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, पता चलता है कुछ भी।
4: ठीक है सर, आज टाइम कम है, 5666 सर आप ऑन एयर हैं, 5666।
7: अस्सलाम
4: वालेकुम सर,
7: हम बातें इधर उधर की करके घुमा देते हैं, इसी बात से हम हट जाते हैं। बात ये है कि पाकिस्तान जो है बहती गंगा है, इसमें जनाब पवित्र इमरान नियाज़ी साहब भी नहा के गए हैं, हाथ धोए हैं, जिधर उनका बस पड़ा है, जिधर उनका हाथ पड़ा है, उन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट भी लिए हैं, उन्होंने यहाँ पे जमीनें भी मारी हैं, उन्होंने यहाँ पर
4: तोशाखाना
7: से घड़ियां भी मारी हैं, उन्होंने हर वो काम किया। भाई अगर आप इतने पवित्र थे आपको क्या जरूरत थी तोशाखाना से घड़ी लेने की, आप गरीब थे। तो बात सही है सर कि ये बहती गंगा है, सब इसमें नहाते हैं, तो वो भी नहा रहा है। अब बात दूसरी चीज यह देखिए कि बात यह है कि जो अपार्टमेंट्स हैं इसमें पीटीआई के ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं, वो पीटीआई वाले इसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं जी
4: क्या पता सर पैसे दे के लिए उन्होंने, उनका क्या कसूर है जब सबने पैसे दे दिए, गवर्नमेंट दे रही है तो
7: अल्लाह करे ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं समझता नहीं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये कहना कि इस दौर में वैसे भी एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान एक बहती गंगा है, इसमें हर बंदे
4: उनका ऑफिशियल दौरा है उसमें क्या। अच्छा ठीक हो गया सर, थैंक यू शुजा साहब। 5415 में खल छोड़ गए, 5415 नहीं है, 9-6910 सर आप ऑन ले रहे हैं, 6910। वालेकुम सलाम सर,
8: फरिश्ते और शैतानों में या चोर डाकू और एक ईमानदारी में जरा सा फर्क होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही यही है कि जो झूठी कस्बे खाते थे या खाते हैं उनको यही नहीं पता। मैंने बहुत दफा ये रिपीट किया है, जो बहुत गूगल वाले सर्च करने वाले उनको सर्च करना चाहिए कि उन्होंने खुद तस्लीम किया था कि मैंने दुबई में इन्वेस्टमेंट कर दी थी शौकत खान के जुटने के पैसों की, जो कि बगैर परमिशन के वो हम
4: सर उनकी हिम्मत ही ना कह दिया उन्होंने, वरना को लोग तो मानते नहीं है।
8: नहीं वो तो जब इंक्वायरी होती पता चल ही जाता है, हिम्मत तो फिर वो हिम्मत दिखा रहे थे तो फिर दूसरों को चोर नहीं कर रहे
4: थे,
8: कोई काम आप गलत कर रहे थे वही दूसरे कर रहे हैं, तो आपने उनमें फर्क होना चाहिए। और यही वो जो हाथ है जिसकी वजह से अब लोग खुद ही कहने लगे कि गलतियां हैं, पहली बात तो गलती भी और गुनाह भी, और सबसे ज्यादा हाथ धोया है उनकी में से जिनको उन्होंने खुली छूट दे रखी थी, ये भी बताया
4: जब इल्जाम साबित होंगे तो पता चलेगा
8: सच खाते हैं नहीं, तो जो भी होगा फैमिली के हिसाब से जब आपने दूसरों के फैमिली को बदनाम किया तो फिर
4: चलें सर। ठीक सर, आज थोड़ा टाइम कम है, सर थैंक यू बहुत शुक्रिया।
8: अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतर करे, जो भी आने वाला हो वो इन किस्म की हरकतों से
4: चले। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। 5794 सर अपॉन एनी 5794।
9: अस्सलाम वालेकुम जनाब। बट्टी साहब, आज एक प्रोग्राम में ये जो अपार्टमेंट्स है ना, ये इनका जो सरगुना है ना सारा, वो हफीज से है, ठीक है, और हफीज शेख ने एज ए गिफ्ट हां साहब को 80 करोड़ का जो दिया है, और हुज़ैफ़ा रहमान ने, आज मैं क्लिप भी भेज देता हूं, बिलाल साहब को भी भेज देता हूं, उसने बोला है कि अगर मैं एक बात भी अगर ये साबित कर दे उसकी पूरी रिपोर्ट तो जनाब आप मुझे सू कर दें। बट्टी साहब बात देखें, बात वही आ जाती है जब तक बंदा अपने गिरेबान में नहीं ना झांकता, दूसरों को ओए ओए चोर डाकू फला, तो भाई आप ही, आपकी टीम ही, आप लोगों ने भी तो फिर वही किया, तो फिर क्या फर्क रह जाता है। बात बड़ी सिंपल है, किसी को जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो चार उंगली आपकी तरफ आती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जिन लोगों ने पैसे दिए हैं, अपना रोजी और अपना बेहतरीन उनका रिजल्ट है, तो उनके तो साथ तो उनका मामला ठीक होना चाहिए। बाकी यहाँ बख्ती साहब फिर वही बात आ जाती है, पाकिस्तान में कौन है। अब ये साकिब निसार को और दूसरे को सबसे पहले तो पकड़ना चाहिए ना कि भाई आपने एक होटल को किस तरह, मतलब इस तरह बिल्डिंग में लीगलाइज किस तरह किया। चले आज ठीक है,
4: 8156 रहा पौने रहे, 8156।
10: हेलो
4: जी जी।
10: लेकिन जब ये अपार्टमेंट बिक रहे थे, मुझे पता है उसका, इमरान खान ने 5 करोड़ उनकी कीमत थी, वही देख खरीदा था,
4: ठीक है,
10: ऐसी जैसे बताया कि वो मियां वाली की जमीन बेच गई, तो उसके पास मनी फेल है, ऐसा नहीं
4: है, ठीक है, मतलब वो तारे वहां पे पुना, ये तो नहीं कह रहे कि उन्होंने नाजायज
10: 80 करोड़ फलाना धमाका, ये सब कहानियां हैं।
4: अच्छा जी,
10: ऐसे कैसे अपार्टमेंट 80 करोड़ का हो सकता है ये। अच्छा जी, दूसरा हो गया वो अडियाला डेट में लोगों के आने की, लेकिन बेशक MNA MNPA सारे आ जाए या 1 लाख लोग भी जमा हो जाए, फिर भी मुलाकात नहीं होगी, क्योंकि वो कंट्रोल चीज़कूर के पास है।
4: सर आप 10,000 बंदा इकट्ठा कर लेना, सिर्फ 10,000 बंदा भी आ गया बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है।
10: जनाब कुछ भी आ जाएंगे वो फायर बार
4: ठीक
10: पानी छोड़ दें, गोली चला देंगे, पहले कर चुके उसको,
4: चलें ठीक,
10: उनके पास कोई इख्तियार नहीं है, ना जेल सुपरिटेंडेंट के पास कोई इख्तियार है, ना कोई हुकूमत।
4: ठीक है सर जी, आज थोड़ा टाइम कम है, थैंक यू सर,
10: ठीक है, वो जी इसके पास है, उन्होंने मुलाकात नहीं करानी।
4: ठीक सर, थैंक यू। 6141 सर आप ऑन है, 6141।
11: अस्सलामुअलैकुम बेटी साहब।
4: वालेकुम सलाम सर, वालेकुम।
11: बेटी साहब मैं काफी दिनों से इंतजार में था, आपके पास खुला टाइम होगा, मैं जी भर के बातें करूंगा, लेकिन
4: आप जल्दी, आप फर्स्ट फोन किया, नहीं आप ना 8:30 में फोन कर ले करें, जो पहला कॉलर मैं बिल्कुल तरतीब से लेता हूँ, यकीन करें कॉले, जैसे
11: मैं छोटी सी बात कहता हूँ, कट कटा के इतना कहता हूँ, अलीमाबादी ने खुद कॉल दी है ना, आप देखना यहाँ से भी कई जहाज भर के जाएंगे, सारे लोग आएंगे और हुकूमत का तख्त उलट देंगे। बहुत शुक्रिया आपका,
4: चलो थैंक यू। दो कॉले और है, पता नहीं मैं ले सकता हूँ, 5686 बात कर सकते हैं 30 सेकंड सिर्फ, 5686।
12: अस्सलाम वालेकुम।
4: वालेकुम सलाम सर
12: जी। भट्टी साहब जल्दी से मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। नंबर वन जो है, आपने कराची की जो बात की सब्सिडी की 2000 की और मोटरसाइकिलों की, तो वहाँ रिश्वत इतनी चलती है कि जो चाहे जिसके नाम पे कर ले। डिफेंस में बंगले भी लोगों ने अपने नाम पे कर लिए, आज तक पता ही नहीं चला कि किसकी असली बंगला है वो।
4: दूसरा जो पंजाब की बात की थी मैंने, पंजाब में 2000 नहीं मिल रहे। जी जी आगे।
12: अच्छा अच्छा, सिंध में नहीं मिल रहे,
4: सिंध में तो पहले ही ऐलान किया हुआ कुछ। हाँ जी।
12: दूसरा ईरान की जो वॉर चल रही है उसमें यही चाहिए पाकिस्तान को, पीस टीम को चाहिए कि यूएसए पे दबाव डालें और वो कहें कि जैसा था कंडीशन जंग से पहले सब वहीं अपने अपने बैठ जाएं और खत्म कर लें।
4: चलिए थैंक यू सर। 7282 बहुत शुक्रिया। 7282 सर 20 सेकंड में बात कीजिए। 7282
13: सारी जायदाद अपनी वक्फ की दी है शौकत खान ने, शर्मी की इंतहा कर देने इस बंदे नु, ओ बंदे नु पैसा और जुतियां मार दे।
4: चलो बस सर जी, आज मेरे को टाइम मैंने ऐसे कंप्लीट हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। बिलास साहब क्लोज कीजिएगा सर।
5: जी जी क्लोज, बस ऐसी है कि हम इसको मामले को जो है ना अभी चल रहा है, साथ साथ फॉलो करेंगे, क्या जो है ना अपडेट्स होती हैं फिर अपडेट करेंगे साथ साथ।
4: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, कल आपसे मुलाकात होती है और आपसे भी जाएंगे, ज्यादा दुआ में रखिएगा याद, हौसला नहीं हारना, हौसला भी होने की चीज, एंड ऑलवेज फॉलो योर हार्ट, क्योंकि सब अच्छी के बाद बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह। हमारी एक मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो में जी मर रही है, मेजबान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज़ और सपुर्द-ए-माना।

0: leave Aga for the time being, so that log up their future summer de levy plans, Banasakan. We know in Canada, there are many communities that Canadians live in, jithe car hona necessity hagiya. It's not a luxury, but it's a necessity, and we want to make sure be is time de vich ona the impact kataya jave. But of course, long term, we want a resolution of that situation, and so that's why if we are going to wait and watch and see. But as we work on long-term solutions, a temporary relief hega locally, just like the groceries and essentials benefit jidi tusi gal kiti hegi hai pehla o June 5th nu o date assi huni announce kiti hegi abhi June 5th nu jehda pehla payment hega oho jinna nu GST HST credit milda hega o sab log इस बेनिफिट का इंतजार कर सकते हैं या जून 5th उन्होंने बैंक अकाउंट्स के विच ये बेनिफिट होगा. इट इज गोइंग टू बी 50% मोर देन दे यूजुअली गेट. सो ये एक वन टाइम टॉपअप हैगा या तो उस तो बाद जो क्वार्टरली पेमेंट्स होनगियां वो 25% होर होनगियां फॉर द नेक्स्ट 5 years. दिस इज टू हेल्प जदों यू नो सेम थिंग टेम्पररी रिलीफ फॉर द नेक्स्ट 5 years, सो दैट लोगों को सपोर्ट अज मिल सके. पर एट द सेम टाइम यू नो वी आर नॉट जस्ट रिलाइंग ऑन दिस. असी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहे हैं ग्रीन हाउसिंग दे सप्लाई चेन्स न होर मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं थ्रू डिवर्सिफिकेशन. नमें पार्टनर्स लभ रहे हैं आउटसाइड ऑफ द US दैट वी कैन डू ट्रेड विथ. एंड जे अपने इंटर प्रोविंशियल ट्रेड बैरियर्स भी है अपने मुल्क के प्रोविंसेज न बिठा के वह भी समझौता हो रहा है आ सो दैट द प्राइस ऑफ गुड्स इन कैनेडा कैन बी डीक्रीज्ड. एंड सो फूड की भी जी प्राइस हैगी भी काफ़ी इंपैक्ट पैदा हैगा. एंड नाल दो नाल दी नाल जिस तरह थोड़ा पता ही हैगा कुजमा दी भी रीनेगोशिएशन शुरू हो रही हैगी आ. एंड यू नो अ लॉट ऑफ एफर्ट इज बीइंग पुट इनटू दिस. एक नवी टीम बनाई गई हैगी आ 25 मैंबर दी टीम जो अलग अलग एक्सपीरियंस दे हैगे ने उहदे विच फॉर्मर कंजरवेटिव मैंबर्स भी हैगे ने बिजनेस लीडर्स हैगे ने सो दैट ओहो एक एडवाइजरी काउंसिल दे तौर भी काम करन. पर ओ अक्रॉस US सब दी रिलेशनशिप्स नू भी यूज करके अपनी मदद कर सकन इस नेगोशिएशन दे विच.
1: अच्छा ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਥੋੜਾ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਫॉर द ਲਿਸਨਰ ਜਾਂ ਵੀਵਰਸ ਆਸ ਹੋ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਗਰੋਸਰੀ ਬੈਨੀਫਿਟ ਇਹ ਫਰਸਟ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਸਦੇ ਬਾਅਦ 25% ਜੋ ਹੈ ਹਰ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਮਿਲੇਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏਗਾ
0: क्वार्टरली. सो जिस तरह GST HST क्रेडिट मिलता हैगा ना वही GST HST क्रेडिट नू रीनेम किया जा रहा हैगा एक ते उस बेनिफिट नू इंक्रीज किया जा रहा हैगा. सो जिहड़ा पहला टॉपअप हैगा जून 5 नू ओहो फॉर अ फैमिली ऑफ फोर. इट डिपेंड्स ऑन योर इनकम. सो GST इनकम दे हिसाब दे नाल मिलता हैगा या राइट. सो अ फैमिली ऑफ फोर खुद get up to $1,890. A single person could get over $800 or $900, sorry, in this first year of 2026. Which June the payment here, it depends on your income. It could be 200, it could be 300. It really depends on those factors. So that's why it's hard. But I can give you an average and up to number. Baki ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੁਣ ਮਿਲਦੀ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂ ਖੁਦ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50% ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ ਪਹਿਲੀ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਆਰਟਰਲੀ ਫਾਲੋ ਅਪ ਪੇਮੈਂਟਸ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਗਲੇ 5 25% ਵੱਧ ਮਿਲੂਗਾ.
1: ਸੋ ਇਟਸ ਨਾਟ ਇਨ ਲੰਪ ਸਮ ਦੇ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਇਨ ਦੀ ਇਨਸਟਾਲਮੈਂਟਸ. ਚਲੋ ਇਹ ਬਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਜ਼ ਅ ਰੀਸੀ. ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੇਲਸ ਟੈਕਸ ਨਵੇਂ ਘਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜੋ ਹੈ ਬੜਾ ਰਿਲੀਫ ਦੇ ਰਹੇ ਪਲੱਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਉਹ ਘੱਟ ਕਰ ਰਹੇ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਵੀ ਐਂਡ ਆਲਸੋ ਦ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ. ਕਿੰਨਾ ਫਰਕ ਕੋਈ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਾਰਕੀਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਕਲਾਈਨ ਤੇ ਹੈ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਇਹਨਾਂ ਐਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ?
0: Our hope is that housing be more affordable bane Canadians de layi, right? At the same time, loka ne abde housing de vich investments bhi banaiya hoiya hai ne. So main sirf eh keh sakdi hai gi bhi bada balance de naal ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਰਿਫੋਰਮ ਜਾਂ ਚੇਂਜ ਜਾਂ ਇਨਸੈਂਟਿਵ ਬਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਲਦੋ ਵੀ ਵਾਂਟ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦੈਟ ਪੀਪਲ ਯੂ ਨੋ ਡੋਂਟ ਟੇਕ ਬਿਗ ਲੋਸਿਸ ਇਨ ਦੇਅਰ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟਸ, ਵੀ ਆਲਸੋ ਨੀਡ ਟੂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਡਰਸ ਹੈ

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकुट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राह बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
6: Roshan Mustakbil aur apno ka saath jannat se kam nahi. आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ, मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकुट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
4: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
8: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
3: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
9: मिसिसागा रिजवे
3: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
10: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050

0: and let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: The Law Professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca.
2: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677

0: बड़ी देर के बाद जो है वो डांस करने को दिल किया है। इतना मजे का गाया है सामिया ने, बहुत अच्छे। शाजिया मंजूर साहिबा ने भी इसको बहुत अच्छा हक अदा किया इसको गाने का, के पूरी दुनिया में ये सुपर हिट हुआ। और सामिया आपने भी बहुत अच्छा गाया,
1: थैंक यू सो मच,
0: जस्ट लव दिस परफॉर्मेंस।
1: थैंक यू
2: मलकू स्टूडियो सीजन 1।

0: इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी थी. इस गाने में बड़ी मुश्किल मुश्किल मींडे थी, बीच में जगह थी, वो चीज भी आपने अच्छी निभाई, और फिर जो उसमें वेस्टर्न बिट्स थे वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से किया. देन ऑफ कोर्स टुडे यू आर आल्सो ऑन अनदर लाइक यू नो इन अनदर एवटार, यू आर वेरी यू नो फ्रॉम वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम, एंड beautiful, enjoyable performance. Thank you so much for it.
1: Thank
0: it was
1: so much,
0: wonderful. Thank you
1: so much.

0: 93FM.
1: न्यूज के लिए मैं दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें. अमरीकी और ईरानी फौज के एक दूसरे पर हमले के बाद आबनाए हुरमुज में जंगबंदी की सूरत हाल नाजुक हो गई है. ईरान ने आबनाए हुरमुज में एक अमरीकी जहाज पर हमला किया है, जिसके बाद यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर जहाज पसपाई पर

स्टूडेंट्स में आपके नंबर 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम 24 घंटे हमारे निशात रेडियो पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं। फेसबुक पर हमारा पेज रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से भी लाइक कीजिए। ट्यून इन पर हमारा प्रोग्राम अवेलेबल है। फोन के जरिए सुनना चाहें 647-506-0003 पर कॉल करके हमारा प्रोग्राम सुन सकते हैं। हमारा टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी तमाम आई टी वी बॉक्सेस जादू बोलसोम बस के साथ साथ एप्पल टीवी अमेजान फायर टीवी रोकू टीवी के साथ साथ ट्यूबर ऐप के थ्रू रॉजर्स पे भी आप हमारे निशा देख सकते हैं। हमारी ऐप भी आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप स्टोर पर जाकर टाइप कीजिए टोरंटो 360 टीवी। एंड्रॉइड आईफोन दोनों के लिए हमारे पास फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन निशा भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं। आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। रिलसेट के वाले कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए। कॉल तला भट्टी 647-295-7861। आपको घर खरीदना है, बेचना है, लीज करना है, इज अ वेरी गुड टाइम फॉर बाइंग। ये बायर्स मार्केट है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इस मार्केट में मौजूद हैं। बहुत से खास तौर पे जो टाउन हाउसेज हैं वो बहुत ही प्राइस अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं। आप तला को कॉल कर लें 647-295-7861। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के निशान आप हमारे टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी पे भी 7 से 9 बजे देख भी सकते हैं। सुन तो आप सकते हैं सीएमआर पे, लेकिन हमारे टीवी चैनल टोरंटो 360 टीवी पे आप हमारे निशान देख भी सकते हैं। आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए। रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम में आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूं।

बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।

0: मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही।
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
4: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
5: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी और अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज, वॉशर, ड्रायर, किचन रेंज और माइक्रोवेव, सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
4: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
5: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
4: दैट्स वंडरफुल।
5: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा।
4: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
5: ऑन बवे, जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट ब्रैम्पटन अप्लायंसेस .ca।
6: करम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9582800009। 905-828-0009। योर लॉगिन हो अलकरम ज्वेलर्स .ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।

0: आईसीसी इमिग्रेशन की आरडी एमडी और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कार्ब्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर ले 905-461-2424। इट्स 905-461-2424।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600। क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। SSR Auto Repair, 3438 Shepherd Avenue East, Scarborough, Warden और Shepherd का intersection, 24/7 Auto Repair, very close to Highway 401. तमाम major repair work करते हैं, body shop, accidental repair, denting, painting, engine repair, oil change, tire change, brake pads and router, wheel alignment, battery and AC service, 24/7 towing service भी available है. SSR Auto Repair, call Nazir Chaudhary, Avais Chaudhary और Munir Hussain, 647-321-74 44. It's 647-321-7444. क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200।
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
3: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते के नंबर है। खुदा न खास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, कॉल कर लीजिए। फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम इसी प्रोफेशन में हैं, बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ ही काम करते हैं। मैक्सिमम कंपनसेशन आपको मिल जाएगी, और हमेशा जब केस सेटल होता है फीस एक्सीडेंट क्लेम की, उसके बाद ली जाती है। 416-570-0157।
4: हमेशा बात करते हैं एक्सीडेंट की, अवेयरनेस देते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन जिस तरह दिन रात हम एक्सीडेंट की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि अवेयरनेस क्या है, इसी तरह से जब आपको ट्रैफिक टिकट मिल जाते हैं तो उसकी अवेयरनेस आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब टिकट मिलता है तो लोग कहते हैं कौन कोर्ट जाएगा, उसके पर लिखा हुआ $560 या $400 देने, तो कौन इस सारे हैसल में पड़े, सीधा सीधा जाके फाइन पे कर देते हैं। जब आपने फाइन पे कर दिया, इसका मकसद हुआ कि आपने एक तो गिल्टी ले ली, उसके बाद फर्ज कीजिए कि अगर आपको केयरलेस का टिकट मिला है तो राइट अवे आपके 6 पॉइंट जो है आपके लाइसेंस से कट गए, और वो 3 साल तक आपके एब्स्ट्रैक्ट पे आते रहेंगे कि आपको केयरलेस का टिकट मिला था। इसी तरीके से मुख्तलिफ सेक्शंस के हिसाब से मुख्तलिफ आपके पॉइंट जाते हैं, और अगर आपको जो टिकट मिलती है आपने पैसे पे कर दिए, इसका मकसद हुआ कि मैंने इसको कबूल कर लिया कि ये मेरा जो चार्ज था वो सही था और मैं गिल्टी करता हूँ जब आप पैसे पे करते हैं, और फिर उसके बाद जो है वो आपके रिकॉर्ड पे रहता है, आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है, अल्लाह ना करे आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और टिकट मिल जाए, तो पिछला रिकॉर्ड निकाला जाता है कि आपके रिकॉर्ड पे तो दो टिकट पहले से ही है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको जब टिकट दी जाती है तो आपको ये कहा जाता है कि आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप गिल्टी कर लें, एक ऑप्शन है अर्ली रेजोल्यूशन, एक ऑप्शन है आपके पास ट्रायल एंड आप उसको जो है नॉट गिल्टी करते हो। हमेशा आपको ट्रायल और नॉट गिल्टी करना चाहिए ताकि आपका अपना वर्जन भी आप बयान कर सको, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से टिकट मिला, ऑफिसर ने ये कहा, जाहिर है आप ऑफिसर से आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, तो वो आपको टिकट दे के चले जाते हैं, लेकिन आपका एक अपना वर्जन होता है कि ऐसा नहीं था ऐसा था, तो वो आपको बताने का एक मौका मिलता है आपके रिप्रेजेंटेटिव को। नॉर्मली टिकट जो है वो पैरालीगल्स करते हैं, हमारी टीम में लॉयर मौजूद हैं जो आपके टिकट को डील करते हैं, जो कि बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। तो ना सिर्फ आपको हम उन टिकट से निजात दिला देते हैं या कोई बेहतर तौर से आपको कोई फैसला लेकर देते हैं जो कि आप खुद नहीं ले सकते, और आपको कम से कम आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्लीन रहता है या कम से कम आपकी इंश्योरेंस बिलावजह नहीं बढ़ जाती। लेकिन जहां हम हमेशा रेडियो पे बताते हैं कि कार एक्सीडेंट जब भी होता है आपको कंटिजेंसी फीस होती है, और आपको इन द एंड ऑफ द डे आपको अपनी टिकट के पैसे, आपको अपने जो सेटलमेंट के पैसे हैं वो आपको लॉयर की फीस जो है इन द एंड ऑफ द डे देनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं टिकट की तो आपको टिकट में अपफ्रंट पैसे देने होते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में जाके आपकी टिकट को नॉट गिल्टी करके फाइट करता है, और इसका तरीकेकार बिल्कुल डिफरेंट है और ये कंटिजेंसी फीस नहीं होती। हमेशा की तरह अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट हो गया है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, जमाना बीत गया, क्या मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, तीन डकैत हो गए, आपका हमारा साथ है, आवाज सुनते रहते हैं, प्लीज मुझे कॉल करें 416-570-0157। कोई कार एक्सीडेंट हुआ हो, कोई आपको टिकट मिली हो, आप जरूर कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैशी। फ्राइडे आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू। नंबर नोट कीजिए मतलब सामी 416-570-0157। पेशावर जर्मी PSL 11 की चैंपियन बन गई है, बाबर आजम ने ट्रॉफी उठाई है, अंडर 19 की ट्रॉफी उठाई, तो उसके बाद शायद बड़ा इंतजार करना पड़ा उन्हें एक ट्रॉफी उठाने के लिए। हैदराबाद को उन्होंने शिकस्त दी। हैदराबाद की टीम वन साइडेड एक वक्त में हो गया था, क्योंकि हैदराबाद की टीम 129 रन पर आउट हो गई थी। तफसील हम बताएंगे थोड़ी ही देर में, और इस वक्त आपके लिए पहले पेश कर रहे हैं आज की शायरी।
5: शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। अपने आप से आंख चुराए फिरती हूं मैं, आईने में किसका चेहरा देख लिया है। अब भी सपने बोए तो ईमान है उसका, उसने इन आंखों में सहरा देख लिया है। उसने मुझे दरअसल कभी चाहा ही नहीं था, उसने मुझे दरअसल कभी चाहा ही नहीं था, खुद को देखकर ये भी धोखा देख लिया है। उससे मिलते वक्त रोना कुछ फितरी था, उससे बिछड़ जाने का नतीजा देख लिया है। रुखसत करने के आदाब निभाने ही थे, बंद आंखों से उसको जाता देख लिया है। शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है।

0: Hello, Pakistan Toronto CMR 101.3 FM स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0000। हर शख्स एक शिकायत ये करता है कि अपनों ने जो है वो धोखा दिया और गैरों से क्या शिकायत करें। आप क्या इस हवाले से कह सकते हैं, गैर भी उतना ही कुछ करते हैं या अपने करते हैं। वैसे कहते हैं अपना होता है तो वो छाँव में मारता है, लेकिन आजकल में खल इसके थोड़ा सा उलट हो गया। 7:30 हमारे स्टूडियोज की घड़ियों के वक्त लिए चलेंगे आपको कनेडियन शेड लाइन की तरफ। शॉप के लिए पेश करते हैं मानी
1: न्यूज के लिए मदद दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861।
2: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो। दिस इज मीवानी विद लोकल अपडेट्स। A man who caused a car crash that killed three siblings last year has been sentenced to 8 years in prison minus the time he has already served. Toronto Fire Chief Jim Jessop said crews are working on putting out the alarm fire at 11 Thornview Park Drive, which was the site of weeks-long fire that displaced hundreds of residents in 2025. 4 Canadians are confirmed to be on board a cruise ship on Atlantic Ocean where the suspect outbreak of the rare hantavirus has killed 3 passengers and left 3 other people seriously ill. A Toronto woman who says she is desperate to die has filed an emergency motion with the Ontario Superior Court of Justice to receive a medical-assisted death for a sole underlying condition of a mental illness. Police in Durham region are investigating after 3 homes were damaged in what authorities described as an arson that took place in Pickering early Sunday morning. The federal government said Monday it will put $1.5 billion towards tariff relief in response to the United States expanding the range and the depth of its metal tariffs. Alberta's Paris movement have reached new milestone as organizers delivered what they say are more than 301,000 signatures calling for provincial voting on leaving Canada. 36% of Canadian restaurants operating at a loss or breaking even. The Ford government is introducing legislation cracking down on drug use on public transit while also targeting illegal drug production. Toronto is escalating its fight against negligent landlords as Toronto Mayor Olivia Chow says long overdue repair, pest control and safety work are finally underway at 500 Dawes Road, one of the city's most notorious neglected rental buildings. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: Canadian News headlines aapke liye Vani pesh kar rahi thi. Aap sun rahe hain Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM. PSL का फाइनल पेशावर जलमी ने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हरा कर जीत लिया। दूसरी मरतबा जलमी जो है वो चैंपियन बनी है। 9 साल के बाद ये टाइटल जीता है। 130 रन का हदफ दिया था 16वें ओवर की दूसरी गेंद पर 5 विकेट पर जलमी ने, पेशावर जलमी ने ये नुकसान जो है विकेट स्कोर पूरा कर लिया। और पहली विकेट 6 रन पर गिर गई थी, मोहम्मद हारिस 6 रन बनाकर आउट हुए। टीम की दूसरी विकेट 7 पर गिरी, बाबर आजम 0 पर आउट हुए और मेखल शायद पहली दफ़ा इस सीरीज़ में 0 पर आउट हुए हैं। और तीसरी विकेट 33, चौथी 40 पे गिरी, कौशल मेंडिस 9 और माइकल 4 रन बनाकर जो है वो आउट हुए माइकल ब्रेसवेल। अच्छा, 5 विकेट पे एरन हार्डी और अब्दुल समद ने जिम्मेदार अपना बैटिंग की, 85 रन की पार्टनरशिप बनाई और फिर तकरीबन वो आखिर में बाउंड्री पर आउट हुए, अगर ना शायद वो छक्का होता तो उस वक्त ही मैच खत्म हो जाता। एरन हार्डी ने प्रेशर में 36 बॉल्स पे अपनी 50 मुकम्मल की, 56 रन बनाकर नॉट आउट हुए। अब्दुल समद ने 48 रन बनाए। फरहान यूसुफ ने विनिंग शॉट लगाया और 9 साल बाद अपनी टीम को पीएसएल जितवाया। मोहम्मद अली ने 3, आकिफ जावेद और हनैन शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। और पेशावर जर्मी ने टॉस जीतकर हैदराबाद किंग्स को पहले बैटिंग की दावत दी थी। शुरू बहुत अच्छा था उनका, पहले 6 ओवर में शायद 70 से ज़्यादा स्कोर उन्होंने कर लिया था, लेकिन फिर 2 रन आउट हो गए उनके और फिर शायद 5-7 रन के अंदर ही 4 जब इनकी विकेटें गिरी हैं उसके बाद वो कुछ संभल ही नहीं पाए। और मैक्सवेल 0 पर पहली बॉल पर आउट हो गए। साय में 54 रन उन्होंने बनाए। मा सदाकत 11, मार्नस लेबेशन कप्तान 20 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान ने 8 रन बनाए और 72 पर चौथे खिलाड़ी इरफान नियाजी थे, सिर्फ 1 रन बना के आउट हुए। मैक्सवेल भी कोई रन नहीं बना सके, वो भी 72 पर आउट हो गए। कुशाल परेरा जो है वो भी 1 रन बनाकर जो है रन आउट हो गए। इस तरह 73 पर उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद वो संभल ही नहीं पाए। हार्डी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, उन्होंने 50 बनाई और 4 विकेट भी लिए। उन्होंने सुफियान मुकीम को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बेस्ट बैटर बाबर आजम, बेस्ट बॉलर सुफियान मुकीम, बेस्ट ऑलराउंडर शादाब खान को दिया गया। बड़े करोड़ों की तादाद, करोड़ों की रकम जो है इनको दी गई। बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेसिव जो है वो इनकी क्लोजिंग सेरेमनी थी, बहुत सी फायरवर्क्स भी था और बहुत डिफरेंट किस्म का एक बॉल के नीचे वो खातून जो हैं वो लेकर आईं ट्रॉफी, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो, और शायद 32,000 से ज़ायद लोग जो हैं वहाँ पे मौजूद थे और बहुत ज़बरदस्त सी PSL बड़ा कामयाबी से, गो के आखिरी 2-3 मैचों में ही शायद शायकीन आए थे लेकिन बहुत ज़बरदस्त जो है आखिरी मैचेस जो है ज़बरदस्त रहे और पेशावर ज़ल्मी एक बार फिर चैंपियन बनी है। लेट्स सी अब आगे। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद ही 2 प्लेयर्स ऐसे थे, बाकी पूरी टीम बांग्लादेश जा चुकी थी टेस्ट सीरीज़ में, वहाँ 2 टेस्ट खेलने बांग्लादेश के साथ, और फिर 2 प्लेयर्स हमारे जो हैं वो खुर्रम शहज़ाद और बाबर आजम जो है वो भी बांग्लादेश चले गए हैं और अब 8 तारीख को पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट होगा। बहुत लोगों ने तनकीद भी की बाबर आजम पे, शायद अभी भी कुछ तनकीद कर रहे हैं लेकिन लगता ऐसे ही है कि शायद बाबर आजम ने अपनी फॉर्म जो है वापस जो है वो आ गई है, और क्लास कहते हैं परमानेंट होती है, फॉर्म जो है वो टेम्प्रेरी होती है, क्लास बाबर आजम की ऐसी है कि शायद वो बहुत परमानेंट है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। कमर्शियल ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आते हैं, स्टे ट्यून।
3: अस्सलाम वालेकुम, यू आर लिस्टनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो।
1: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है जैसे कि प्रॉपर्टी डिविजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी हैं दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉट इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन, 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 4374252500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
3: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट 9058191001 9058191001 license number 12374।
4: अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राब्ता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 9057831922। इट्स 9057831922।
5: जी हाँ, 9057831922 अहमद मलिक साहब के रबते के नंबर है। अहमद मलिक करजा माफ 20 साल से ज़्यादा अरसे कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं। हज़ारों की तादाद में लोग जो हैं उनको उनका कर्ज माफ़ करवा चुके हैं, उनकी ज़िंदगी आसान करा चुके हैं। आप भी किसी वजह से, अपनी गलती से, किसी गलती से अगर कर्ज के बोझ तले आ गए हैं, आप एक बार रबता ज़रूर करें 9057831922। हमारे साथ मौजूद हैं खुश आमदीद के मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम।
6: बहुत बहुत शुक्रिया अर्शद भाई, आपको और रेडियो पाकिस्तान सुन रहे तमाम लिसनर्स को जी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम को बोलो।
5: बहुत शुक्रिया आपका। जो सिचुएशन है, आपने पिछली दफ़ा जो मॉर्गेज डेलिक्वेंसी के हवाले से भी बात की थी, आज रेस्टोरेंट 36% जो हैं वो इस वक्त बता रहे हैं कि ब्रेक इवन या नुकसान में जा रहे हैं। ओवरऑल सिचुएशन मईशत की जिस तरह से है, सीबा लोन लोगों ने कईयों ने पे नहीं किया और बहुत से मसाइल हैं, ओवरऑल किस तरह से आप देख रहे हैं इन चीज़ों को और आप किस तरह से मदद कर सकते हैं लोगों की?
6: आखिर में गुज़िश्ता जब से जिस दिन से कोविड आया है, उस दिन से जो फाइनेंशियल पोजीशन है, फाइनेंशियल जियोग्राफी है, वो चेंज हो गई है तकरीबन हर इंसान की। पिछले 6-7 साल में वही लोग हैं जिन्होंने प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट करके लाखों डॉलर कमाए, और फिर वही लोग हैं जो दोबारा उन्हीं प्रॉपर्टीज को लेके स्टक हो गए, मजीद आगे प्रॉपर्टीज लेके स्टक हो गए।
5: बिल्कुल।
6: तो ओवरऑल सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा टाइट चल रही है। काफी सिचुएशन जो है कैश फ्लो का जो है वो हर बंदे को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है कि कैश फ्लो बहुत ज्यादा मुतासर हो गया है। आपने पैसे देने तो हैं, लेकिन जहां से आपने पैसे देने हैं वहां से आपको पैसे मिल नहीं रहे, तो सिचुएशन ऐसी चल रही है इस टाइम। बहरहाल हमारे तमाम वो लिसनर जो कर्जे के बोझ में आए हुए हैं, तो ये बात याद रखें कि यहाँ पर कंज्यूमर सिस्टम चलता है और ये सिचुएशन यहाँ पर चलती रहती है। तो इसलिए अगर आप किसी वजह से भी कर्जे के बोझ में आ गए हैं, आपने क्रेडिट कार्ड यूज कर दिए हैं, आपने कोई लोन लिया था जिसकी अब आपसे पेमेंट नहीं की पा जा रही, या आपको रेवेन्यू कैनेडा ने किसी तरह की आपसे पैसे की डिमांड कर ली है जो आप नहीं पे कर सकते, तो फिर इसका लोन को इस्तेमाल करने में कोई मजायका नहीं है। जो कानून हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिस कानून को हम प्रैक्टिस करने की आपको एडवाइस कर रहे हैं, जिसके तहत आप कर्जे से निजात हासिल कर सकते हैं, फिर इस कानून को अर्शद भाई यूज करने में कोई मजायका नहीं है। तो हमारा ऐसा कोई लिसनर है जो अगर कर्जों के बोझ में आया हुआ है, तो हम आपके कर्जों को 75% तक माफ कराने में आपकी हेल्प कर सकते हैं। बाकी के रहते कर्जे पर एक छोटी सी इंस्टॉलमेंट लगवा के आपको एक नई जिंदगी शुरू करने में आपकी मदद की जा सकती है। तो हमारा कोई लिस्टनर है, अगर आप कर्जे के बोझ में आए हुए हैं तो 9057831922 पर आप मेरे साथ कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और इन कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं।
5: थैंक यू वेरी मच अहमद साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब, और फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच,
6: बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
5: नंबर नोट कीजिए आप अहमद मलिक साहब का, और अभी कॉल कर लें। खुदा खास साहब कर्ज के बोझ तले आ गए हूँ, 9057831922 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से एम आर 101.3 FM, हमारे स्टूडियोज में आपसे नंबर 4165930003। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को कैपिटल बैंकवेट हॉल में होने जा रहा है। फ्री एंट्री एंड फ्री पार्किंग, बेशुमार इनामात हैं, और एवरी डे सोने के गिफ्ट दिए जाएंगे। एवरी डे इनाम घर इनका होता है, उसमें मुख्तलिफ इनामात दिए जाएंगे। फैशन शो होगा, मदर्स डे के हवाले से प्रोग्राम है, सिंगिंग कॉम्पटिशन हैं, कपल्स प्रोग्राम, बेशुमार इंटरटेनमेंट हैं, बच्चों बड़ों सभी के लिए बेशुमार तहफ़ भी होंगे। स्टॉल बुकिंग, अभी स्टॉल्स अवेलेबल हैं, आप कॉल कर सकते हैं। इन्होंने स्पेशल स्पेशल जो है वो डील स्टॉल्स पर लगाई हुई है, 4167106777 शम्स रहमान साहब से रब्ता कर सकते हैं। अगर आपने पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज़ खाने खाने हैं तो चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन पे चले जाइए। रिजवे में चाइनीज़ खानों के वाले से ये एक ज़बरदस्त किस्म की एडिशन है। इनका यूनिट 30 है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 रिजवे प्लाजा में है। पाकिस्तान पीसी की जो शेफ़ हैं, जिनका 14 साल से ज़्यादा तजर्बा है, स्पेशली वो यहाँ पर आए हैं। 100% हलाल फूड, फ्रेश ऑथेंटिक फूड है, नो MSG, नो फ्रोजन मीट, नो पैकेट मसाले। एक बार आप जाइएगा और चाइनीज़ पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज़ खाने खाने हैं तो आप चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज़ कुजीन तशरीफ़ ले जाइए। 905-514-7877 पर रब्ता कर लीजिए। 24 घंटे मैंने शायद पाकिस्तान .fm पर सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 TV। रियल स्टेट के बारे से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ते कीजिए। कॉल तलाब भट्टी 6472957861, 6472957861। लिए चलेंगे आपके न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब ज़ुबैरुद्दीन साहब।
7: You're listening to CMR FM 101.3।
8: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
9: खुदा न करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 4167001570157।
8: न्यूज के हम ताउन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस, 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 4374252500, इट्स 4374252500, आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861, 6472957861।
10: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी और ईरानी फौज के एक दूसरे पर हमलों के बाद आबनाए हुरमुज में जंगबंदी की सूरत हाल नाजुक हो गई है। ईरानी हुकाम का कहना है कि अमरीकी जंगी जहाजों ने मुबैना तौर पर अपनी रडार सिम्स बंद करके खुफिया अंदाज में आबनाए हुरमुज के करीब आने की कोशिश की, जो खत्ते की सिक्योरिटी के लिए खतरनाक इकदाम समझा गया। ईरानी बहरिया ने सख्त पैगाम देते हुए अमरीकी जहाजों के करीब क्रूज मिसाइल, रॉकेट और जंगी ड्रोन्स के जरिए वार्निंग शॉट्स फायर किए ताकि उन्हें इलाके से दूर रहने पर मजबूर किया जा सके। उधर जनूबी कोरिया का कहना है कि आबनाए हुरमुज में लंगर अंदाज एक जनूबी कोरियाई माल बर्दार जहाज पर भी हमला किया गया है। इससे पहले मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से कहा गया था कि उसकी सरकारी तेल कंपनी से वाबस्ता एक टैंकर को आज आबनाए हुरमुज में निशाना बनाया गया था। بحری جہاز پر ایرانی ڈرون حملوں کے بعد ایران کی جانب سے متعدد میزائل متحدہ عرب امارات کی طرف فائر کیے گئے۔ متحدہ عرب امارات کی ریاست فجیرہ میں ڈرون حملے کے بعد 3 افراد زخمی ہو گئے، جبکہ فجیرہ آئل انڈسٹری زون میں آگ لگ گئی ہے۔ متحدہ عرب امارات کا کہنا ہے کہ اس کا فضائی دفاعی نظام میزائل حملے کا جواب دے رہا ہے۔ اس کے فضائی دفاعی نظام نے ایران سے داغے گئے 3 میزائل فضا میں ہی مار گرائے ہیں، جبکہ 4th میزائل سمندر میں گرا ہے۔ متحدہ عرب امارات نے ایران کے حملوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دینے کا پورا حق رکھتے ہیں۔ ادھر صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ امریکہ نے ایران کی 7 کشتیوں کو تباہ کر دیا۔ انہوں نے دھمکی دیتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ایران نے امریکی بحری جہازوں یا پروجیکٹ فریڈم کے آپریشنز میں مداخلت کی تو اسے دنیا کے نقشے سے مٹا دیں گے۔ ساتھ ہی ان کا کہنا تھا کہ ایران کے ساتھ جاری سفارتی مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے اور ایرانی قیادت کا رویہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ لچکدار ہو گیا ہے۔ یاد رہے کہ پروجیکٹ فریڈم دراصل امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان کردہ ایک نیا بحری آپریشن ہے، جس کے تحت امریکہ ان بحری جہازوں کو بحفاظت نکالنے کی کوشش کر رہا ہے جو ایران کی جانب سے عملی طور پر قائم کردہ ناکابندی کے باعث آبنائے ہرمز میں پھنسے ہوئے ہیں۔ سینکوم کا کہنا تھا کہ ابتدائی مرحلے میں 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہازوں کو بحفاظت اس راستے سے گزار دیا گیا ہے۔ دوسری جانب ایران کی پاسداران انقلاب نے امریکہ کے اس دعوے کو مسترد کر دیا کہ 2 امریکی پرچم بردار تجارتی جہاز آبنائے ہرمز سے گزرے ہیں۔ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ گزشتہ چند گھنٹوں کے دوران کوئی بھی تجارتی جہاز یا آئل ٹینکر آبنائے ہرمز سے نہیں گزرا اور امریکی دعوے بے بنیاد اور مکمل جھوٹ ہیں۔ دوسری جانب عمان کا کہنا ہے کہ ولایت بخا کے ایک قصبے میں واقع رہائشی عمارت کے حملے کے نتیجے میں 2 غیر ملکی زخمی ہو گئے۔ جس رہائشی عمارت کو نشانہ بنایا گیا وہاں ایک کمپنی کے ملازمین رہائش پذیر تھے۔ ادھر متحدہ عرب امارات میں حملے کی اطلاعات کے بعد عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمت میں بھی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے اور خام تیل کی قیمت $115 فی بیرل تک پہنچ گئی ہے۔ واضح رہے کہ ابوظبی کے آئل فیلڈ سے ایک پائپ لائن فجیرہ تک جاتی ہے، جس سے آبنائے ہرمز کے مؤثر طریقے سے بند ہونے کے باوجود محدود مقدار میں خام تیل کو ٹینکروں پر لوڈ کیا جا سکتا ہے اور عالمی منڈیوں میں بھیجا جا سکتا ہے۔ ادھر امریکہ کے قبضے میں لیے گئے ایرانی جہاز توسکا کا عملہ پاکستان کے راستے اپنے وطن واپس پہنچ گیا۔ واضح رہے کہ امریکہ کی جانب سے تحویل میں لیے جانے والے ایرانی بحری جہاز کا 22 رکنی عملہ گزشتہ رات بحفاظت پاکستان پہنچ گیا تھا۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی ایلچی برائے مشرق وسطی اسٹیف وٹکوف نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بھارت کی 5 ریاستوں میں ہونے والے انتخابات کے نتائج کے مطابق ویسٹ بنگال میں بھارتیہ جنتا پارٹی نے 207 نشستیں جیت لی ہیں، جبکہ ترمنول کانگریس صرف 81 سیٹیں جیت سکی۔ ممتا بینرجی اپنی سیٹ بھی نہیں جیت سکی۔ آسام میں بی جے پی حکومت کی واپسی ہوئی ہے، جہاں اسے 82 سیٹیں ملی ہیں۔ تامل ناڈو میں ٹی وی کے نامی پارٹی نے سب سے زیادہ 107 نشستیں جیتیں، جبکہ کیرالا میں 63

0: बारबेक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बारबेक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बारबेक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में 9052829868।
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Mortimer. हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पेप एवेन्यू।
2: सिंस 1993 MWC Food Banks have provided individuals and families with non-perishable food, halal meat, and essential household items. Over 10,000 families across Canada rely on MWC Food Banks to supplement their food requirements. We serve in Scarborough, Mississauga, and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: Apna Hum Safar Global Travel and Tours.
4: Global Travel and Tours. Mississauga mein कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। IATA अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं। PIA के कंसोलिडेटर हैं और PIA टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उम्रा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 9052753555, 9052753555,
1: 918 Dundas Street East, Unit 1C, Mississauga। तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में। शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777। आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642।
5: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
1: 416-904-2046 or 416-662-7861.
6: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर, सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में, और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए। मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
1: Sunshine Radio proudly present the Grand Eid Bazaar on May 22nd, 23rd at Palacio Event Center, 34107 Coat, Mississauga. May 24th, 25th and 26th at Icon Event Space, 6887 Dixie Road, Mississauga. No tickets, free parking. Enjoy the shopping pleasure, clothing, jewelry, mehndi, churiya, food, entertainment and much more. Call Shaheen Khan or Matanat Khan at 416-825-9275.
2: Bride of Mississauga Barbecue Tonight Restaurant, 35 Dundas Street West, Highway 10 और Dundas के intersection Mississauga में। Barbecue का असली मजा Barbecue Tonight पर। चरगा लाहौरी फिश, चपली कबाब, कड़ाही गोश्त, चिकन टिक्का मसाला, चिकन बिरयानी, सीख कबाब, रेशमी कबाब, चिकन बोटी, चिकन टिक्का, बिहारी कबाब, लैम चॉप्स, अफगानी टिक्का, निहारी और बहुत कुछ। खूबसूरत कुशादा पैटियो, Barbecue Tonight Restaurant, 9052680088, इट्स 9052680088, हाईवे 10 और डंडास के इंटरसेक्शन मिसिसागा।
3: आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें। 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642।
4: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स, 9058191001, 9058191001, license number 12374.
5: The views expressed here during discussions, debates, and other programs are strictly that of the participants and not of the management of Radio Pakistan Toronto and CMR. Similarly, Radio Pakistan Toronto is not liable for any false, misleading messages from our advertisers. An advertiser is solely responsible for claims and litigation that may arise from airing of such ads.
2: प्रोग्राम का यह हिस्सा टीम भट्टी के ताबुन से पेश किया जा रहा है। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी, 6472957861, 6472957861।
6: Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM, Students में आपते के नंबर 416-593-0003। पाकिस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट बिलाल जमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, आपके लाइव कॉल्स भी लेते हैं, चंद अहम मौजूदात पर गुफ्तगू करते हैं। कल एक साहब से मुलाकात थी, उन्होंने कहा कि आप प्रोग्राम के आगाज़ में जो टॉपिक्स जिन पे आप डिस्कस करते हैं थोड़ा सा वो बता दिया करें एडवांस में, ताकि लोगों को उस वाले से कोई आइडिया हो जाए। तो मुझे मुनासिब लगा उनका मशवरा, तो मैंने कहा चलें देख लेते हैं ये भी करके। पहले बिलास साहब को खुश आमदीद कह लेंगे। बिलास साहब अस्सलाम वालेकुम।
7: जी वाले सलाम, क्या चल रहा
6: है? बिल्कुल ठीक, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। आज सामिन कराम जिन मौजूदात पे कोशिश करेंगे गुफ्तगू हो जाए। लीमा खान साहब ने तमाम पार्टी उद्दारों को कहा कि कल वडियाला जेब पहुंचे। अब MNAs हैं, MPAs हैं, सेंटर्स हैं, उद्दार हैं, बड़ा इम्तिहान है, कल पहुंचेंगे या नहीं, मतलब खुशी होगी या सुबकी होगी ये तो कल ही पता चलेगा। एक खातून गायनेकोलॉजिस्ट की जानिब से जस्टिस ऑफ पीस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला जारी किया गया है। इसके अलावा 2000 रुपये का पेट्रोल सब्सिडी जो है अवाम को दी जाए ऐलान किया था, पता ही नहीं है लोगों को, परेशान हैं अवाम, इस हवाले से बात करेंगे। आजकल सोशल मीडिया पर एक बड़ी बात चल रही कि ख्वाजा साद रफीक साहब के जो वन कॉन्स्टिट्यूशनल जो एवेन्यू है वहाँ पे उनका कोई फ्लैट्स वगैरह है, तो उन्होंने कैटेगोरिक लिस्ट से जो है वो लातालुकी का ऐलान करते हुए कहा कि उनका इस हवाले से कोई ताल्लुक नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के हवाले से एक इस्लामी नजरियाती कौंसिल ने जो कहा था, एक उन्होंने उसको कोर्ट ने जो है वो रद्द किया है और कहा गया है कि ये तो शायद उनका दारा इस्तेहकाक ही नहीं आता है। चल इन कोशिश करेंगे इन मौजूदात पर गुफ्तगू करें। बिलास साहब, लीमा खान साहब ने तमाम पार्टी उद्दारों रहनुमाओं को डियाला जेल पहुंचने की जो है वो हिदायत की है, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है कि एमएनएज एमपीज और सेंटर्स कल अडियाला जेल जो है वो पहुंचेंगे और मुतालबा जाहिर है उनका यही है कि इमरान खान साहब का इलाज शिफा हॉस्पिटल से करवाया जाए, जाती मालिश के जरिए निगरानी करवाया जाए। अगर तो पहुंच जाते हैं सारे तो फिर क्या दबाव में गवर्नमेंट आएगी और आपका ख्याल है कि लोग पहुंच जाएंगे?
7: जी देखें, इससे पहले भी जितने दफा कॉल दी गई है बड़ी मतलब है कि मायूसी हुई पीटीआई को, और पीटीआई अंदरूनी तौर पे काफी खलफशार का शिकार है और उनकी जो क्यादत है वो चार हिस्सों में बटी हुई है, उसमें केपीके की हुकूमत अलग है और अलीमा खान अलग हैं, अब उनके जो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा उनके साथ भी कुछ जो है ना वो मामला के ऊपर इख्तलाफात सामने आए हैं। फिर बैरिस्टर गौहर हैं जो चेयरमैन हैं, जिनको चेयरमैन ही कोई जो है ना वो तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। चौथे नंबर पे हदायत कहते हैं इमरान खान साहब से जो है ना वो डायरेक्ट लेंगे, और कुछ कारकुनान जो हैं वो अपने तौर पे जो है ना मतलब ये कि वो क्यादत को तनकीद का निशाना बनाते हैं कि जी क्यादत जो है वो सिंसियर नहीं है और इमरान खान साहब को जो है ना वो जेल में ही रखना चाहती है। तो कुछ लोग जो है वो खुद से मतलब ये कि उसकी एफर्ट में है, और ज्यादातर जो हम देख रहे हैं कि पीटीआई के अंदर वो कीबोर्ड वॉरियर्स जो है, यानी कि जो सारा फोकस और सारा जोर जो है सारी कैंपेन, चाहे वो दूसरों को जो है ना वो मतलब ये कि ट्रोल करना हो, जलील करना हो, तो वो उस मामले में जो है ना वो सब आगे आगे हैं, लेकिन जो असल उनका इशू है इस वक्त कि उनका लीडर जो है वो जेल में है, उसको किस तरीके से निकालना है, किस तरीके से अगर आप मान भी लें कि चले हुकूमत के ऊपर आपने प्रेशर डालना है, तो वो प्रेशर जो है वो हफ्ते बाद एक दिन जो है वो मंगल वाले दिन इकट्ठे होके जेल के बाहर एहतजाज करके, तो उससे तो जो है ना वो प्रेशर जो है ना वो क्रिएट नहीं होगा। इससे पहले भी जब कारकुनान ज्यादा तादाद में इकट्ठे हो गए थे तो हुकूमत ने वाटर कैनन का इस्तेमाल वहां पे किया था, और उसके बाद हमने देखा कि उतनी तादाद में भी दोबारा कारकुनान जो है वो जमा नहीं हो सके। हालांकि अगर पीटीआई इतनी ही जो है ना मतलब ये कि वो समझती है कि वो ताकत रखते हैं और अपने लीडर के लिए सिंसियर हैं, तो वाटर कैनन के बाद तो अगले दिन ही उससे ज्यादा उसे डबल तादाद में जो है ना वो लोग वहां पे मौजूद होने चाहिए थे। लेकिन जब तक आप अगले हफ्ते का इंतजार करते रहेंगे और उससे बाद अगले हफ्ते का, तो ये तो मामला नहीं है। तो रोजाना की बुनियाद पर जब तक आप एहतजाज नहीं करते तब तक हुकूमत के ऊपर कोई ऐसा जो है ना वो दबाव नहीं आएगा।
6: खातून गायनेकोलॉजिस्ट की जानिब से जस्टिस ऑफ पीस के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त और फैसला जारी। तिबी गफलत एक तकनीकी मामला है जिसके लिए पेशा वराना महारत रखने वाला फोरम जरूरी है, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला दिया। तो क्या मेडिकल से मुंसलिक जो मामला उनको हेल्थ केयर कमीशन बेहतर अंदाज में देख रहा है?
7: जी देखें, ये बहुत जरूरी और सेंसिटिव इशू है। मेरे ना काफी अर्सा पहले मुझे ना इस खबर से याद आया, एक डॉक्टर के साथ भी मैंने इस बात पे जो है ना वो मशवरा हुआ था, तो मैंने उनको ये कहा था मैं कि जिस तरह हर चीज के लिए एक अदालत होती है, इसलिए इसी तरह जो मेडिकल के केसेस हैं उसके लिए भी कोई अदालत होनी चाहिए। तो उन्होंने ही मुझे इन्फॉर्म किया था कि जो हेल्थ कमीशन है उसके तहत जो है वो आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं किसी भी डॉक्टर के खिलाफ, और उस पर बड़ी सख्त कार्रवाई होती है, यहाँ तक कि उसका लाइसेंस भी मौतल हो जाता है और उसको दोबारा प्रैक्टिस भी करने नहीं दी जाती, और अगर गफलत पाई जाती है तो बाकायदा कंपनसेशन होती है, सजा दी जाती है। तो उसने कहा, मुझे बताया था, उसने कहता बड़ा फाल इंतजाम है और कहता लोग उस फॉर्म को समझते नहीं है और उसको एक्सरसाइज नहीं करते। तो हमने देखा है कि लोग हॉस्पिटल में तोड़ फोड़ करेंगे, हॉस्पिटल में जो है ना मतलब ये कि, और उसके ऊपर बकायदा एसओपीज जो है ना वो हुकूमत ने जारी कर दिए हुए हैं, क्योंकि ये वाकयात तवातुर के साथ बहुत सारी जगहों पे सरकारी अस्पतालों में प्राइवेट में हुए थे, उसके बाद जो है ना मतलब ये कि हुकूमत ने बकायदा ये स्टेप लिया था। तो हमारे यहाँ पे जो एक बड़ी बुनियादी चीज है वो इन्फॉर्मेशन का फुकदान है कि आपको पता नहीं होता। हाँ, गफलत हो सकती है, अगर आपको फील होता है कि आपके मरीज के साथ गफलत हुई है और आपने उसको अकाउंटेबल जो है ना वो ठहराना है, तो उसका एक बकायदा रेलिवेंट फॉरम जो है ना वो मौजूद है। उस फॉरम पे अगर आपकी सुनवाई जो है वो नहीं होती तो फिर जो हाई कोर्ट्स का फॉरम है इसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, लेकिन जो है ना वो डायरेक्टली अगर आप अदालत के पास जाएंगे तो अदालत का इख्तियार नहीं है कि वो मेडिकल के मामलों को जो है ना उसको।
6: अच्छा सर, अभी जैसे लोगों को आपने कहा इन्फॉर्मेशन नहीं है, 2000 रुपए पेट्रोल सब्सिडी के वादे ने भी लगता है आवाम को रुला दिया, एक ऐसा तबका भी इसको मालूम ही नहीं है कि हुकूमत 2000 महाना दे रही है। हुकूमत इस मामले में आगाही फैलाने में आपको क्या लगता है, सुस्त है, नाकाम है? क्या ऐप डाउनलोड करना इस्तेमाल मुश्किल है? सब्सिडी लेने का तरीका है क्या?
7: जी देखें, ये जो सर्वे हुआ है ये निजी टीवी चैनल ने जो है वो मुख्तलिफ पेट्रोल पंप्स के ऊपर जाके लोगों से जब इंफॉर्मेशन ली तो मेरे ख्याल से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं था कि जो उस सब्सिडी से फायदा उठा रहा हो। हुकूमत ने जो ट्रांसफर है उसको जो है ना वो लीगल किया कि अगर किसी के अपने नाम के ऊपर नहीं है तो अपने नाम के ऊपर जो है ना वो करवा ले, ये भी एक बड़ा इशू है। हमारे यहाँ पे जो मोटरसाइकिल जो सवार है, मैं ये नहीं कहता कि बहुत बड़ी तादाद है उनकी, लेकिन एक अच्छी तादाद है जिन्होंने यूज्ड जो है वो मोटरसाइकिल पुराने जो है वो मार्केट से लिए हुए हैं और वो पेपर के ऊपर या जो है ना वो बगैर रजिस्ट्रेशन के जो है ना वो बाइक्स वगैरह जो है ना वो चल रहे होते हैं। बहुत कम ऐसे होता है कि अगर आपको पुलिस वाले जो है ना वो रोकें तो आपको आईडी कार्ड चेक करते हैं, लाइसेंस चेक करते हैं, गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है ना बाइक्स की हद तक बहुत कम चेक की जाती है। अगर गाड़ी को वो जो है ना वो रोकें तो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सबसे पहले वो तो वहां पे जो है ना वो उल्टा है, रिवर्स है कि आपका आईडी कार्ड और लाइसेंस जो है वो बाद में चेक होता है, पहले वो गाड़ी की रजिस्ट्रेशन जो है ना वो आपकी।
6: बिलाल साहब ये तो खुदा न खास्ता अगर कहीं वारदात में इस्तेमाल हो जाए तो ये तो बहुत बेसिक सी इंफॉर्मेशन है जो साइकिल मोटरसाइकिल सवार को पता होना चाहिए कि अगर चोरी हो गया कहीं वारदात में इस्तेमाल हो गया तो वो तो मुसीबत आ जाती
7: है। कराची में तो 90% यही हो रहा है। हमने बताते हुए कि आप देखें आए दिन फुटेजेस जो है ना वो सामने आती हैं कि दो मोटरसाइकिल सवार आते हैं, वो अपना मोटरसाइकिल छोड़ते हैं, किसी और का मोटरसाइकिल लेते हैं और जो है ना वो चले जाए और उस पर वारदात ही होती है उस पर। लेकिन ये कि लोगों का अंदर मतलब है कि वो नहीं होती है कि अगर किसी की बाइक वगैरह चोरी होती है और उसके अपने नाम के ऊपर हो तो लोग फौरी तौर पे जो है ना उसकी करते हैं, जिसकी अपने नाम के ऊपर ही नहीं होती उसको परवाह भी नहीं होती कि अगर उसके ऊपर जो है ना वो कुछ हो भी जाए तो उसको जो है ना वो कोई उसको जो है ना फर्क नहीं पड़ता। तो बहरहाल मतलब ये कि कहने का मकसद ये है कि जो सब्सिडी हुकूमत जो है ना वो दे रही है उसके अंदर जब तक हुकूमत उसको बकायदा एडवर्टाइज नहीं करती, और मैंने पहले भी कहा था कि उस प्रोसेस को आसान नहीं करती कि अगर आपको जो है ना वो 2000 की अगर आपने दे ही दी है सब्सिडी तो वो उसका तो फायदा जैसे ना हमारे जब जो टैक्स हुकूमत ने इकट्ठा करना होता है वो तो बिल के अंदर लगा के भेज देते हैं और हर बंदे को जो है ना बिल के साथ ही जमा करवाना पड़ जाता है। तो अगर ये रिलीफ आपने लोगों को देना ही है 2000 रुपए का तो किसी ऐसी सूरत में दें, बिल की सूरत में दे दें, किसी सूरत में दे दें ताकि वो 2000 उसकी जेब में तो हो, उसका चाहे फिर वो पेट्रोल डलवाए या ना डलवाए,
6: जब उसके नाम ही नहीं है तो कैसे दे दें। अब किसी के नाम है उसके बिल में चला जाए तो फायदा, मतलब ये तो तरीकेकार ही तो देखा सर, ये तो मोटरसाइकिल इतना आ गई यहाँ पे। अगर आप कहें ना जी मुझे पता नहीं था, वो कोई जिम्मेदार नहीं है, हुकूमत को कहती कि आपको पता होना चाहिए, आपका फर्ज है कि आपको पता होना चाहिए।
7: तो मैं खैर बिल्कुल मैंने ये कहा ना कि मैंने पहले नंबर पे ये कहा कि उसको आसान करें। अगर आसान जो है ना मतलब है कि उसको कर सकते हैं तो बिल्कुल ठीक है। जो इशू है वो बिल्कुल मतलब है कि इसके ऊपर डिपेंड करता है कि अगर बाइक आपके नाम पे है बिल्कुल आपको जाना
6: बिल्कुल ठीक। असर एक अभी साद रफीक साहब की बड़ी तस्वीरें मीम्स बनी हुई है जी के वो पुरतेश इमारत में उनके शेयर्स हैं और वन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो उनका फ्लैट है, वो कहते हैं मेरे पास जाने वालों के हैं इनकी सरमाया कर इनको मुबारक हो, उन्होंने इस वजाहत की है। एक तो ये इमारत क्यों मशहूर है, इसका मामला क्या, और ज्यादातर अपार्टमेंट्स हैं किस केस में?
7: जी देखें ये मामला जो है वो इमरान खान साहब का जो दौर था 2018 का उस वक्त भी जो है ना मतलब आया था और साकिब निसार जो थे चीफ जस्टिस थे उन्होंने ही इसको जो है ना वो लीगलाइज भी किया था और तब बड़ा मशहूर ये मतलब है कि हुआ था। और तब नाम नहीं लिया जाता था इसका, सिर्फ ये बताया जाता था कि इमरान खान साहब का फ्लैट है इसके अंदर। तो इमरान खान साहब ने तब खुद भी एडमिट किया था और बताया था उन्होंने वो सारे दस्तावेजात और वो सारे सबूत भी दिए थे कि कैसे उन्होंने कब ये फ्लैट जो है ना वो लिया था, कौन सी जमीन गालबन मियाँ वाली के अंदर जो है ना जमीन बेच के और उसको जो है ना उन्होंने अबाई जमीन बेच के तो ये फ्लैट लिया था। खैर रिगार्डलेस ऑफ द मैटर इसके अंदर ज्यादातर जो फ्लैट्स हैं वो पीटीआई के अपने लोगों के और कुछ साफियों के भी जो है ना प्लॉट्स सॉरी अपार्टमेंट्स जो है ना वो इसके अंदर मौजूद हैं। अब वो अपार्टमेंट्स लीगल हैं इलीगल हैं कैसे खरीदे हुए हैं ये एक अलग जो है ना वो मामला है। जब वो जमीन ही जो है ना मतलब है कि उसके लीज जो है वो गलत है और जो बुनियाद है वही जो है ना वो गलत रखी गई है तो उसके ऊपर बहरहाल मुझे हमेशा मैं ये कहता हूँ कि अब सीडीए को जो है ना इस बात का ख्याल आया है, मतलब जब मामला जो है ना जब बिल्डिंग बन रही थी, जब जमीन खरीदी जा रही थी, जब अपार्टमेंट्स बन रहे थे बेचे जा रहे थे, ये बड़ा मतलब है कि एक वो है आपको याद होगा एक नस्ला टावर था
6: कराची के अंदर, उसको तो उन्होंने
7: हाँ तो मतलब वहां पे भी यही हुआ था कि मुझे नहीं अब याद है कि मतलब उस वक्त हुकूमत ने ऑर्डर तो किया था सिंध हाई कोर्ट ने कि इनको कंपनसेशन जो है ना वो दी जाए। अब हुकूमत ने क्या कंपनसेशन दी है वहां पे उन लोगों को, दोबारा फ्लैट्स मिले नहीं मिले, पैसे मिले नहीं मिले, कितने मिले, ये मतलब बहुत सारे लोग जो है ना बेचारे रोल जाते हैं।
6: अभी इसमें क्या है
7: जिन्होंने वहां पे
6: इसमें इस पे क्या करेंगे, मतलब अभी रोकती है, मतलब अभी तो कहते हैं प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि
7: हाँ जी अभी तो वजीर आजम ने कमेटी बना दी है, अच्छी बात है, लेकिन कहने का मकसद बड़ी सादा अल्फाज के अंदर ये है कि जिन लोगों ने वहां पे अपार्टमेंट खरीदे हैं और जायज इनकम से जो है ना वो खरीदे हुए हैं उनको तो मतलब उनका तो कोई कसूर नहीं है ना,
6: साद रफीक साहब का नहीं है इसमें अपार्टमेंट,
7: नहीं नहीं उनका जो है ना उनका अपार्टमेंट जो है ना वो नहीं है लेकिन जो है ना वो एक बड़ी जगह है, 13.5 एकड़ का जो है ना, और बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है,
6: की तादाद में
7: तकरीबन 300-400 के करीब जो है ना फ्लैट है।
6: अच्छा सर, आखिर में सवाल, आज टाइम पता नहीं क्यों मैं थोड़ा लेट हो गया, अंजीर मोहम्मद अली मिर्जा साहब से मुतल्लिक इस्लामी नजरती कौंसिल की राय के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। इस्लामी नजरती कौंसिल किसी फर्द के खिलाफ फौजी मुकदमे में राय देने की मजाज नहीं है, और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा को गुस्ताखी का मुल्ज़िम करार दिया गया था। क्या इस्लामी नजरती कौंसिल किसी खिलाफ इस तरह फैसला दे सकती है?
7: जी देखिये, इसके ऊपर 495C जो है वो क्लॉज लगती है और वो गुस्ताखी के जुमरे में आती है, लेकिन क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पीनल कोड है और उसका जो है ना सजा इसकी मुकर्रर है और अदालत के अंदर इसका केस चलता है, तो जो मजाज फॉरम है वो अदालत ही है और सेशन कोर्ट है, वहां पे जो है ना वो केस चलता है। लेकिन अगर जो है ना वो नजरियाती कौंसिल जो है कोई मामला भेजा जाता है तो पहले देखा जाएगा क्या, क्योंकि नजरियाती कौंसिल जो है, इस्लामी नजरियाती कौंसिल ये हकूमती इदारा है, तो वहां पे हकूमत जो है वो किसी रहनुमाई के लिए अदालत भी अपना केस रेफर करती है, फिर हकूमत भी करती है, सदर और वजीर आजम जो है वो भी एडवाइस लेते हैं इस्लामी नजरियाती कौंसिल से अगर किसी कानून को पास करने में कोई मामला हो, इवन कौमी असेंबली जो है वो भी रहनुमाई ले सकती है इस्लामी नजरियाती कौंसिल से, तो वो सिर्फ अपनी राय देने के जो है ना वो मिजाज है, राय देने की जो है ना वो अथॉरिटी है, वो केस के ऊपर कोई फैसला जो है इस तरीके का या किसी को मुल्जिम जो है ना वो ठहराने की वो अथॉरिटी।
6: बिल्कुल ठीक है, मैं उनके दायरे इख्तियार नहीं आता। चलें, अच्छा जनाब कॉल्स ले लेते हैं, रिक्वेस्ट मैं आपसे करूंगा आज मुख्तसर बात कीजिएगा ताकि मैं 8-10 कॉल्स मेरे पास आए तो मैं सबको ले लूं। 7997 सर फर्स्ट कॉलर एज यूजुअल आप हैं, 7997 आप बात कीजिए।
8: कैसे हैं आप?
6: जी बिल्कुल ठीक, शुक्रिया सर, थैंक यू।
8: अभी ये बात तो अभी आपने बड़ा अच्छा किया है कि एक एक एक वो लगा दी है कि भाई ये टॉपिक है इसी पे बात करने, वरना कोई कहाँ से चीजें बताता है, कोई कहाँ से बताता। बात ये है पीटीआई वालों के पास लीडरशिप है ही नहीं, ठीक है। इमरान खान की बहुत बड़ी मिस्टेक ये है, इमरान खान की क्या है, जितने भी सियासी है पाकिस्तान में जिनको आप सियासतदान कहते हैं, इनकी अपनी कोई पॉलिटिकल ग्रूमिंग नहीं होती ना, ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बना के उन लोगों तक बात करने, ये चाहते हैं कि भाई हम जैसे चौधरी हैं और नीचे वो क्या होता है, वो गांव में क्या उसको
6: कमी कहते हैं
8: वो ये पब्लिक वो है और उनके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट होता है, वो जहाँ ये लोग जाए वहां जा नहीं सकते, उनके साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, उनकी चीजों में अटेंड नहीं कर सकते, उनकी दुनिया अलग है, इनकी दुनिया अलग है। तो खान साहब की जो गलती है ना, इसीलिए वो अभी जेल में है, अगर उन्होंने अपनी ऑर्गेनाइजेशन बनाई होती तो ऐसा नहीं होता।
6: चले, थैंक यू सर, आज
8: आप कह रहे हो रिकॉर्ड्स का,
6: जी जी,
8: पाकिस्तान में किसी चीज का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कुछ इंडस्ट्री में हम भी इन्वॉल्व हुए हैं, करने जाते हैं, इन्वेस्टमेंट लाना चाहते हैं, पता चलता है कुछ भी नहीं।
6: ठीक है सर, आज टाइम कम है, 5666 सर आप ऑन एयर हैं, 5666
9: अस्सलाम
6: वालेकुम सर,
9: हम बातें इधर उधर की करके घुमा देते हैं, अच्छी बात से हम हट जाते हैं। बात ये है कि पाकिस्तान जो है बहती गंगा है, इसमें जनाब पवित्र इमरान नियाज़ी साहब भी नहा के गए हैं, हाथ धोए हैं, जिधर उनका बस पड़ा है, जिधर उनका हाथ पड़ा है, उन्होंने यहाँ पे अपार्टमेंट भी लिए हैं, उन्होंने यहाँ पे जमीनें भी मारी हैं, उन्होंने यहाँ पर
6: तोशाखाना
9: से घड़ियां भी मारी हैं, उन्होंने हर वो काम किया। भाई अगर आप इतने पवित्र थे आपको क्या जरूरत थी तोशाखाना से घड़ी लेने की, आप गरीब थे। तो बात खड़ी है सर कि ये बहती गंगा है, सब इसमें नहाते हैं, तो वो भी नहा रहा है। अब बात दूसरी चीज ये देखिए कि बात यह है कि जो अपार्टमेंट्स हैं इसमें पीटीआई के ज्यादा अपार्टमेंट्स हैं, वो पीटीआई वाले इसको रिफ्लेक्ट करते हैं कि नहीं जी
6: क्या पता सर पैसे दे के लिए उन्होंने, उनका क्या कसूर है, जब सबने पैसे दे दिए, जो गवर्नमेंट दे रही है वो तो
9: अल्लाह करे ऐसा हुआ हो, लेकिन मैं समझता नहीं कि ऐसा हुआ होगा। तो ये कहना कि इस दौर में वैसे भी एक बात कहूंगा कि पाकिस्तान एक बहती गंगा है, इसमें हर बंदे
6: दौरे पे पांच मतलब जो दौरा है उनका ऑफिशियल दौरा है उसमें क्या। अच्छा ठीक हो गया सर, थैंक यू शुजा साहब। 5415 में खल छोड़ गए, 5415 नहीं है, 9-6910 सर आप पहुंचे रहे, 6910 वालेकुम सलाम सर।
10: फरिश्ते और शैतानों में या चोर डाकू और एक ईमानदारी में जरा सा फर्क होना चाहिए। यहाँ पे सबसे बड़ा मसला ही यही है कि जो झूठी कस्म खाते थे या खाते हैं उनको यही नहीं पता। मैंने बहुत दफा ये रिपीट किया, जो बहुत गूगल वाले सर्च करने वाले उनको सर्च करना चाहिए कि उन्होंने खुद तस्लीम किया था कि मैंने दुबई में इन्वेस्टमेंट कर दी थी शौकत खान के जो डोनेशन के पैसों की, जो कि बगैर परमिशन के वो हम
6: सर उनकी हिम्मत ही ना कह दी उन्होंने, वरना को लोग तो मानते नहीं है।
10: नहीं वो तो जब इंक्वायरी होती पता चल ही जाता है, हिम्मत तो फिर वो हिम्मत दिखा रहे थे तो फिर दूसरों को चोर नहीं करना चाहिए। कोई काम आप गलत कर रहे थे वही दूसरे कर रहे हैं, तो आप में उनमें फर्क होना चाहिए। और यही वो जो हाथ है जिसकी वजह से अब लोग खुद ही कहने लगे कि गलतियां हैं, पहली बात तो गलती भी और गुनाह भी, और सबसे ज्यादा हाथ धोया है उनकी मिसेज ने जिनको उन्होंने खुली छूट दे रखी थी। ये भी
6: बताया
10: खाते हैं नहीं तो जो भी होगा फैमिली के हिसाब से, जब आपने दूसरों के फैमिली को बदनाम किया तो फिर
6: चले सर। ठीक सर, आज थोड़ा टाइम कम है सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया।
10: अल्लाह ताला पाकिस्तान के हक में बेहतर करे, जो भी आने वाला हो वो इन किस्म की हरकतों से
6: बचे। थैंक यू सर, थैंक यू बहुत शुक्रिया। 5794 सर अपॉन है, 5794
11: अस्सलाम वालेकुम जनाब। बट्टी साहब आज एक प्रोग्राम में ये जो अपार्टमेंट्स है ना ये इनका जो सरगुना है ना सारा वो हफीज से है, ठीक है, और हफीज शेख ने एज ए गिफ्ट हां साहब को 80 करोड़ का जो दिया है। और हुज़ैफ़ा रहमान ने आज मैं क्लिप भी भेज देता हूँ, बिलाल साहब को भी भेज देता हूँ, उसने बोला है कि अगर मैं एक बात भी अगर ये साबित कर दे उसकी पूरी रिपोर्ट तो जनाब आप मुझे सू कर दें। बट्टी साहब बात देखे बात वही आ जाती है जब तक बंदा अपने गिरेबान में नहीं ना झांकता दूसरों को ओए ओए चोर डाकू फलां, तो भाई आप ही आपकी टीम ही आप लोगों ने भी तो फिर वही किया तो फिर क्या फर्क रह जाता है। बात बड़ी सिंपल है, किसी को जब आप एक उंगली किसी की तरफ करते हैं तो चार उंगलियां आपकी तरफ आती हैं। तो इसलिए मेरे ख्याल में जिन लोगों ने पैसे दिए हैं अपना रोजी और अपना बेहतरीन उनका रिजल्ट है तो उनके तो साथ तो उनका मामला ठीक होना चाहिए। बाकी यहाँ बख्टी साहब फिर वही बात आ जाती है पाकिस्तान में कौन है, अब ये साकिब निसार को और दूसरे को सबसे पहले तो पकड़ना चाहिए ना कि भाई आपने एक होटल को किस तरह मतलब इस तरह बिल्डिंग में लीगलाइज किस तरह
6: किया।
11: आज ठीक है जी,
6: थैंक यू अल्लाह हाफिज। 8156 रहा पौने 8156।
12: हेलो
6: जी जी,
12: लेकिन जब ये अपार्टमेंट बिक रहे थे मुझे पता है उसका, इमरान खान ने 5 करोड़ उनकी कीमत थी वही देख खरीदा था,
6: ठीक है,
12: ऐसी जैसे बताया कि वो मियां वाली की जमीन बेच गई तो उसके पास मनी फेल है, ऐसा नहीं
6: है, ठीक है, मतलब वो तारे वहां पे पुनः ये तो नहीं कह रहे कि उन्होंने नाजायज
12: 80 करोड़ फलाना धमाका ये सब कहानियां हैं।
6: अच्छा जी,
12: ऐसे कैसे अपार्टमेंट 80 करोड़ का हो सकता है ये। अच्छा जी, दूसरा हो गया वो अडियाला डेट में लोगों के आने की
6: जी,
12: लेकिन बेशक MNA MNPA सारे आ जाए या 1 लाख लोग भी जमा हो जाए फिर भी मुलाकात नहीं होगी क्योंकि वो कंट्रोल चीजकूट के पास है।
6: सर आप 10,000 बंदा इकट्ठा कर लेना, सिर्फ 10,000 बंदा भी आ गया बहुत फर्क पड़ता है सर, बहुत फर्क पड़ता है।
12: जनाब कुछ भी आ जाएंगे वो
6: ठीक
12: पानी छोड़ दें गोली चला देंगे पहले कर चुके
6: चले,
12: उनके पास कोई इख्तियार नहीं है जेल सुपरिटेंडेंट के पास कोई इख्तियार नहीं ना कोई हुकूमत।
6: ठीक है सर जी, आज थोड़ा टाइम कम है, थैंक यू सर।
12: ठीक है, वो ये इसके पास है उन्होंने मुलाकात नहीं करानी।
6: ठीक सर, थैंक यू। 6141 सर आप ऑन है, 6141।
13: अस्सलामुअलैकुम बेटी साहब।
6: वालेकुम सलाम सर, वालेकुम।
13: बेटी साहब मैं काफी दिनों से इंतजार में था, आपके पास खुला टाइम होगा मैं जी भर के बातें करूंगा लेकिन
6: आप जल्दी आप फर्स्ट फोन किया नहीं आप ना 8:30 में फोन कर ले करें, जो पहला कॉलर मैं बिल्कुल तरतीब से लेता हूँ यकीन करें कॉले जैसे
13: मैं छोटी सी बात कहता हूँ कट कटा के इतना कहता हूँ अलीमाबादी ने खुद कॉल दी है ना आप देखना यहाँ से भी कई जहाज भर के जाएंगे सारे लोग आएंगे और हुकूमत का तख्ता उलट देंगे। बहुत शुक्रिया आपका,
6: चलो थैंक यू। दो कॉले और है पता नहीं मैं ले सकता हूँ, 5686 बात कर सकते हैं 30 सेकंड सिर्फ 5686।
14: अस्सलाम वालेकुम।
6: वालेकुम सलाम सर
14: जी। भट्टी साहब जल्दी से मैं 30 सेकंड में कंप्लीट करता हूँ। नंबर वन जो है आपने कराची की जो बात की सब्सिडी की 2000 की और मोटरसाइकिलों की, तो वहाँ रिश्वत इतनी चलती है कि जो चाहे जिसके नाम पे कर ले। डिफेंस में बंगले भी लोगों ने अपने नाम पे कर लिए, आज तक पता ही नहीं चला कि किसकी असली बंगला है वो।
6: दूसरा जो पंजाब की बात की थी मैंने, पंजाब में 2000 नहीं मिल रहे। जी जी आगे।
14: अच्छा अच्छा सिंध में नहीं मिल रहा,
6: सिंध में तो पहले ही ऐलान किया हुआ कुछ। हाँ जी,
14: दूसरा ईरान की जो वॉर चल रही है उसमें यही चाहिए पाकिस्तान को, पीस टीम को चाहिए कि यूएसए पे दबाव डालें और वो कहें कि जैसा था कंडीशन जंग से पहले सब वहीं अपने अपने बैठ जाएं और खत्म कर लें।
6: चलिए थैंक यू सर, 7282 बहुत शुक्रिया। 7282 सर 20 सेकंड में बात कीजिए। 7282
7: मुलाकात
6: होती है और आपसे भी जाएंगे ज्यादा, दो में रखे गए हौसला नहीं हारना, हौसला भी हारने की चीज है, ऑलवेज फॉलो योर हार्ट क्योंकि सब अच्छे के बाद बशर्ते जिंदगी इंशाल्लाह। हमारी एक मुलाकात अब कल शाम 7 बजे स्टूडियो में जी मरिए, बट मेजबान अशरफ भट्टी को दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज और सपुर्द-ए-माल।

अस्सलामुअलैकुम, दिस इज नईम तारिक यानी फ्रॉम द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग। थैंक यू सो वेरी मच आपका लास्ट वीक का प्रोग्राम पसंद करने का, और बहुत ज्यादा डिफरेंस जो है वो अब मेड हो रहा है बेस्ड ऑन जो मार्केट अब आगे जा रही है। दो तीन महीने पहले या सॉरी दो तीन हफ्ते पहले हमने जो है बहुत ज्यादा डिस्कस किया था बेस्ड ऑन जो ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिक्स जो इस वक्त चल रही है उसकी वजह से टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी जो है वो हमें डिफरेंस देखने में आया था। इनफैक्ट अब जब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं, चीज़ें जो है वो इट्स गेटिंग इन टू द प्रॉपर डायरेक्शन, नाउ वी आर सीइंग दैट स्टॉक मार्केट इज गेटिंग ऑन द स्टेबल साइड एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे। इंटरेस्ट रेट कैनेडा में भी और यूएस में भी जो है वो स्टेबल रहा है, और उसकी वजह से जो रियल इस्टेट मार्केट है दैट इज गेटिंग इन टू अवर नेक्स्ट मोमेंटम। और हमने रियल एस्टेट मार्केट की जो है वो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था हमने, दैट फॉर ऑल द न्यू डेवलपमेंट यू आर एग्जेम्प्ट फॉर HST इफ यू बाय इट फ्रॉम और इफ यू बुक इट फ्रॉम अप्रैल 1 अंटिल मार्च 31 नेक्स्ट ईयर। सो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई हैं ओवरऑल दैट इज फॉर टू बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी। सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम। आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल ही मार्केट ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर, प्राइस एक्शन क्या हुआ। सो नैसडैक वॉज अप और नैसडैक रहा 24,800 पर। बिग टेक अर्निंग्स इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट और मेटा दे आर बूमिंग राइट नाउ। माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नई इनोवेशंस की हैं, अभी एक इनोवेशन इंशाल्लाह मैं जो है वो आपके साथ अगले वीक भी शेयर करूंगा। दे हैव स्टार्ट मेकिंग अप अ ग्लास विच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन, और इंस्टा आपका डेटा जो है जितना वो उस ग्लास में अब स्टोर होगा इंस्टेड ऑफ USB और इंस्टेड ऑफ जो है वो हार्ड ड्राइव में। सो दे हैव मेड इट, नॉट मेड इट टू पब्लिक एट येट, बट दिस इज कमिंग इन एंड दैट वुड बी अ मेजर चेंज फॉर माइक्रोसॉफ्ट। S&P 500 दे हैव हिटिंग रिकॉर्ड्स बट स्ट्रगलिंग विद द बैंकिंग वीकनेसेस। ये हमें पता है क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट US में भी जो स्टडी आपके पास इंटरेस्ट रेट रहा जिसकी वजह से बैंक थोड़े से जो है वो वीकर हो रहे हैं US में। कैनेडा का बैंकिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है विच इज वाई वी आर वेरी efficient in that way. TSX jo hai wo 33,900 raha which is lower and weighed down by sticky inflation data and that's exactly what we have seen. Inflation is work jo hai wo bahut zyada different chal raha hai Canada mein and along with jo prices hai grocery or food prices hai they are kind of jacking up. So that's what we have seen. Crude is work jo hai is week 107 pe aa gaya right और 7% upar aaya Wednesday ko as the Strait of Hormuz remains blocked. Ab wapas Strait of Hormuz block ho gayi hai which is why क्रूड इज कमिंग अप। अच्छा जी, जो हमने इंट्रो में डिस्कस किया कि मार्केट इज गेटिंग स्टेबलाइज एंड विद सेलेक्टिव स्ट्रेंथ इमर्जिंग, मार्केट कोई अब पैनिक मोड में नहीं रही है, कूल डाउन हो रही है और अब जो है वो स्टेबलाइजेशन और इवैल्यूएशन मोड में मार्केट चल रही है। यूएस मार्केट का ओवरऑल क्या रहा, जो मार्केट बिहेवियर था दैट्स मेजर इंडेसेस राइट जो मूव्ड साइडवेज ओवरऑल और स्मॉल गेन्स लॉसेज जो है वो देखने में आए। कंसोलिडेशन फेज आफ्टर रिसेंट वोलेटिलिटी, और यही पिछले 4-5 वीक्स में मार्केट बहुत वोलेटाइल थी एंड दैट्स रीजन नाउ वी आर सीइंग इन अ डिफरेंट फेज। मैक्रो ड्राइवर्स जो यूएस मार्केट के लिए रहे वो ऑयल स्टेबलाइजेशन है, इट्स बीन सेटल्ड आफ्टर प्रायर स्पाइक्स और ऑयल जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है अभी भी। जो हमने जैसे जिक्र किया 107 बैरल था लास्ट वीक, इट वॉज लाइक 94 बैरल एंड दैट्स हाउ वी आर सीइंग इट। सो एनर्जी प्राइस जो है वो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और टोरंटो में बढ़ी है एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन। इन्फ्लेशन स्टिल इन फोकस यूएस में, इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग बट स्टिल नॉट फॉलिंग फास्ट। इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन जो थी वो वैसी रही जैसी है, वी आर नॉट आउट ऑफ इन्फ्लेशन रिस्क यट। इन्फ्लेशन है यूएस में और वहां का रिस्क जो है वो है भी वहां पर। इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी, ये थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होगा कि नहीं होगा, लेकिन आज जो इस वीक जो न्यूज आई है इसकी वजह से वो स्टेबल रहा है, सेम रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टर रिमेन्स कॉशियस और इम्पैक्ट क्या हुआ है कि लिमिट्स अपसाइड इन द ग्रोथ स्टॉक। अच्छा जी, इंडस्ट्रियल जो है वो कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ पे रही है राइट, रोटेटिंग इनटू रियल मनी सेक्टर। इंडस्ट्रियल जो है वो वहां पे पैसा मूव हो रहा है वहां पे। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, इकोनॉमिक आउटलुक और कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशन, क्योंकि आपकी बाइंग पावर होगी तो आप जो है वो स्पेंड करोगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इन द यूएस मार्केट। अच्छा, एनर्जी नो लॉन्गर लीडिंग, टेक जो है वो उसने टेक ओवर कर लिया यूएस में, और ऑयल स्टेबलाइजेशन लेस अपसाइड। ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ऑयल की मार्केट जो है वो अगर स्टेबलाइज होती है तो
यूएस में वो इम्पैक्ट आता है उसकी नीचे जाने का। अगर ऑयल स्टेबलाइज होती है तो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज या एनर्जी सेक्टर टोरंटो में कनाडा में ऊपर जाता है, क्योंकि हम हमारे पास एनर्जी सेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है स्टॉक मार्केट के हवाले से। ओके जी, टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजिंग, नो मेजर सेल ऑफ दिस वीक और रिकवरिंग आफ्टर प्रायर वोलेटिलिटी और टेक इज होल्डिंग ग्राउंड, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल फ्लो, पैसा कहाँ से कहाँ मूव हुआ, रोटेशन जो है वो इंडस्ट्रियल और स्टेबल टेक में रही और मार्केट इज स्टिल वेटिंग फॉर नेक्स्ट कैटलिस्ट कि नेक्स्ट जो है वो ट्रिगर क्या होगा और उसमें मार्केट मूव करेगी। अच्छा जी, यूएस सेगमेंट में जो बड़ी चीज रही, एक तो फेडरल डिसीजन रहा कि जो इंटरेस्ट रेट है वो स्टडी रहेंगे 3.5 to 3.75%, नहीं मूव हो रहे वहां से। और जो अर्निंग हैवी वेट है इस वीक वो इंटेल रहा, उनकी मैसिव Q1 जो है वो रिपोर्ट आई है, और मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड एज सेफ हेवन क्योंकि एआई के बहुत ज्यादा काम होने की वजह से दे आर गेटिंग इनटू अ प्रॉपर टेक स्टॉक एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इट। बैंकिंग क्रैक जो है वो रेयर आर पब्लिक डिवाइड विद इन द सेंट्रल बैंक, द अनसर्टिनिटी इज कॉजिंग ऑल सेल ऑफ द रीजनल यूएस बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर में कुछ डिफरेंस रहा यूएस के मार्केट में, क्योंकि जो है वो अगेन बाइंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन दैट साइड। टोरंटो मार्केट को डिस्कस करते हैं, टीएसएक्स जो है वो स्लाइटली मोर स्टेबल देन यूएस जो हम देख रहे हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो स्टडी रही है, बट स्ट्रांग ग्रोथ नहीं रही है, लेकिन इट्स इट्स नॉर्मल, इट्स गेटिंग टुवर्ड्स दैट। की ड्राइवर्स कौन से रहे, अगेन ऑयल स्टेबलाइजेशन की वजह से एनर्जी सेक्टर ने लूज किया थोड़ा सा अपना जो है वो पॉइंट, लेकिन टेक टीएसएक्स बिकम्स मोर बैलेंस क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा जो है वो डायनामिक्स नहीं है जिस यूएस में है।

दूसरा जो है वो डिफरेंट टेक सेक्टर में भी बहुत ज्यादा ले ऑफ हो रहे हैं. द कैनेडियन मार्केट फ्रॉम जॉब परस्पेक्टिव और फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इज नॉट दैट बिग राइट नाउ एंड वी आर सीइंग लॉट ऑफ गैप्स इन द मार्केट. अच्छा जी, TSX में रोटेशन क्या रहा, विनर्स जो है वो एनर्जी रही, सनकोर, CNRL और मटेरियल्स में बैरिक गोल्ड रहा, ऑयल जो है 160 पे रहा और गोल्ड जो है वो नियरली स्टेइंग नियर रिकॉर्ड्स. कैनेडाज डर्ट्स एंड पाइप्स आर ओनली थिंग दैट कीपिंग द TSX इन द डीपर साइड. लूजर्स कौन रहे, टेलीकॉम और यूटिलिटीज, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी की वजह से दे आर लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन. स्प्रिंग इकोनॉमिक अपडेट की क्या रही कि इस वक्त ऑटवा रिसेंटली टेबल इट्स अपडेट शोइंग अ डेफिसिट ऑफ $66.9 बिलियन और ये फिस्कल एक्सपेंशन जो है ये हाई एनर्जी कॉस्ट पे एंड इज पुटिंग कैनेडियन डॉलर ऑन प्रेशर. सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग. इस वक्त जो ट्रेड चल रही है US वर्सेस कैनेडा इज 0.73 और ये जो है वो अब प्रेशर आ रहा है कैनेडियन डॉलर पे. अगर हम US तो कैनेडियन मार्केट का कंपैरिजन करें इस वक्त, सो वोलेटिलिटी में मार्केट फेस कंसोलिडेशन US की है और स्टेबलाइजेशन जो है TSX की है. वोलेटिलिटी मॉडरेट वर्सेस लोअर, लीडरशिप एक वीक है, रोटेटिंग है, लीडरशिप चेंज हो रही है, सेक्टर्स चेंज हो रहे हैं वहाँ पे. कैनेडा में बैलेंस हो रहा है, राइट, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि बहुत ज़्यादा एनर्जी सेक्टर लीड ले रहा था एंड देन टेक वॉज गेटिंग डाउन बट नाउ इट्स बैलेंसिंग इट आउट. की ड्राइवर्स क्या रहे, US में इन्फ्लेशन और रेट्स रहे, यहाँ पे ऑयल एंड स्टेबिलिटी रही की ड्राइवर्स. स्ट्रॉन्ग सेक्टर इंडस्ट्रियल वर्सेस इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल्स और वीक सेक्टर एनर्जी एंड एनर्जी ऑन द बोथ साइड. अच्छा जी, बिफोर वी गो आई वुड लाइक टू शो यू गोल्ड प्राइस जो कि हम हर वीक देखते हैं. इस वक्त आज की जो गोल्ड शेयर है मैं आपको दिखाता हूँ ये, और ये इस वक्त की प्राइस है, अगर ये लोड हो जाए, 423.68. ये थोड़ा सा नीचे आया है और इसको आप बिल्कुल जो है वो देखें क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गोल्ड की प्राइस से. अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी सो यू विल सी इंक्रीज इन दिस चार्ट एज वेल. ETF हम देखते हैं आई शेयर का जो है ETF, एक सेकेंड, हाँ हाँ जी, ETF हम देखते हैं यहाँ पे और ETF की प्राइस इस वक्त है 53.42. ये इसी रेंज में फ्रॉम 49 टिल 55 दैट इज मूविंग हियर एंड देयर, लेकिन इट्स गुड इन्वेस्टमेंट क्योंकि इट विल गिव यू रिटर्न इन द लॉन्ग रन. इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यूज करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें एंड दैट्स वेयर यू विल गेट मेजर रिटर्न आउट ऑफ इट. सो दिस वॉज इट फोक्स, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग विद नईम कियानी. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक विल सी यू विद द डिफरेंट मार्केट, होपफुली सारी चीजें सही होना शुरू हो जाएं. और जो मैंने शुरू में माइक्रोसॉफ्ट की जो नई प्रोडक्ट के बारे में जिक्र किया था उसको जरूर उसके ऊपर रिसर्च करें. इट्स कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन एंड दैट इज गोइंग टू चेंज अ लॉट ऑफ थिंग्स और उसकी वजह से माइक्रोसॉफ्ट का जो स्टॉक है वो भी आगे बढ़ेगा. तो कीप वॉचिंग द आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग, आई विल सी यू इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट वीक.

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकुट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From wedding

0: and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals. ICON is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करता मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
4: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ, मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
5: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
6: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
8: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
2: At Anam Law Firm, our tireless efforts in the pursuit of justice for our clients include an unwavering belief. Beyond the courtroom battles, we forge meaningful connections with our clients.
9: Supporting our local community is integral to the values we hold dear.
10: Every single client file we represent at Anam Law bears my personal touch, a commitment that I stand by.
11: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Anam Law Firm today.

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: The Law Professionals at TM Law providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters and real estate serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, Barrister and Solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca.

जैन, मुझे लगा कि तुमने शुरू में थोड़ा सा डर लग रहा था तुम्हारी आवाज में, लेकिन जिस तरह ये गाना चलता गया मुझे लगा कि तुम कंफर्टेबल होते जा रहे हो। अंतरे में आके मुझे लगा कि तुमने गाने को पकड़ा और उसके बाद से गाना खुल गया। मैं समझता हूँ कि अच्छी परफॉर्मेंस थी और आई होप कि लोगों को भी अच्छी लगे।

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors, curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777. इट्स 416-710-6677.
4: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tourist is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
8: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
3: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं. आज ही हमारे
9: मिसिसागा रिजवे
3: के स्टोर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स. हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं. शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे. आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए. अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा. या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी.
10: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: Then let Talha Bhatti serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talha Bhatti. 647-295-7861. Then let Talha Bhatti serve you the best.
1: The law professionals at TM Law, providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters, and real estate, serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, barrister and solicitor, at 647-838-4773, or you can visit tahirlaw.ca.
2: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677

Coke Studio, Season 15.

0: And मैं तारीफ करना चाह रहा हूँ एंड इट माइट कम अक्रॉस एज ए आई डोंट नो इट मे कम अक्रॉस समथिंग वेरी वियर्ड मुझे ऐसे लग रहा था कि आप लिप सिंक कर रहे हैं दैट्स हाउ गुड यू आर
1: थैंक यू सर थैंक यू सो मच

0: ये महमूद और अयाज है जो रोटी कमाने के लिए भाग रहे हैं, और ये है करीम से, इन्होंने ज्यादा रोटी खा ली और अब भाग रहे हैं। बेचारे गुलखान के पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वो एक बनियान खरीद सके। और ये है स्वीटी, इनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन फिर भी बनियान ही खरीदती हैं। अमजद सुबह से एडमिशन की लाइन में खड़ा और शहरी जहां खड़े होते हैं लाइन वहीं से शुरू होती है। सकीना आपा आज बहुत खुश है, उन्हें राशन की पर्ची जो मिली है। पर्ची तो हमें भी मिली थी लेकिन भत्ते की। हमें लगता था इस शहर में पैसे का ना होना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन पैसे आने के बाद की प्रॉब्लम्स का हमें कोई आइडिया नहीं था।
1: फरहान यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि इतनी शोबाजी करने की जरूरत नहीं है। इस महीने की दूसरी पर्ची है, दूसरी।
2: मैं भी तो कब से कह रहा हूँ आपसे कि सब कुछ बेचते हो, निकलते किसी दूसरे मुल्क।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं ये फैक्ट्री नहीं बेचूंगा। क्षमा गया, आखिरी निशानी है यार, आखिरी।
2: अभी की आखिरी निशानी अचार है शकील भाई, वो तो हम किसी मुल्क में भी बेच सकते हैं।
3: हेलो, पैसे मिलते ही एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर।
1: जी पप्पी भाई, जी
2: पप्पी। क्या क्या क्या कर रहे हो शकील भाई?
1: मेरे लाल, देख मैं तो कहता हूँ कि ये सब कुछ बेच के यहाँ से निकल जाते हैं यार।
2: वाह शकील भाई, आप तो पर्ची से ज्यादा पप्पी से डर गए हैं।
1: क्या करूँ यार, शरीफ बात ही यार।

সমাজের ইচ্ছে কি, সমাজের ইচ্ছে কি।

0: कुछ काम मिला?
1: नहीं, मेरे कैलिबर की कहीं कोई जगह खाली नहीं।
2: सुबह बिल्डिंग का ठेकेदार मिला था, उसको मजदूरों की जरूरत थी, मैंने तो अपना नाम लिखवा दिया भाई।
3: क्या क्या कह रहे हो शकील भाई, पागल हो गए हो क्या? मेरे जीते जी ऐसा नहीं हो सकता, लोग क्या कहेंगे है? समाचार के सीईओ का साला बजरी उठा रहा।
2: अबे जहाँ का तू सीईओ था ना, वहाँ का मैं एमडी था।
0: अब तो जाग जाओ फरहान, तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से आज हमें साल में।
3: मेरी हरकतें और तुम ये इन हालात में भी ब्रांडेड जॉगर्स पहन के घूम रही है ये औरत।
0: मिट्टी देखी है तुमने? मेरा पेडीक्योर खराब होगा तो दोबारा कराने के पैसे तुम दोगे?
3: पैसे तुमने छोड़े कहाँ ना, छोड़े कहाँ पैसे, लाखों रुपयों के तो ब्रांडेड बैग खरीद लेती थी तुम, आज उन बैग में रखने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं हमारे पास।
0: अच्छा, और खुद को भूल गए हैं? गाड़ियाँ ऐसे बदल रहे थे जैसे फोन बदल रहे हो, और फोन ऐसे जैसे कपड़े बदल रहे हो।
3: कपड़ों का नाम लेके तपाना नहीं मुझे, कपड़ों का नाम लेके नहीं तपाना, ये तुम्हारे फैशन के चक्कर में ना सारा दिवालिया निकल गया हमारा। और किधर गई तुम्हारी वो सारी सहेलियाँ, गर्ली गैंग, जिनके चक्कर में वो तुम लॉन की एग्जीबिशन लूट लेती थी? अरे इतने तो आसमान में तारे नहीं है नैना, जितने व्हाट्सएप ग्रुप है तुम्हारे फोन में है।
0: देखो
2: यार, बस करो यार, बस करो, बस करो, शायद हमारी किस्मत में ये लिखा था।
3: हमारी किस्मत नहीं, तुम्हारी किस्मत शकील भाई। अरे क्रिकेट से लेके घोड़ों की रेस तक आज तक कभी कुछ जीता है तुमने? अरे 25 करोड़ डुबा दिए तुम्हारे भाईजान ने, 25 करोड़।
1: चले थे शाहरुख खान बनने,
3: क्रिकेट टीम खरीदूंगा। किसने कहा था कराची प्रिंस खरीदने को, किसने कहा था?
2: अरे माफ कर दो भाई, माफ कर दो, सारा कसूर मेरा है यार।
3: क्या हुआ?
2: मिलावट वाली दाल खा के ना पथरी हो गई है यार।
3: ऐसे हालात में ना शकील भाई लोग फाके करते हैं। आपको किस गधे ने कहा था दाल खाने के लिए?
2: अबे ओ खाबों के शहंशाह, कल को दाल भी नहीं मिलेगी।
0: क्या हो गया हम लोगों को? पहले भी तो गरीब थे, ऐसे लड़ते तो नहीं थे ना? वक्त वो नहीं रहा तो वक्त ये भी नहीं रहेगा।

0: अरे तू कॉल कर रहा है?
1: ओए कैसा है यार तू?
0: मून
1: है किधर?
0: मैं ठीक साइड पे हूँ ना।
1: साइड पे? साइड पे? कौन सी साइड पे?
0: हाँ साइड पे, साइड पे ही तो हूँ। वो कंस्ट्रक्शन का काम शुरू किया ना, बिल्डिंग बना रहे हैं। बिल्डिंग
1: है रात में?
0: दिन में टाइम कहाँ मिलता है यार, क्लाइंट्स, मीटिंग्स, शोरूम्स। और नैना, नैना भी तो है, उसको भी तो टाइम देना पड़ता है। शादीशुदा जिंदगी गुजारना इतना आसान काम नहीं है दोस्त।
1: तो सुनो फिर, मैं भी अपनी जिंदगी मुश्किल करने जा रहा हूँ।
0: क्या?
1: और शादी कर रहा हूँ मैं, शादी।
0: क्या कह रहा है यार?
1: और तुम सबने आना ही आना है।
0: कहाँ?
1: साउथ अफ्रीका।
0: साउथ अफ्रीका? अरे नहीं यार मून, वो बहुत मुश्किल हो जाएगा यार, वो काम बहुत फैल गया यार।
1: और तू फैलना बंद कर, मैंने टिकट करा दिया और तुम सब लोगों ने आना है। अब केप टाउन में मुलाकात होगी। ओके फिर
0: मून,
1: टीसी टीसी आना है। बाय
0: शकील भाई। मुबारक हो शकील भाई। मुबारक हो शकील भाई, हम साउथ।

0: सोचा खुशी का मौका है, एक एक बजाए आज फिर है।
1: शकील भाई आप लो ना। नहीं यार पहले तुम पियो ना।
0: ओ कमाल करते हो, पकड़ो यार शकील भाई पकड़। चेयर्स भाई।
1: हाँ ये है ना बैठो। अरे चेयर्स शकील भाई, चेयर्स।
0: चेयर्स चेयर्स। यार अच्छा किया तुम लोग यहाँ पे आ गए, और यू गाइस आर द ओनली फैमिली आई हैव यार।
1: ये क्या कह रहा है? अरे कह रहा है कि
0: मैं कह रहा हूँ कि तुम लोगों के सिवा मेरा है ही कौन है।
1: अच्छा तू ये बता, तू यहाँ पहुंचा कैसे?
0: भाई पैसे आने के बाद मैंने सोचा वर्ल्ड टूर करना चाहिए, और यार पाकिस्तान से आगे कभी गया ही नहीं था। तो सबसे पहले मैं गया दुबई, उसके बाद मैं आ गया साउथ अफ्रीका।
1: अच्छा
0: फिर यहाँ से आगे कहीं जा नहीं सका।
1: क्या पासपोर्ट खो गया तेरा?
0: ओ नहीं यार, यहाँ एक पार्टी में ना परी दिख गई।
1: फरहान मैं पहले ही कह रहा था कि इसके पास परी है, तभी तो इसके पास इतना पैसा आ गया।
0: और नहीं यार शकील भाई, परी फियांसे मेरी।
1: पा, पा, पा, पा, पा, पा, मंगेतर हा? मंगेतर हा?
0: हा? उसके बाद मैंने तय कर लिया कि यहाँ से आगे तो नहीं जाता।
1: पर तू करता क्या यहाँ पे?
0: और म्यूजिक के अलावा आता ही

0: क्या था तो आज यहाँ का सबसे बड़ा डीजे कौन है?
1: कौन?
0: आपका भाई। ब्रांडिस को है यहाँ पे।
2: क्या बात है।
0: इसी बात में चेयर्स की भाई।
2: चेयर्स।
0: चलो हो जाए। अच्छा मेरी छोड़ो, तुम लोग तो बताओ क्या किया इतने पैसों का है?
3: यार हमारे पैसे तो
1: स्टॉक्स में डाल दिए।
2: एक रात में
3: डबल
1: डबल
2: फिर वहां से निकाले तो प्रॉपर्टी में डाल दिए। एक महीने में
3: ट्रिपल
2: ट्रिपल तो मल्टीपल बिजनेस है हमारे।
0: क्या बात है।
2: पानी से लेके
3: पेट्रोल तक
2: सब बेच रहे। अभी शकील भाई कंस्ट्रक्शन का काम भी तो शुरू किया हमने। वो बना रहे, वो लंबा सा नहीं होता, लंबा सा
0: घंटा घर।
2: वो घंटा नहीं यार, वो बुर्ज खलीफा बना रहे कराची में।
3: कटी पहाड़ी पे
2: बीचो बीच।
0: क्या कहने, बड़ा लोकेशन घुट चुके।
2: अपनी तो किस्मत ही चमकेगी।
0: और रोने की क्या बात है इसमें?
2: यार तेरी समझ में नहीं आएगा पगले, तरक्की बहुत हो रही है।
3: हमारी खुशी के आंसू है।
0: कमाल हो गया, जब भी दो मैं
4: उनकी तो किस्मत ही चमक गई। घर कितना अच्छा है और परी भी कितनी अच्छी है। वैसे पता चला करता क्या है?
5: बड़ा मशहूर डीजे है।
3: हाँ, और उसका यहाँ पे अपना डिस्को भी है।
4: वाह, काम का काम, पार्टी की पार्टी।
5: पार्टी तो हम भी कर सकते थे अगर तुम्हारे भाईजान मान जाते तो। कब से कह रहा था सब कुछ बेच बाज के दूसरे मुल्क चलते हैं, लेकिन नहीं, इनको तो पाकिस्तान में अचार बेचना था। अब हो गया ना सब चट।
3: अपना मुल्क अपना होता है फरहान।
5: तो अपना मुल्क अपना होता है ना, लेकिन अपने मुल्क में अपना पैसा कौन रखता है? सारे पाकिस्तानी रईस अपना पैसा मुल्क से बाहर रखते हैं, और एक हम है पर्चियों के हाथ डाले बैठे।
0: हाँ जी, किस सार की बातें हो रही हैं भाई?
4: गुड मॉर्निंग।
0: तू ला दो इधर। मॉर्निंग जी।
5: वो शकील भाई कह रहे थे कि तेरी शादी है ना, तो दूल्हे को नोटों के हार डालेंगे।
0: कमाल है यार शकील भाई, इतने बड़े बिजनेस टाइकून हो और हर नोटों का हीरो का आरपेनो का बता रहा
1: हूँ मैं। क्यों नहीं, क्यों नहीं?
6: The famous Prince Sheikh Sultan Al Baklava has graced Cape Town.
7: His Highness की तशरीफ आवरी किसी मुल्क के लिए सिर्फ फखर का बाइस ही नहीं होती, बल्कि बेतहाशा सर मुबादला भी साथ लाती है। खवातीनो हजरा, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि इस वक्त शेख सुल्तान अल बकलावा केप टाउन पहुंच चुके हैं और उनके साथ आया है नहायत ही बेशकीमत ओ नायाब उनका ये गोल्डन कमो। जी हाँ, ये बॉट सिर्फ सुनहरे रंग का ही नहीं है खवातीनो हजरात, बल्कि ये बना है 24 कैरेट खालिस सोने से। इसकी मालियत का अंदाजा लगाना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इस बॉट की एक खास बात ये भी है।
5: कमाल है, हमारे मुल्क में लोगों के पास खाने के लिए नहीं है, ये सोने पे अगर
3: लोग मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा होते हैं, ये पीछे सोने का कमोट लेकर पैदा हुआ।

0: thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पे तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसी लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर, खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में, कुछ मीठा कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: पहले कि हम कस्टमर को ढूंढते हैं, कस्टमर ने हमें ढूंढ लिया।
1: अच्छा है ना, फालतू की लुक्का छुप्पी से बच गए। अब उसका पॉट उसी को बेचेंगे।
0: एक दफा तो मूतूंगा।
2: घर आई लक्ष्मी पे मूते नहीं है रे।
1: ए सिंगाड़े उठाए से अंदर रख, फालतू में दोबारा पैक करना पड़ेगा।
3: ओ यार, हेलो बेबी, और तुम्हारा ड्रेस मैं इधर ही ले आया हूँ घर पे। अब ये ही आके ट्राई कर लेना, ताकि सबसे पहले दुल्हन को दुल्हा जी देखें, हैं?
4: Moon, listen to me. There's been a situation. शेख का पॉट चोरी हो गया, पूरे स्टाफ की इन्वेस्टिगेशन हो रही है।
5: वो सोने का कमोड।
4: हाँ, मेरा फोन बंद रहेगा, घर आने में थोड़ी देर हो जाए तो घर पे बता देना प्लीज।
5: हाँ बता दूंगा।
3: अच्छा सुनो, ओ फरहान, ओ सुन तो सही। अरे ओए, वो शेखल बकलावा था ना, उसका सोने का पॉट और चोरी हो गया।

0: पहनाने का था ड्रेस निकला, हमने खोला तो ये निकला।
1: ये क्या मून? परी ने तो ड्रेस ही दिया होगा, ये कहां से आ गया? कोई कंफ्यूजन है। सोना
0: सोना
1: सोना फोन पे कह रही थी कि पॉट चोरी हो गया है, पुलिस आई हुई है, अब उसका फोन बंद जा रहा है। पता कैसे चलेगा कि क्या हो रहा है?
2: मैं न्यूज में देखती हूँ, शायद कुछ आ रहा हो।
3: गुड आइडिया, लगाओ जल्दी।
4: कहा जा रहा है कि मालियत के एतबार से ये दुनिया की पांचवी बड़ी चोरी है और इस नौयत की चोरी के पीछे किसी बहुत ही बड़े और खतरनाक गैंग का हाथ है। ये वाकया रोनमा हुआ है जनूबी अफ्रीका के शहर केप टाउन में, जहाँ शेख सुल्तान अल बकलावा ने ऐलान किया है कि जब तक उनका एक अमाउंट मिल नहीं जाता वो बाथरूम नहीं जाएंगे।
0: अबे ओ ठाकरे, जल्दी से फोन लगा बेचारे को, कहीं प्रेशर से फटी ना जाए।
5: ए, तेरे हगने का बंदोबस्त हो गया है।
6: What?
5: We found your pot.
6: Good job.
0: एक घंटे के अंदर अंदर नेल्सन बुलेवर्ड पहुंच, पैसों के साथ।
4: गोल्डन कमोड चोरी हो गया है।
2: लगा फोन?
1: नहीं, उसका फोन अभी तक ऑफ जा रहा है। परी किसी मुश्किल में ना हो यार। सुनो, मैं पुलिस को फोन करने लगा हूँ, उनको सब कुछ बताना पड़ेगा कि ये पॉट हम तक कैसे पहुंचा।
3: मर पाएगा, पागल हो गया क्या तू?
1: क्यों?
3: तू पुलिस को फोन करके सब कुछ बताएगा और वो मान लेगी? अरे पॉट के साथ साथ हमें भी उठा के ले जाएंगे।
1: और ये पाकिस्तानी पुलिस थोड़ी है।
3: वही तो, पुलिस पाकिस्तानी नहीं है, हम तो पाकिस्तानी है और ऊपर से मुसलमान भी। चोरी के साथ साथ दहशतगर्दी का केस भी डाल देंगे। दुनिया में सबसे पतली गर्दन किसकी शकील भाई है? सारे फंदे हमें ही फिट आते हैं। दुनिया में जब भी कुछ बुरा होता है सबसे पहले हमें ही तो उठा के ले जाते हैं। देखो हम सब परेशान हैं, मिलके कोई हल निकालते हैं।
0: ओए, ठीक कह रहा है, बिल्कुल सही कह रहा है। इसको समंदर में फेंक देते हैं, ओसामा बिन लादिन की तरह।
2: नहीं, और... नहीं, नहीं, नहीं, एक सेकंड, घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। हम इसको गार्डन में दफना देते हैं, फिल्मों में वैसे भी यही होता है।
0: वो लाश को दफनाते हैं नैना, ये कमोड है।
1: ओ यार क्या बातें कर रहे हो तुम लोग यार, ऐसा करने से क्या होगा? और पुलिस तो फिर भी ढूंढ लेगी इसको, और कुत्ते लेके पहुंच जाएंगे वो इसको तलाश करते। देखो हमें ये पॉट किसी भी तरह पुलिस तक पहुंचाना ही होगा।
3: एक आइडिया है, एक आइडिया है इस पॉट को पुलिस तक पहुंचाने का।
0: क्या?

0: वार्ड पुलिस को मिल तो जाएगा ना।
1: हाँ
0: चल चल।
1: शकील भाई
0: उधर।

0: कौन दे, कौन, अरे कौन दे दो,
1: ये लो, पांच,
0: अरे पाकिस्तानी नहीं चाहिए यार। हेलो,
2: हेलो,
0: पॉट नेल्सन बुलवर्ड में है, आके ले जाओ।
2: व्हाट,
3: अबे अंग्रेजी में
0: गोल्डन पॉट इज एट नेल्सन बुलवर्ड, कम कम जल्दी,
3: गेट इट, गेट इट,
0: कम कम गेट इट।
2: हु इज दिस?
0: रामालू अफराज।
2: व्हाट,
3: चलो क्या?

0: Шех!
1: करने के लिए तो ये भी ठीक है, फिर साले शेख को सोने का पॉट क्यों चाहिए? इतने सारे सोने से कितने लोगों की जिंदगी बन सकती है यार? बन तो हमारी भी सकती है। शनि भाई उठो, शनि भाई
2: कौन?
1: चलो चलो उठो, अरे उठ जाओ ना।
2: कार लेके जा रहा है यार।
3: Hold it, buddy. Not so fast. I want to see what's inside.

0: यही हगेगा क्या?
1: What the fuck's this? Where's the pot?
2: पॉट तो इसी में था, कोई गड़बड़ है।
1: लारी चीरेस,
3: शेख हमारी बात सुनो शेख।
4: You call the police, bastard Kulwarami.
5: क्या कर रहे यार, पुलिस आ जाएगी।
2: किस्मत दूसरा मौका दे रही शेख भाई, हम तब दिल्ली आ सकती है, हमारी जिंदगी बदल सकती है। इतना रिस्क तो लेना पड़ेगा ना। चलो चलो, हिम्मत करो।

0: Good morning, ladies and gentlemen. I understand and appreciate that you've all been extremely anxious about this case. So it is my pleasure to announce that after a grueling investigation, we have managed to recover the pot. After a day or two with our forensic team gathering evidence, it will be returned to Prince Sultan immediately. I would also like to take this opportunity to make mention of our detectives.
1: Oh, yaar, shukr hai, yaar.
2: Oh, mil gaya pot police ko. Wala. Oh, tera idea kaam kar gaya, Farhan, meri. John. Oh, Shakil bhai, mubarka. Oh, chuppiyan. Hey, chuppiyan. Bhai, bhaji ba. Oh, kya kya.
3: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं
4: सुने आप लोग नाश्ता तो कर लें
3: हाँ हाँ
2: और नाश्ते ही बाहर करते हैं
4: मैकडॉनल्ड्स चलते हैं
2: ओए ओके हो गया फिर तो कौन है
3: ये क्या हो गया शरीफ चुप जाओ
4: पता चला पॉट मिल गया
2: पता तुझे क्या लग रहा है मैं अपनी शादी की खुशी में नाच रहा हूँ
3: शादी में
4: ज़्यादा खुश हूँ
3: शादी में मैंने खुद रखा था मेरी पुलिस कैसे लगी
4: हाय हाय हाय
3: हाय हाय हाय हाय
4: Nana, how are you? मुझे बताओ अब अगर जेट लैग उतर गया तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो बहुत मजा आ रहा है यहाँ भी क्या कर रही हो ये तुम क्या कर रही हो हेल्प करा रही हूँ पर हम तो नाश्ता करने के लिए बाहर जा रहे हैं
2: ओ,
4: तो पहले क्यों नहीं बताया I'm also starving. चलो
2: आओ बेबी कांट वेट चलो आओ शकील भाई आओ प्राण जल्दी
4: चलो
3: चलो चलो चलो
4: नैना मेरे साथ चलो तुम वहीं से घर चले जाएंगे ठीक है
2: See you there, take care.
5: पॉट पुलिस तक कैसे पहुंचा
6: बॉस कसम से मुझे कुछ नहीं पता बॉस
5: पता तो तुझे है और तू बताएगा भी
6: नो बॉस नो नो बॉस नो
7: मुकतलुल नदाल आ रईस अल कुरूफ अल बला
8: ये क्या बोल रहा है शेख
7: यू ब्लडी खराबी
8: गाली नहीं शेख देखे सब में कुछ लोचा है अपने को सेटल करने दे
7: से तो तुम किया जो पॉट पुलिस को दिया
8: शेख पॉट पुलिस को हमने नहीं दिया वैसे भी तुझे पॉट चाहिए था ना वो हम देते या पुलिस क्या फर्क पड़ता है
7: फर्क पड़ता है पॉट में डायमंड्स दे
8: डायमंड अबे कौन से डायमंड्स
7: बिग डायमंड्स जो मैंने तुझसे खरीदा और पॉट में रखा
8: शेख चूतिया मत बना यार पहले तेरा पॉट चोरी हुआ उसमें हीरे आ गए थोड़ी देर बाद तू कहेगा कि तेरी 150 बीवियां और 500 बच्चे भी उसमें थे हम मान लेंगे क्या अबे तेरा पॉट है या पोतने का कान जो हर चीज उसमें घुसने जा रही है
7: घुसेगा तो पुलिस वाला अगर पॉट से हीरे निकले अगर नहीं निकले तो मैं ऐसा घुसाऊंगा कि हीरे तुझसे निकलेंगे समझा

0: और तुम्हें हीरे थे और हमें पता ही नहीं था।
1: शेख को फोन मिला और थैंक यू बोल।
0: क्या?
1: शेख को फोन मिला और थैंक यू बोल, क्योंकि उसी ने हमें बताया है कि पॉट में हीरे हैं। अब ना उसे हीरे मिलेंगे और ना पॉट। फिर देखते हैं कौन किसके अंदर घुसता है।
2: क्या हुआ?
3: वो यार मून, हमने तुझसे कुछ छुपाया है।
2: ओ, क्या छुपाया है? क्यों सस्पेंस बढ़ा रहा है?
3: अब हम अमीर नहीं रहे यार। हमने तुझसे झूठ बोला था।
4: हाँ यार, हमारे साथ वही हुआ है जो हमने बैंक के साथ किया था।
3: फैक्ट्री चल गई यार मून, फैक्ट्री चल गई।
4: हाँ यार, हमारे तो दिवालिया निकल गया यार। फैक्ट्री के जलते ही हमारे पैरों से जमीन और सर से छत निकल गई। एक रात में सब खत्म हो गया यार, सब खत्म।
3: हमारे खाने के लाले पड़ गए यार। कसम से 3 दिन के बाद फ्लाइट में खाना खाया
4: और मैंने तो मंगवाया था यार।
3: कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था, कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा था। और अचानक से एक दिन तेरा फोन आया दोस्त।
2: ओ यार, तो ये बात तुम लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताई?
3: क्या बताते तुझे यार, क्या बताते? हमने सोचा तू इतना खुश है, अपना दुख बता के तेरे रंग में भंग क्यों डाले हम।
4: हमारे पास तो तेरा शुक्रिया अदा करने के लिए अल्फाज नहीं है यार। तू इंसान नहीं है, फरिश्ता है। फरिश्ता?
3: हाँ फरिश्ता।
2: ओ यार, तुम लोग परेशान नहीं हो यार? हम दोस्त हैं, वी आर लाइक ए फैमिली। और तुम लोग का जब तक दिल करता है मेरे पास रहो यहाँ पे। मैं हूँ ना, सब देख लेंगे। हैं शकील भाई?
4: क्या बात की है यार।

0: Çekil be.
1: Ha.
0: Gel.
1: Adı?
0: Moon.
1: Ha?
0: Hamne tujhse kuch aur bhi chupaya hai.
1: Ab kya chupaya hai? Wo bhi bata de.
0: Wo pot tha na.
1: Ha.
0: Wo sone ka tha. Ha.
1: और ये बात पूरे साउथ अफ्रीका को पता है फरहान, चल आजा।
0: वो पॉट हम रात को वापस ले आए थे,
2: मगर अब वो पुलिस ले गई है।
0: हाँ।
1: कहाँ से?
2: मेरा ख्याल है गाड़ी में से निकाल के। हाँ।
1: वो गाड़ी में से?
0: हाँ।
1: साले तीन के साथ तीन में क्या बोले थे? क्या बोले थे? ओ फरिश्ता, ओ फरिश्ता, ओ साले चूतिया बना तेरी गाड़ी के तुमसे। ये साल बड़ा बहुत साले हकले।
0: अरे क्या कर रहा है शकील भाई? है यार शकील भाई है।
1: ओ शकील भाई की पैर को चल। ओ अपना दिवालिया निकलवा के फिर निकलवाओगे? तुम लोग मजाक कर रहे हो क्या? कह दो ना, कह दो मजाक कर रहे हैं। कौन सी मनहूस गली थी जब मैं तुम लोगों को यहां ले आया और डायन भी सारी घर छोड़ देती है? जल के है ना, जल के मेरी खुशियों से जल के।
0: अरे
1: जान के किया तूने, तूने जान के।
0: अरे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं।
1: तू क्या कह रहा था?
0: क्या
1: तू क्या कह रहा था? है रंग में मांग नहीं डालना चाहता और डाल दिया। ओ तूने रंग में भाग डाल दिया यार। ओ कीड़े पड़े तुम दोनों को। ओ कराची की चार गिर के मार जाओ तुम लोग।
0: क्या बात कर रहे हैं यार? ओ चिकन भाई, चिकन भाई
1: बंद कर, बंद कर, एक्टिंग बंद कर। हेलो, हेलो,
3: क्या कर रहे हो? आ जाओ।
1: आ रहे हैं।
4: कितनी अच्छी जगह है ना।
5: हाँ? हाँ?
4: हाँ? जगह हाँ? अच्छी है। यू ओके?
1: या
5: थैंक यू।
6: कंग्रेट्स
5: फॉर व्हाट?
6: They found the pot. I can see you work at the Grand Heritage Hotel.
5: Oh, yeah. Thanks.
6: You're welcome. Enjoy your breakfast.
5: Pure Cape Town ko pata hai yaar. Hotel ki reputation to gayi.
6: Pata kitni police aayi thi?
5: Acha? Pure staff ko rok liya tha. Sari raat investigation ki hai. Lag raha tha jaise hum hi chor hain. Ullu ke patthe. But you guys have no idea yahan ki police ka. बहुत ही तेज है। Can you imagine? एक रात में पॉट ढूंढ लिया।
4: Wow.
5: I'm telling you, next 24 hours में तो चोर को भी पकड़ लेंगे। फिर देखना कैसा जूस निकालते हैं उसका।
4: निकालना भी चाहिए।
2: Please help us. We are Pakistani.
7: Currently the most wanted criminals by the police.
4: क्या कर रहे हो फरहान?
0: Sorry.
5: You okay?
0: Sorry.
6: Hope you're enjoying your breakfast.
4: I'm loving it.
5: Moon, bye.
1: Okay.
0: Oh, यार गलती हो गई, माफ कर दे। हम पाकिस्तान वापस चले जाते हैं।
2: हम आज ही चले।
1: हाँ सही बात है, बहुत अच्छे। और सारा कचरा करके हैं और मेरे पीछे पुलसे लगा के अब कटने के चक्कर में हो। एक इंच नहीं ले दूंगा तुम लोगों को यहाँ से।
8: Okay, I'm following.
1: और जब तक ये मसला हल नहीं हो जाता ना तुम दोनों।
2: गाड़ी
1: नहीं रोकूंगा
8: हमारी खुशियां बांटने आए थे।
1: यार खुशियां बांट रहे थे कि चाट रहे थे? कौन सा ड्रेस?
5: मेरा वेडिंग ड्रेस।
1: वो शादी वाला। बड़ी मैं दोनों में कॉल करूंगी।
0: भाई ये तो गंदी फिल्मों का हीरो लग रहा है।
9: Your tire is flat. Your tire is flat.
1: Oh, thank God.
9: What?
1: Thank you.
0: Thank you.
1: Thank you.
9: Have a nice day.
1: You too. वो सारी मुसीबतें एक साथ ही आनी थी। हाथ ना लगाई गाड़ी को। तेरी खराब है। फरहान शकील भाई तो फिर पुलिस को क्या मिला?
10: सर एक्सक्यूज मी सर, सो व्हाट डिड यू टेल देम दैट वी हैव द पॉट
9: टू कंफ्यूज द थीव्स? Get them relaxed, get complacent, and then we go after them hard. They think they're so smart. They don't know who they're dealing with.
10: Hello?
11: Chippy police ko jo pot mila hai, wo apna hai. Bata kidhar hai.
12: Sala, lagta hai tum log ka bhi koi baap nikala hai. पुलिस को कोई पॉट नहीं मिला। इट्स अ ट्रैप।
0: अगर पॉट पुलिस को नहीं मिला और अपने पास भी नहीं है तो ये पॉट है कहां?
13: बॉस गिव मी वन चांस बॉस, मैं पता लगा लूंगा बॉस कि पॉट कहां है।
10: और पुलिस को जो भी मिला है हमें एक और मौका मिला है। सोच मून, इतना सारा सोना हमेशा के लिए गलाजत का ढेर बना रहेगा, लेकिन अगर हम हिम्मत करें तो सैकड़ों लोगों की किस्मत चमक सकती है।
0: क्या?
10: अगर हम ये पॉट रख लें हम इसे बेच के दोबारा फैक्ट्री ले सकते हैं। उसमें हजारों लोग काम करेंगे यार, उनके घरों के चूल्हे जलेंगे, उनके बच्चे स्कूल जाएंगे। अरे लोगों के पास खाने को नहीं है यार, खाना तो क्या पीने का पानी तक खरीदते हैं यार लोग, और ये सलेच्चे, इनको हगने के लिए अरबों रुपए चाहिए। अबे जब लगेगी तो ना जंगल देखेंगे ना बिस्तर, कहीं भी भूत लेंगे यार। देख ये अमीर लोग, ये लोग अगर आम लोगों की तरह जिंदगी गुजारना शुरू कर दें तो दुनिया से गुर्बत खत्म हो जाएगी यार। मून सोच,
8: फरहान ठीक कह रहा है यार।
10: कुछ बोल यार।
13: इसको रखेंगे कहाँ पे?

0: वो यार ये तो लग नहीं रहा कि सोने का है ना।
1: शकील भाई ओ हग दे यार।
2: अरे उर्दू वाला नहीं शकील भाई, अंग्रेजी वाला हग दे।

0: कौन है?
1: बॉस चील लोग है। I haven't seen them before. देसी लगते हैं।
0: एक काम कर, उठा ला। हम भी तो देखें ये नामालूम अफराद कौन है जिन्हें हम नहीं जानते।
1: ओके।
2: ये पत्री पता नहीं कब जान छोड़ी। फरान उठना यार, उठो यार, मेरे पेट में पथरी नहीं है।
3: लाउड वाली दाल नहीं खाई जहील भाई इसलिए।
2: अरे नहीं नहीं, मैं सच कह रहा हूँ, पथरी नहीं है, हीरे हीरे असली।
3: किस सटे आ गए क्या जहील भाई सुबह सुबह?
2: अरे चल के देख लो,
3: क्या बकवास है यार जहील भाई, यार छोड़े दो यार। चलो भाई, क्या यार मुंह समझाओ यार, क्या है
2: ये? देखो अबे देख
4: मोहन, ये देख खूब तेरी खैर। क्या खाया था?
2: अरे यार तुम लोग ही बुफेट में ले गए थे, सब कुछ ही खा लिया था मैंने, कुछ भी नहीं छोड़ा था।
4: लग तो असली रहे।
2: हाँ
4: तू निकाल ना।
5: थैली लेके आता हूँ, थैली लाता हूँ, ठहरो जरा।

0: अबे छोड़ो के घर में थैलियां कहां मिलेंगी? अरे वो तो अम्मियां होती हैं जो थैलियां छुपा के रखती हैं।
1: अरे शकील भाई बातें कम करो यार, ढूंढो यार।
0: अबे ढूंढो ओए। अरे कराची होता तो सड़क से उठा लेते। अबे इसको
1: निकल।
2: सोने के अंडे देने वाली मुर्गी के बारे में तो सुना था,
3: हीरे देने वाला बुड्ढा पहली बार देखा है।
0: ओ अच्छा हुआ ऑपरेशन नहीं करवाया, वरना सारे हीरे डॉक्टर ले जाता।
1: शकील भाई फिर आएगी क्या?
0: अरे खिलाओगे तो आएगी ना, तेज गांव की तरह आएगी। इसमें क्या मसला है, ये क्या कोई रॉकेट साइंस है?
4: मैं पकाता हूँ, मैं पकाता हूँ। शकील भाई मैं पकाऊंगा, आप बिल्कुल बताओ कैसी चावल, चावल तो खाओगे ना? अच्छा नहीं कर
0: रहे खिलाओ।
1: क्या खाओ? शकील भाई केला खाओगे? केला?
0: अबे एक छे आना बंद हो जाएगी, दो खिला।
1: नहीं नहीं नहीं नहीं रुकनी नहीं चाहिए, रुकनी नहीं चाहिए। ये लो दो खा, दो खा।

0: तुम्हारे शकल में तुम्हारा पेट है पॉलिटिशियन, सब कुछ खा के भी कुछ नहीं कर रहा।
1: नहीं यार, मिस कॉल थी।
2: माश की दाल है तेरे पास? अब अबे चने पड़े हैं तेरे पास?
3: और शकील भाई एक बार जमाल को टखा लो, सारे ही रिवार आ जाएंगे। हैं

0: Then let the Lahava tea serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhabhat, 647-295-7861. Then let the Lahava tea serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसिसागा रिजवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009. अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.

0: वो मैं रख लूंगा।
1: पागल समझा तूने मुझे है? और इस दफा ज्यादा खाना खाया उसने, इतना ही रह निकलेंगे, सारा राशन भी खत्म कर दिया ऊपर से उसने।
2: शकील भाई कर ली।
3: शकील भाई क्या हुआ? हुई
2: शकील भाई हुई।
4: अबे लगता है जितने थे वो पहले निकल गए।
3: अच्छा झूठ बोल रहे हो, ये बुड्ढा झूठ बोल रहा है, इसने छुपा लिया।
2: खोलो दरवाजा, खोलो खोलो, मुझे देखना है अभी, खोलो। अबे तू क्या कर रहा है? देख रहे थे, खोलो दरवाजा।
3: तू छुपा लिया था शकील भाई। शकील भाई ये क्या?
1: क्या बोल रहा था तू? इस बार जो भी निकला वो तेरा।
5: ले ले ले ले ले ले।
3: ये तो चले गए
1: पाइप पे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ।

0: देखे तो गार्डन कितने साफ हैं।
1: हाँ यार, मैं भी पहली बार ही अंदर आया हूँ। कोई इनमें से हमारा भाई कौन सा, ये कैसे पता चलेगा?
0: शकील भाई, आप सुन के बताओ ना, आपको तो अपनी का आइडिया होगा।
2: अबे मैं क्या कुत्ता हूँ जो सुन के बताऊंगा, या मैं निंजा टर्टल हूँ जो गटर में रहता है।
0: लड़ो नहीं, हीरे ढूंढो, चल पाइप ढूंढते हैं।

0: There's nobody. पर पॉट मिल गया बॉस।
1: उनको छोड़, पॉट लेकर आ।

0: क्या मिल गया?
1: और पाइप मिल गया हमारा।
0: अबे मिल गया शकील भाई, पाइप मिल गया। निकल निकल निकल, जल्दी कर जल्दी कर। देखे हाँ देखे।
2: अरे शकील भाई क्या
3: अबे क्या हुआ?
0: देख रहे कि नहीं है? अबे क्या हुआ
3: यार शकील भाई?
0: हाँ
3: यार लगता ही रे तो आगे निकल गए।
0: कैसे आगे निकल गए? ठीक से देख।
1: तू देख ले आगे यार, तू अपनी नाक को साले।
3: पहले इतनी बदबू है यार,
0: हट यहाँ से। बदबू है यहाँ पे,

0: सुनो, उनको रखें कहाँ पे?
1: अमन, तू यही रुकना, मैं दोबारा जाके फ्रेश करता हूँ, यही रुकना, चल, चल, चल, चल।
0: अरे चुप चुगिल भाई,
1: चल, चल, आराम से, देखिए।
2: आजा,
1: शकील भाई।
2: ओह, आये, हाँ।

0: तो शकीब भाई
1: अच्छा बेटा इतनी एफर्ट करने की क्या जरूरत थी इतनी ज्यादा बरी बना ली तुमने हाँ
0: वो अपनी खुशी से लाए भाई पूरे खानदान के लिए गिफ्ट होंगे ना सिर्फ बरी थोड़ी होगी है ना
2: देना अब बरी में तो सिर्फ ये ज्वेलरी आंटी जी अगली
0: ओके
1: अच्छा
3: और ये भूल गया ये कौन देगा
2: ये भी ये भी ये बड़ा कीमती आंटी जी तो संभाल के
3: प्लीज
1: उफ इट्स वेरी ब्यूटीफुल
2: है ना
1: डोंट वरी बेटा I'll put it in my safe.
0: Oh, very good. और इनका safe तो इतना safe है कि उसका कोड आज तक मुझे भी नहीं पता.
2: लो कर लो बात. बाजी बात.
0: शेख भाई,
4: यही रहना है. बोलो ना, बताओ ना. इसका
0: वैसे आप लोग जा कहाँ रहे हैं?
4: जी, हम तो आ रहे हैं.
0: हाँ, कहाँ से?
5: इसका मतलब है कि हम आपके आ रहे हैं
1: लेकिन आप लोग तो आ चुके
5: यही तो हम आपको बता रहे हैं आंटी कि हम आ गए हैं
0: मैं समझा ना
5: दरअसल हमारे यहाँ रस्म है कि शादी से दो दिन पहले लड़के वाले लड़की के यहाँ रहने के लिए आते हैं
1: मून बेटा
2: जी
1: ऐसी किसी रस्म के बारे में आपने पहले तो नहीं बताया
2: होता क्या ना कि लड़का जब
3: ये भी तो रस्म है आंटी ये भी तो रस्म है बताना नहीं होता आंटी अगर बता देते हैं तो दूल्हा या दुल्हन में से कोई एक बहुत बुरे तरीके से बीमार हो जाता है आंटी और कभी कभी तो तौबा
1: नहीं बेटा बताओ
3: आंटी ऐसे मुंह से निकली हुई बात भी तो कभी कभी सच हो जाती है ना वैसे पहले आंटी मैं इनमें से किसी बात पे बिल्कुल यकीन नहीं करता था बिल्कुल नहीं लेकिन जब मैंने नहीं माना था याद है आपको एन रुखसती वाले दिन नैना को चिकन पॉक्स
1: अच्छा क्या तुम लोगों ने बता दिया यू ऑल मस्ट स्टे हियर मस्ट आई इंसिस्ट
6: क्या बात करी आंटी पॉप इनकी बातों में आ गई इनकी आई डोंट बिलीव ऑल दिस नो
1: क्या
0: मून बेटा बड़ों की बात को मानना चाहिए और फिर आंटी इतना इंसिस्ट कर रही हैं तो फिर यू मस्ट स्टे हियर यस
5: हां मून देख ले फिर चिकन पॉक्स हां
3: आंटी चाय चाय बहुत अच्छी बना दी आंटी
1: ओके
2: जी बड़ी
1: ये खाए ना आप लोग बिस्किट
5: वन बिस्किट
1: ये ले
5: ओह वन ओनली
1: चिकन पॉक्स
2: हां जी
7: क्या हुआ ठाकरे
8: हाँ बॉस बॉस पूरी सस्ते के तो पार्ट
7: साले सिंघाड़े हीरे कहाँ हैं हीरे कहाँ हैं
8: बॉस हीरे तो पार्ट में होंगे
9: हीरे पार्ट में नहीं है
10: Where the fucking diamonds?
7: पहले तू कह रहा था हीरे पॉट में अब कह रहा है कि पॉट में नहीं है खेल रहा है क्या तू जानता है कि हीरे हमारे पास नहीं है
10: तो ढूंढो या तो मैं हीरे लूंगा या तेरी जान जब इस घंटे तेरे पास अदरवाइज खलास

0: चलो ना,
1: चले जा रही हूँ नैना,
0: पहले मेरी बात सुनो।
1: अच्छा देखो तो सारे,
0: नहीं ना इधर आओ।
1: क्या हुआ?
0: सुनो तो सही, ये सब कुछ क्या चल रहा है? क्या नई नई कहानियाँ बना रहे हो तुम? कब हुए थे मुझे चिकन पॉक्स? चल क्या रहा है फरहान?
1: नैना तुम्हें नहीं पता बहुत मसला हो गया।
0: कैसा मसला?
1: अरे ये मोन के हालात तो बहुत ही खराब है, हमसे भी ज्यादा फुकड़ है।
0: क्या?
1: हाँ तुम्हें पता है उसने हमें यहाँ टिकट देके क्यों बुलाया?
0: क्यों?
1: क्योंकि उसको लगा हमारे पास पैसे हैं, हम कर्जा चुकाएंगे उसका।
0: है?
1: हाँ बहुत खतरनाक लोगों से कर्जा लिया हुआ उसने, वो तो घर पे आ गए थे, बड़ी मुश्किल से जान बचा कर निकले। अब कहाँ जाते, होटल के पैसे तो है नहीं ना, तो दो तीन दिन यहीं गुजार लेते हैं, शादी हो जाएगी फिर निकल जाएंगे, फिर मुंह जाने और वो लोग।
0: बिचारी परी।
1: क्या बिचारी परी, हमें अपनी पड़ी है बिचारी परी, बताना नहीं किसी को। चलो चलो सब देख।
0: फरहान नहीं मुझे ये तो बता।
1: रहने दो ना, वो देखो सब। हाँ बहुत आ रहा, आ रहे हम, आ रहे, नाचो नाचो।
2: अगर हीरे पॉट में होते तो पुलिस शेख को नहीं छोड़ती, इसका मतलब है जिसने हमसे पॉट उड़ाया हीरे उसी के पास है।

0: तुम क्या कर रही हो इधर?
1: एक बहुत इम्पोर्टेंट बात करनी थी।
2: करो बेबी।
1: तो चिपको नहीं।
0: तू शांति से इनकार तो नहीं कर रही? वो क्या होती है वो लास्ट मिनट एंग्जायटी, वो तो नहीं हो रही ना बेबी?
1: अरे नहीं यार, इम्पोर्टेंट बात है। वो शेखल बकलावा है ना, उसको मैंने फोन पे बात करते हुए सुना है।
0: क्या कह रहा था वो?
1: वो किसी को कह रहा था कि जो पॉट है ना, उसमें हीरे थे। और अब हीरे नहीं है।
0: ये बात तुमने पुलिस को तो नहीं बताई ना बेबी?
1: नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि अब बता देनी चाहिए।
0: क्या पुलिस को थोड़ी बतानी है? पुलिस को नहीं बताते बेबी? ये शेख लोग जो होते हैं ना, ये बड़े डेंजरस होते हैं, हैं? तो तुमने ये बात तो नहीं बताई ना किसी और को?
1: नहीं।
0: भूल जाओ, हैं? बिल्कुल ही भूल जाओ। और दो दिन में शादी है हमारी,
1: तो
0: क्यों बिलाओ जा हम हीरों के चक्कर में पड़े?
1: लेकिन मैं सोच रही थी कि
0: नहीं सोचो ना, तुम ना सोचो। अब तुम जाके वो लोग ब्यूटी स्लीप लो, हैं? वो डार्क सर्कल्स हो जाएंगे आपको। जाओ शावर।
1: Okay.
0: सो जा जाके। गुड नाइट।
1: आर यू श्योर कि नहीं बताना चाहिए?
0: यार मैं करता हूँ हीरो का कुछ, हैं? आप सो जाओ जाके। ओके
1: ओके ओके।

0: मैं तो कहता हूँ हीरे बेच देते हैं।
1: और बेचेंगे तो तब ना जब हमारे पास होंगे। हीरे तो आंटी के पास रखवा दिए थे।
2: तू तो ऐसे कह रहा है यार जैसे 10 साल बाद शादी। अरे कल शादी है, कल मिल जाएंगे हीरे, परसों भेज देंगे।
1: एक काम कर दो, उधर आ, नुक्कड़ पे खड़े होते हैं और आवाज लगाते हैं, भाई हीरे ले लो, हीरे ले लो हमसे।
0: अरे
1: ओ हीरे है, खीरे नहीं है, जो एमवीपी के जाएंगे। करोड़ों का पॉट है शेख का, करोड़ों का, तो हीरे कितने के होंगे? एमवी चलते फिरते कस्टमर मिल जाएगा। मेरी बात मानो, चुप करके ना शेख को हीरे वापस कर देते हैं। जान भी बच जाएगी और इज्जत भी। सुकून की जिंदगी गुजारते आगे, क्यों बहुत हो गया यार एडवेंचर बस। अब
3: मून सही कह रहा फरवन, बहुत हो गया एडवेंचर।
0: ठीक है यार, हीरे शेख को वापस कर देते।
1: हाँ।
0: लेकिन मुफ्त में नहीं।
4: तुम मून को कब से जानती हो?
5: It seems like I've known him forever.
4: तो तुम मून के बारे में सब कुछ जानती हो?
5: Of course यार, और वो भी मेरे बारे में सब कुछ जानता है। लेकिन हाँ एक बात नहीं जानता।
4: वो क्या?
5: तरा
4: ये क्या है?
5: उसके घर की चाबी। एक नंबर का भुलक्कड़ है वो। मैं कब से कह रही हूँ मुझे मेरा शादी का जोड़ा ला दो, मेरा ड्रेस ला दो, लेकिन ला के नहीं दे रहा। अब क्या मैं शादी का ड्रेस शादी के बाद पहनूंगी?
4: परी हम मून के घर नहीं जा सकते।
5: हम मून के घर आ गए हैं।
6: क्या यार, हम बस आ गए हैं, बस थोड़ी सी देर, बस 2 मिनट की बात,
5: 2 मिनट लेंगे
6: परी,
5: बस ड्रेस उठाएंगे और हम अभी चले जाएंगे।
6: परी
5: बस 2 मिनट यार, 2 मिनट लेंगे, चलो चलो
6: परी, मेरी बात, परी मेरी बात तो सुनो।
5: अरे यार अभी हम निकल जाएंगे, बस 2 मिनट,
6: हम बाद में।
4: मैंने बोला था ना कि बाद में आ जाते हैं।
3: सोना और हीरे दोनों एक साथ थे, औरत ने तो हाथ मारना था।
7: साला लगता है लाइफ लॉन्ग ज्वेलरी बनाने का प्लान था।
3: चले
4: जी।
0: अपने कपड़े और जेवर ठीक कर लो।
3: प्लान क्या है?
0: पता नहीं। सोचा नहीं ना।
1: प्लान के यार के पागल हो
0: गया। अरे रिसेप्शन पे चल के शेख का रूम नंबर किसी तरह निकालना है। अपना सारा जनान अपन इस्तेमाल करो। ठीक है चल।
8: Hello, beautiful. Hello, beautiful. I'm here to see Sheikh Baklava. Could you please tell me where the prince is staying? He's so tall.
0: Selfie.
8: Sheikh Baklava. Sheikh Baklava. Oh, don't shoot, please. I'm just a big fan. You're so gorgeous. Can I take a selfie with you, please? Just one. Please make a bout. Oh, you're so lovely. I can't believe this.
9: Mr. Baklava, you're so handsome.
8: He's right. Oh, she's right.
9: And so big.
10: Oh, too big. You are too what?
8: Hot.
3: Shukran. Shukran.
8: Naughty Sheikh.
3: Why don't you come to my room?
8: No.
3: I will treat you with some baklava. It make your life more flavorful.
10: I love all kind of flavor.
9: And I love baklava.
8: You're so sweet.
3: Okay, come with me.
8: Let's go.
3: खली
8: so sweet. Oh, oh, don't do this. Oh, come on.
11: You come,
8: oh,
11: come on.
8: You come on.
1: Oh, it's poison. Chup, chup. Shor mein jayega na, to daba denge andar.
11: If you want your diamonds, call on this phone, okay?
8: Tezabi puppiyan le raha hamari.
9: Bye, Bakku.
11: साले का फोन भी सोने का यार। चलो चलो।
4: हम किडनैप हो गए हैं परी,
5: और अब हमें रेप होने से बचना होगा।
4: हाँ
5: तुमने YouTube पे सेल्फ डिफेंस वीडियोस देखी है ना?
4: हाँ नहीं।
5: Just follow me.
11: कर रही है, चुप कर।
4: बच्ची है, स्टुपिड है ना थोड़ी सी। पता है क्या, आप लोग इतने डिसेंट लोग लग रहे हैं, लग ही नहीं रहा कि किसी लड़की को नुकसान पहुंचा सकते हैं, है ना? पता है क्या, आप लोग हमें प्लीज जाने दें, हम आपके सारे पैसे वापस कर देंगे, है ना? मून आपके सारे पैसे वापस कर देगा, इजी सिंपल, नो प्रॉब्लम, नो टेंशन।
7: अरे है चौपाटी की पानी पूरी, पर हमें तो पैसे चाहिए ही नहीं। छिपकली
3: हीरे कहाँ?
2: साला नाम बकलावा और इतना कड़वा, दिल कर रहा तेजाब से कुल्ली कर लूं।
1: तू एक काम कर, तू हार्पिक पी ले।
3: यार मैं तो कह रहा हूँ कि यार इसको चार्ज करो, बकलावा फोन करेगा तो ये बंद।
2: अरे जानबूझ के बंद किया शकील भाई, जानबूझ के बंद किया, जरा उससे तड़पने दो, थोड़े रेट बढ़ाते हैं। कितने पैसे मांगे?
3: नहीं नहीं मैं कहता हूँ पैसे वैसे छोड़ो, एक दो तेल के कुएं मांग लेते,
1: एक तो जहाज भी मांग लेते,
2: दो चार महल भी मांग लेते, 70-80 टन सोना भी मांग लेते। ये शेख है आमिर लाकर, सिर्फ कैश की ऑप्शन है हमारे पास, कैश के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। क्यों उनसे ही कह रहा हूं, तू बता।
1: देखो मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी खुशी से जो भी देगा ना चुप करके रख लेंगे, वैसे भी टाइम कम है हमारे पास।
2: अबे हीरे बेच रहे हैं सिग्नल पे फूल, जितने खुशी से दे देगा रख लेंगे। अरे भाई रहने दे यार तू, मैं खुद ही कर लूंगा, इस डील के बीच में तू मत पड़, तेरे जितने पैसे होंगे ना तेरे मुंह पे मारेंगे एंड में।
3: हाँ तेरे मुंह पे मारेंगे गरीब लोग।
1: हेलो,
12: कल सुबह 10 बजे अटलांटिस फैक्ट्री आ जाना।
1: कौन बात कर रहा है, कहाँ जाना?
7: क्योंकि हीरे तुम्हारे पास हैं।
2: नैना,
8: नैना,
2: नैना,
3: और लड़कियां हमारे पास। अब जल्दी से गूगल खोल और यहाँ पहुंच।
7: ले आ लौंडियां।

0: अब वहां से कैसे निकलवाएंगे यार?
1: तुझे तो पता होगा ना कि आंटी लॉकर कहाँ रखती है। मैं सोच रहा था कि
2: अबे जेम्स बॉन्ड, तू अपनी प्लानिंग बंद कर दे यार, तेरी मेहरबानी। बच्चा अगवा करवा दी यार तूने। मोन तू सोच यार, मैं भी सोचता हूँ।

0: अब मैं कुछ कहूं, नैना भी उन लोगों के पास है शकील भाई।
1: इन्हें ऊपर रख देना ठीक है, और फिर रूम की कीज मुझे दे देना। थैंक यू। व्हाई इज हर फोन स्विच्ड ऑफ?
2: कोई आंटी को देखा कहीं? आंटी जी, कब से ढूंढ रहा हूँ आपको।
1: और मैं परी को कब से ढूंढ रही हूँ। परी परी
2: हाँ परी, परी ने ये भेजी आपके लिए, डायमंड की रिंग है, संभाल के रखना सेफ के अंदर।
1: लेकिन ये लोग खुद कहाँ हैं? फोन भी बंद आ रहा है उसका।
2: वही आंटी जी, लड़कियों की लास्ट मिनट शॉपिंग यू नो, आ रही है, आ जाएगी बस। तो
1: उसे कहो मुझे फोन करे।
2: हाँ जी।
0: आंटी को पता लगने से पहले परी को घर लाना होगा। हाँ
1: कौन है?
3: रिंग रख दी सेफ में आपने?
1: बस दो मिनट देना बेटा।
3: टेक योर टाइम जी।

0: इसके तो फेफड़े जल जाएंगे।
1: हाय, सुबह से सिगरेट तक पीने का टाइम नहीं मिला। कल शादी है, फिर परी चली जाएगी। इतनी मुश्किल से पाल कर बड़ा करो और फिर कोई उल्लू का पट्ठा आता है, दो दिन में आई लव यू बोलता है और आपकी बेटी को ले जाता है। लुक एट हिम एंड लुक एट हर, जैसे हूर के साथ लंगूर। पता नहीं परी ने क्या देखा उसमें, क्या पता दिल का अच्छा हो।

0: Thinking of buying, selling, or investing in real estate, whether it be residential, commercial, or pre-construction? Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600. Or register at arshadbhatti.com.
1: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
2: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
4: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
5: मिसिसागा रिजवे
4: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
6: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल, खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करता मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 24, मिसिसागा। कॉल 905-820-1500 और विजिट rahatbakers.ca।
7: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference. It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.

0: मुझे लगता है लॉकर ही उठा लेते हैं।
1: अरे कोर्ट का क्या करेंगे,
0: पहले लॉकर तो उठा लेना, फिर कोर्ट को भी देख लेना। कोई है? जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्दी जल्द

ये तो कपड़े उतारो, शक्ल में टैटू भी है इसका, देखो सूरज बना हुआ है, टैटू कितने बाल है इसके। अभी जाना।

0: 아주 저기 봐. 아주 잘하게 잘하게. 할 말이 많거든. 할 말이 많거든.
1: 저거.
0: 저거. फरान जल्दी कर यार, इसको वापस मेरे घर पर। मैं घंटा जल्दी करूं, कोड़ी नहीं पता। तो तूने वीडियो नहीं बनाई थी? तुझे किसने कहा था पीछे से आवाज देने के लिए? आंटी सामने आ गई, कद्दू कुछ नजर नहीं आया। तू ट्रिपल जीरो ट्राई कर। अबे ट्रिपल वन, ट्रिपल जीरो, ट्रिपल नाइन, सारी ट्रिपल ट्राई कर ली, नहीं खुल रहा।
2: हाँ, सारे ट्रिपल ट्राई किए।
0: अबे तू रोक मून, मैं इसको तोड़ के खोलूंगा। शकील भाई रोक गाड़ी, रोक जल्दी, रोक
2: रोक।
0: अबे रोक दे।
3: हाँ
0: पत्थर पत्थर पत्थर पत्थर पत्थर ढूंढो। अरे मून पत्थर ढूंढ। अरे शकील भाई पत्थर ढूंढो।
2: अरे संजय करेगा क्या?
0: अरे चुप शकील भाई। अबे तेरी मैं तोड़।
3: अब तो इसका कोड आंटी बताएगी।
0: हो गया, हो गया, ठीक हो ना?
3: चुप करिए।
4: आपा है ना, कितना मजा आ रहा है, सब लोग एंजॉय कर रहे हैं, देखें डांस हो रहा है।
5: भाभी कहाँ बैठी हैं? आए ना बच्चे, कितना अच्छा डांस कर रहे हैं।
6: हाँ मैं आती, मैं आती हूँ, आप जाओ।
5: अरे मून बेटा कैसे हो?
0: जी, आ जी, बैठो बैठो।
3: आंटी जी,
6: वो
3: परी ने रिंग वापस मांगी थी। वो कोई और डिजाइन पसंद आ गया उसको।
6: दिस गर्ल इज सो कंफ्यूज्ड। और उससे जरा पूछना, बारात से पहले घर आ जाएगी? लेट मी गो गेट द रिंग।
7: सोनिया, सोनिया रिलैक्स, लिसन, लॉकर प्रोटेक्टेड है, कोड लगा हुआ है और वो सिर्फ आपको मालूम है, राइट? वो कहीं भी खुलवाने की कोशिश करेगा तो फंस जाएगा, रिलैक्स। और वैसे भी अलार्म है उसमें, तुम देखना पुलिस का फोन अभी आता ही होगा। मुझे बताइए खाई क्या उसमें? ज्वेलरी थी ना, ज्वेलरी, जान का सदका समझो। रिलैक्स सोनिया, रिलैक्स, देखना पुलिस का फोन अभी आता ही होगा, प्लीज। फोन लो, आ गया, उठाओ ना।
8: हेलो,
9: तुम्हारी बेटी और लॉकर दोनों हमारे पास है, कोड बताओ और बेटी ले जाओ। कोड बताओ,
8: परी
9: बताओ, कोड
8: परी कितना
9: बताओ ना।
0: क्या
8: परी,
0: इधर देख। हेलो सॉरी, आप कौन बात कर रहे हैं? हेलो मून, अबे अबे आंटी को फोन दे, अबे आंटी को फोन दे मून।
3: सोनिया
0: अबे क्या कर रहा है मून? अबे भेड़ के आंटी को फोन। हेलो, अरे ये किधर फंस गए शकील भाई, क्या बकवास है।
3: अंकल आप आंटी को संभालिए, ठीक है, परी को मैं वापस लेके आता हूँ।
0: ये सब माओ का दिल इतना कमजोर क्यों होता है? कोड बताकर बेहोश हो जाती बुढ़ी।
2: आए मैं तो कहता हूँ ये कोड वोड का चक्कर छोड़ो, ऐसे ही दे देते हैं। देखो ना इतने बड़े गुंडे हैं, लड़कियां उठाई हैं, इसको भी खोल लेंगे।
0: सही कह रहे शकील भाई, सही सही कह रहे ना मोहन।
3: यार खुल जाता तो अच्छा था, उन्होंने तो सिर्फ हीरे मांगे, जेवर तो बच जाता, लेने के देने पड़ गए यार।
0: अबे तू कैसा घटिया आदमी है यार मोहन, वहां नैना और परी पता नहीं किस साल में, और तुझे ज्वेलरी की पड़ी, शर्म कर यार।
2: अजीब आदमी है तू।
3: मैं तो सिर्फ कह रहा था कि हीरे।
0: क्या क्या कह रहा था?
3: कुछ नहीं,
0: बस अब जल्दी से सुबह हो जाए यार।
2: हाँ यार।

अरे उठो, चलो चलो चलो चलो चलो शकील भाई, चलो उठ जाओ, आज आराम से देख, आज आज आज चला जाओ, चलो

0: सर पहले तो उतर ना।
1: फट रही है ना।
2: और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि ये लोग हीरे लेने के बाद हमें छोड़ देंगे।
0: तो फिर एक वादा करते हैं, अगर आज हम यहां से जिंदा बच गए ना तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे आज के बाद।

0: यार, वैसे हमारा कोई बैकअप तो होना चाहिए था।
1: सुनो, एक काम करते हैं।
0: क्या?
1: तुम लोग अंदर जाओ, मैं बैकअप पे खड़ा
2: हूँ। चलो अंदर।
1: अरे मैं तो पहले ही कह रहा था अंदर चलो, तुम लोग खड़े बातें कर रहे हो यार।
2: कैरन, चलो
1: चलो चलो चलो चलो।
0: सलामुअलैकुम।
1: हीरे कहाँ हैं?
0: लड़कियाँ?
2: हाँ, लड़कियाँ कहाँ हैं?
3: ए शाणे, बहुत जल्दी रे तेरे को।
1: नहीं भाई, वो बात दरअसल ये है कि कल इस बेचारे की शादी है।
3: तो बारात यहीं ले आते, अग्नि पे फिरा देता इसे।
1: हीरे कहाँ हैं?
0: हीरे इसमें भाई बाप।
1: खोल
0: भाई, वो कोड नहीं पता।
3: अच्छा शौन है, लॉकर तेरा, हीरे तूने इसमें रखे और तेरे कोई कोड नहीं मालूम, ये ला समझा क्या?
1: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, वो भाई कुछ नहीं समझा, वो ये लॉकर भी हमारा नहीं है।
3: साले तेरी तो
1: बताता हूँ, मैं बताता हूँ भाई, दो मिनट दे, मैं पूरी कहानी बताता हूँ भाई।
2: भैया,
1: ये 2 मिनट की कहानी 10 मिनट में सुनाएगा। ओए, तू सुना।
0: मैं देखिए, ये लॉकर है, ये इसकी सांस का है
4: मेरी,
0: और कोड भी उन्हीं को पता है। हाँ। लेकिन वो बता नहीं सकती।
1: गूंगी है क्या?
0: नहीं नहीं नहीं, वो बेहोश है ना।
4: बेहोश
1: क्या?
0: हाँ वो
4: भाई भाई भाई भाई, मैं बताऊँ?
1: तू बता
4: भाई। जब हमें ये हीरे मिले ना, तो मुझे लगा कि हमें इनको किसी सेफ जगह पे रखना चाहिए।
0: हाँ।
4: तो मैंने ये हीरे उठा के अपनी सास को दे दिए।
0: हाँ।
4: मेरी सास ने हीरे उठा के इस लॉकर में रख दिए।
0: हाँ।
4: अब मेरी सास को थोड़ी पता है कि वो लॉकर में हीरे रख रही है, क्योंकि अपनी सास को ये हीरे देने से पहले ना मैंने ये हीरे ज्वेलरी के डिब्बे में डाल दिए। तो ज्वेलरी के डिब्बे में हीरे, और हीरे डिब्बे के लॉकर में, और लॉकर के अंदर डिब्बा, डिब्बे के अंदर हीरे, हीरे डिब्बे में, ये सास को नहीं पता, तो इसीलिए डिब्बे के अंदर आपके हीरे महफूज है।
3: तो लॉकर में क्या है?
4: हीरे।
3: लेकिन हीरे तो डिब्बे में।
0: अरे तो हीरे तो डिब्बे में ही है ना।
1: तो डिब्बा लाना चाहिए था ना सालो। ओ यार, मैं तो पहले ही कह रहा था कि मुझे बताने दो। देखो भाई को गुस्सा आ गया।
0: सॉरी
1: भाई, मैं बताऊं?
0: बस
1: बहुत हो गया तुम लोग का नाटक। ठाकरे, एक कोड़ा सारा सच बाहर आ जाए।
0: नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं,
3: मेरे को सुननी है कि साली असली कहानी है क्या। बोल, तू बोल।
1: थैंक यू भाई, थैंक यू। ये जो लॉकर है ना, ये इसकी सास का है।
3: अबे इसकी सास की माँ की।
1: अरे
0: भाई
1: भाई
0: भाई
1: भाई, बात कंप्लीट होने दो ना, बात कंप्लीट होने दो। देखो ये इसकी सास का है, और उसकी बेटी को आप उठा कर ले आए। जब उसको पता चला तो वो बेहोश हो गई। अब अगर उसके होश आने का हम वेट करते तो यहाँ आने के लिए लेट हो जाते। तो हमने सोचा कि हीरे सबसे पहले आपके पास पहुंचने चाहिए, तो हम ये ले आए। और माशाल्लाह आप इतने बड़े गुंडे हैं, एक गोली चलाएंगे साले का भेजा बाहर आ जाएगा।
0: सही
1: ओए,
0: सही कह रहे।
1: कोई होशियारी तो नहीं कर रहा ना तू?
0: नहीं नहीं बॉस,
1: नहीं नहीं
0: नहीं नहीं नहीं, होशियारी बंदूक के आगे कौन होशियारी करेगा बॉस। आप बोले तो अपना फोन और ये वॉलेट, ये भी रख देता हूँ, कराची में तो हमें आदत है।
1: आ,
3: साले डेढ़ो शहर, तुझे क्या लगा था अलार्म बजते ही लॉकर से पुलिस बाहर आ जाएगी? हैं? साले चूहे।

0: मेरी फायरिंग क्यों हो रही है? मेरी शादी थी यार, मैं तो कुंवारी ही मर जाऊंगी।
1: शर्म नहीं आती तुम्हें? अजीब आदमी है, इतनी जोर से मारा मेरे सर पे घोबड़ा बन गया। पहले मेरे पांव पे लगा।
2: अरे यार शकील भाई, तुम बिल्कुल सही हो गए, ये तो अकला ही नहीं
1: रहे। पर ये गोलियों की आवाजें क्यों नहीं आ रही? क्या सारे लोग घर चले गए?
3: ओ यार लगता है शकील भाई बहरे हो गए।
4: शकील भाई आप यही रहना, बहुत फायरिंग हो रही है, अपना ख्याल रखना, मैं आ रहा हूँ।
5: क्या
6: ओ शकील भाई, आपने इधर ही रहना है, ठीक है? हम लोग आ रहे हैं लड़कियाँ छुड़ा के, यहाँ पे बहुत ज्यादा फायरिंग हो रही है।
1: पेशाब करने जा रहा है यार, ये कमाल है यार, पेशाब करने जाओगे तो लड़कियों को कौन छुड़ाएगा?
6: ये
4: तो सिगरेट का एंड लग रहा
6: है।

0: अबे तो किसने कहा था 2017 में 1960 की गाड़ी रखने के लिए पागल।
1: अबे फास्ट एंड फ्यूरियस में तो ठीक चलती है।
0: अबे तो चला ना।
2: क्या बात हो रही है,
0: चुप कर मेरे।

0: आप वैसे इतनी टेंशन ले रही थी, रिलैक्स रहा करें।
1: स्माइल प्लीज।
2: आज हम आखिरी बार साथ हंस रहे थे क्योंकि हमने वादा किया था कि अगर जिंदा बचे तो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखेंगे। मून की तो हो रही थी हैप्पी एंडिंग और हमारी पाकिस्तान में लैंडिंग। मनहूस हीरो ने सबको जीरो कर दिया। इकबाल ठाकरे की हड्डियों के साथ साथ उनके भरम भी टूट चुके थे। पुलिस ने कूट कूट कर शेख की असलियत भी उगलवा ली और अब सुल्तान अल बकलावा अपनी शाही तशरीफ सोने पर नहीं बल्कि जेल के गंदे पॉट पर जमाता। पर ऑफिसर फ्रेडरिक अपनी जिद का पक्का है, हीरों के मिलने तक उसकी तलाश जारी रहेगी।
3: एक्सक्यूज मी, आमिर थोड़ी सी जगह दीजिएगा। बेटा सब कुछ तो चोरी हो गया था, बस ये एक बॉक्स मैं लॉकर में रखना भूल गई थी।

0: then let Talhawa Tea serve you the best. 647-295-7861. Pre-construction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhawa Tea, 647-295-7861. Then let Talhawa Tea serve you the best.
1: अगर आपको दुबई या मिडल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
2: मिसेस आगर रिचवे
1: स्टोर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए। अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
3: If you are looking for an honest, dependable, and trustworthy auto repair facility, consider Z Auto Center for your foreign and domestic vehicles. Our certified technicians have years of experience, special packages for Uber, Lyft, taxi, and driving school car safety inspection. Winter, summer, and all-season tire packages available. Best selection of used cars for sale. We are family-owned and operated business located at 3670 St. Clair Avenue East, just east of Midland Avenue in Scarborough. Call us today at 416-462-3050.
4: Rah Bakers and Sweets, 60 saal se aapke haseen lamhon mein shamil, khushiyon se bhare meethe zaike, nafasat aur quality mein sabse behtar. Khalis ajza se taiyar karda mithai, cakes, biscuits and snacks. वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में कुछ मीठा कुछ नमकीन राहत बेकर्स आज ही विजिट कीजिए 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट यूनिट 24 मिसिसागा कॉल 905-820-1500 और विजिट राहत बेकर्स.ca

0: बड़ी देर के बाद जो है वो डांस करने को दिल किया है। इतना मजे का गाया है सामिया ने, बहुत अच्छे। शाजिया मंजूर साहिबा ने भी इसको बहुत अच्छा हक अदा किया है इसको गाने का, के पूरी दुनिया में ये सुपर हिट हुआ। और सामिया आपने भी बहुत अच्छा गाया,
1: थैंक यू सो मच।
0: जस्ट लव दिस परफॉर्मेंस।
1: थैंक यू
2: मलकू स्टूडियो सीजन 1।

0: सारा दिन गाना सुनता रहता। पसंद रसूख भाई?
1: दादाजी दादा सुनो पेजने दाखो अली जफर दे।
0: होगा भाई, हमने गाना वाला बड़ा देखा। हम तो तब मानेगा जब हमारा जुबान में गाएगा।

Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum and hello. Radio Pakistan Toronto, CMR 101.3 FM. मैं हूं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी. कैसे हैं आप? आपके मूड कैसे हैं? आपके मिजाज कैसे हैं? खुदा रब्बे करीम आपको खुश रखे, सलामत रखे, हंसता मुस्कुराता रखे. अल्लाह रब्बे करीम आपको आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने की तौफीक अता फरमाए. आमीन सुम आमीन. प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे हस्बे मामूल दुआ के साथ, जिसके लिए मतावन देते हैं मस्जिद नूरुल हरम. मस्जिद नूरुल हरम की तामीर के दूसरे मरहले का आगाज़ हो गया है. स्टील स्ट्रक्चरिंग का काम जारी है. दिल खोल कर आप इसके लिए तैयार दीजिए. राबते के नंबर है 905-257-1342.

0: 3FM. न्यूज के लिए मैं दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
1: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें. अमरीकी और ईरानी फौज के एक दूसरे पर हमले के बाद आबनाए हुरमुज में जंगबंदी की सूरत हाल नाजुक हो गई है. ईरान ने आबनाए हुरमुज में एक अमरीकी जहाज पर हमला किया है, जिसके बाद यूएस नेवल डिस्ट्रॉयर जहाज पसपाई पर मजबूर हो गया. सेंटकॉम का कहना है कि उसने 7 छोटी ईरानी कश्तियों को तबाह कर दिया. मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत फुजैरा में ड्रोन हमले के बाद 3 अफराद जख्मी हो गए, जबकि फुजैरा ऑयल इंडस्ट्री जोन में आग लग गई है. उधर आबनाए हुरमुज में जनूबी कोरिया के एक जहाज में धमाके के बाद आग लग गई. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमरीकी जहाज या फ्रीडम प्रोजेक्ट में रुकावट डाली गई तो ईरान को सफाए हस्ती से मिटा देंगे. उधर सेंटकॉम ने 2 अमरीकी जहाज आबनाए हुरमुज से निकालने का दावा किया है, जबकि पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि गुज़श्ता चंद घंटों में कोई तिजारती जहाज या ऑयल टैंकर आबनाए हुरमुज से नहीं गुजरा. अमरीकी जहाज को निशाना बनाने की ईरानी दावे के बाद आलमी मंडी में तेल की कीमतों में तेजी. अमरीका ने अपने कब्जे में लिए गए ईरानी जहाज और उसके अमले को पाकिस्तान के हवाले कर दिया. इमरान खान की बहन अलीमा खान ने तमाम पार्टी अहदेदारों और रहनुमाओं को मंगल के रोज अडियाला जेल पहुंचने की हिदायत की है. जनूबी वजीरिस्तान के इलाके आजम वर्सक में फौज की पोस्ट पर एक नाकाम खुदकुश हमले के नतीजे में 7 अफराद जख्मी हो गए. खबरों के मुताबिक PIA 25 मई तक आरिफ हबीब कंसोर्शियम के हवाले कर दी जाएगी. पाकिस्तान सुपर लीग 11 के फाइनल में पेशावर जिल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेटों से हराकर दूसरी मर्तबा चैंपियन बनने का एजाज हासिल कर लिया. इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे.
2: खास खास खबरें जो बैरदीन सब आपके लिए पेश किया करते हैं. स्टूडियोज में रबते के नंबर 4165930003. गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 203.50 रुपये. डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. पाकिस्तान के तमाम बैंकिंग जितने भी बैंक हैं उनमें आप ट्रांसफर कर सकते हैं. अकाउंट नहीं कैश बैंक डॉट भी हासिल कर सकते हैं. घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए. gondalbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए. आज का रेट है 203.50. कॉल कर लीजिए 905-306-00-00. और ईद फेस्टिवल के वाले से शैला जाफर साहब से भी आपको मुलाकात कराएंगे. कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे, तफसीली खबरें 8 बजे, लाइव पास आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब. और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें होंगी, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक. मैं आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ. मेरे चिर प्यारे सामिन, कभी कभी हालात हाजरा के मुशाहदे के बगैर भी मुस्तकबिल अपने आने की कबल इस वक्त इत्तला दे देता है. इकबाल ने अगर कहा कि महव हैरतों की दुनिया क्या से क्या हो जाएगी, तो इस खबर का ताल्लुक हाल से कतई नहीं है. ये अलग इत्तला है या इसका ताल्लुक नज़र से है. मकाम खबर और मकाम नज़र का फ़र्क तो सिर्फ अहल बातिन ही मालूम कर सकते हैं. अहल बातिन की नज़र में अपने ज़माने के अलावा भी ज़माने होते हैं. वो जानते हैं कि वजूहात और नताज के रिश्ते इंसानी रिश्तों की तरह हमेशा कायम नहीं रहते. बाज़ुकात वजह कुछ और होती है, नतीजा कुछ और. बेसबब नताज की खबर ही नज़र कहलाती है. साहिब नज़र नकीब फितरत होता है. फितरत उसे जो कुछ दिखाती है वो उसे बयान करता है, वो साफ साफ बयान करता है, लेकिन सुनने वाले समझ नहीं सकते. सामईन हैरान होते हैं कि उसने कौन सा अखबार पढ़ लिया है. ये शख्स बहक तो नहीं गया, लेकिन नहीं, वो बहकता नहीं है. फितरत बहकने वालों के ज़रिए कोई पैगाम नहीं भेजती. यूँ भी जानने वालों और ना जानने वालों में फ़र्क रहता है, उसी तरह जिस तरह जागने वालों और सोने वालों में फ़र्क है. हर दौर में जानने वालों ने ना जानने वालों को अपने इल्म से मुतारिफ़ कराए हैं. सुनने वालों को यकीन आए ना आए ये अलग बात है. 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपका होस्ट और दोस्त अरशद भट्टी हूँ.

0: Students been up taking number 416-593-0003, Radio Pakistan, Toronto, CMR 11.3 FM. Job is contained by Nishat Radio Pakistan dot FM person sakte hain. Facebook mein hamara page Radio Pakistan Toronto se bhi like kijiye, tune in pe hamara program available hai. Phone ke zero suna chahiye 647-506-0003 pe call karke hamara program sun sakte hain. Hamara television channel Toronto 360 TV tamam IPTV boxes, Jadu Bolzom bus ke saath saath Apple TV, Amazon Fire TV, Roku TV ke saath saath Uber app ke through Rogers pe bhi aap hamara Nishat dekh sakte hain. Hamari app bhi aap free download kar sakte hain. App Store pe jaake type kijiye Toronto 360 TV, Android iPhone dono ke liye hamari app free download kar sakte hain. दो चैनल टोरंटो 360 टीवी और टोरंटो 360 इंटरटेनमेंट आप देख सकते हैं. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो की ऑनलाइन इर्शाद भी 24 घंटे हमारी ऐप के थ्रू आप सुन सकते हैं. आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए. रिलेट के वाले कोई सर्विस चाहिए टीम भट्टी से रब्ता कीजिए. कॉल तला भट्टी 6472957861. आपको घर खरीदना है, बेचना है, लीज करना है, इज अ वेरी गुड टाइम फॉर बाइंग. ये बायर्स मार्केट है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स इस मार्केट में मौजूद हैं. बहुत से ख़ासतौर पे जो टाउन हाउसेज हैं वो बहुत ही प्राइस अच्छी प्राइस पे अवेलेबल हैं. आप तलहा को कॉल कर लें 6472957861. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के निशान आप हमारे टेलीविजन चैनल टोरंटो 360 टीवी पे भी 7 से 9 बजे देख भी सकते हैं. सुन तो आप सकते हैं CMR पे, लेकिन हमारे टीवी चैनल टोरंटो 360 टीवी पे आप हमारे निशान देख भी सकते हैं. आपका अपना टेलीविजन चैनल है, देखा कीजिए, अपना फीडबैक भी जरूर दिया कीजिए. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 11.3 FM में आपका होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ.
1: You are listening to Radio Pakistan.

ये बेहतरीन वक्त है। इस बायर्स मार्केट में अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज। कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861 फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स। कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।

0: मोहम्मद सलमान।
1: मॉर्गेज हो तो वही जो आपके लिए हो सही।
0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
2: कॉल मोहम्मद सलमान एट 437-237-8888। इट्स 437-237-8888। लाइसेंस नंबर 12458।
3: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।
4: अपने मकान की नेक्स्ट मंथ क्लोजिंग है, कुछ सोचा है टीवी और अप्लायंसेस कहाँ से लेने हैं?
5: हाँ, ब्रैम्पटन टीवी और अप्लायंसेस, जहाँ स्पेशल सेल चल रही है। टीवी, फ्रिज।

0: वॉशर ड्रायर किचन रेंज होल्डर माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे।
1: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ।
0: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं।
1: दैट्स वंडरफुल।
0: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 224 का सारा सामान भी मिल जाएगा।
1: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
0: ऑन बोवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलन। टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट brampton-appliances.ca।
2: करम ज्वेलर्स, अगर आपको दुबई और मिडिल ईस्ट जैसे जेवरात की तलाश है तो अब आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे मिसिसागा रिजवे के स्टोर पर तशरीफ लाइए अलकरम ज्वेलर्स, जहां आपको मिलेंगे सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के बेहतरीन सेट्स। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर पर मौजूद मिलेंगे। आज ही विजिट कीजिए अलकरम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा। 9058280009, 9058280009। योर लॉगिन हो अलकरम ज्वेलर्स.ca। अलकरम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।

0: आईसीसी इमिग्रेशन की RDMD और उनकी प्रोफेशनल टीम स्कार्ब्रो और हेड ऑफिस मिसिसागा से आपको सर्व कर रही हैं। बिजनेस वीजा, स्टूडेंट वीजा, वर्क परमिट, स्पॉन्सरशिप या किसी भी अप्रूव कैटेगरी में आप अपने प्यारों को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो अभी कॉल कर ले 905-461-2424। इट्स 905-461-2424।
1: लीसा की याद नहीं आई तुझे जस्सी? जस्सी को छोड़िए, क्योंकि लीसा कॉस्मेटिक्स लाए हैं स्प्रिंग वेयरहाउस सेल खास आपके लिए। परफ्यूम, स्किन केयर, मेकअप, हेयर केयर, डिजाइनर सनग्लासेस, चॉकलेट्स और भी बहुत कुछ विद मेगा सेविंग्स अप टू 80% ऑफ। धुरंधर डील्स ऑन ऑल योर फेवरेट वर्ल्ड फेमस ब्रांड्स जैसे टॉम फोर्ड, वर्साचे, अरमानी, हजारो एंड मोर। आपको आना है 135 कॉमर्स वैली ड्राइव, ईस्ट मार्कम, हाईवे 404 और 407 के बेहद करीब एंड क्लोज टू 401। सेल चलेगी अप्रैल 18 से मई 10 तक, परफेक्ट फॉर मदर्स डे गिफ्टिंग। तो ज्यादा स्वैग एट कम प्राइस सिर्फ लीसाज वेयरहाउस सेल पर। विजिट lisascosmetics.com।
0: अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आईकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए 3 खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं, जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर। SSR ऑटो रिपेयर 3438 शेपर्ड एवेन्यू ईस्ट स्कारब्रो, वार्डन और शेपर्ड का इंटरसेक्शन। 24/7 ऑटो रिपेयर, वेरी क्लोज टू हाईवे 401। तमाम मेजर रिपेयर वर्क करते हैं, बॉडी शॉप, एक्सीडेंटल रिपेयर, डेंटिंग पेंटिंग, इंजन रिपेयर, ऑयल चेंज, टायर चेंज, ब्रेक पैड्स एंड राउटर, व्हील अलाइनमेंट, बैटरी एंड AC सर्विस। 24/7 टोइंग सर्विस भी अवेलेबल है। SSR ऑटो रिपेयर, कॉल नजीर चौधरी, अवैस चौधरी और मुनीर हुसैन 6473217444। इट्स 6473217444। क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट 1 साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। याद आएगी, इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200।
2: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
0: जी हाँ, 416-570-0157 अंजुम कुरैशी साहब के रबते के नंबर है। खुदा नखास्ता आपका कार एक्सीडेंट हो जाता है, आप गिर जाते हैं, आपको टिकट मिल जाती है, बिल्कुल परेशान ना हो, कॉल कर लीजिए। फॉर द वेरी लॉन्ग लॉन्ग टाइम इसी प्रोफेशन में हैं, बहुत ही रिनाउंड लॉ फर्म है जिसके साथ ही काम करते हैं। मैक्सिमम कंपनसेशन आपको मिल जाएगी, और हमेशा जब केस सेटल होता है फीस एक्सीडेंट क्लेम की, उसके बाद ली जाती है। 416-570-0157 अंजुम कुरैशी के नंबर है। एक्सीडेंट क्लेम का नाम आया तो साथ ही अंजुम कुरैशी का नाम आता है, हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहेंगे। अंजुम कुरैशी, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम और तमाम सुनने वालों को आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। हमेशा बात करते हैं एक्सीडेंट की, अवेयरनेस देते हैं कि क्या करना चाहिए, लेकिन जिस तरह दिन रात हम एक्सीडेंट की बात करते हैं और आपको बताते हैं कि अवेयरनेस क्या है, इसी तरह से जब आपको ट्रैफिक टिकट मिल जाते हैं तो उसकी अवेयरनेस आपके पास होना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि जब टिकट मिलता है तो लोग कहते हैं कौन कोर्ट जाएगा, उसके पर लिखा हुआ $560 या $400 देने, तो कौन इस सारे हैसल में पड़े, सीधा सीधा जाके फाइन पे कर देते हैं। जब आपने फाइन पे कर दिया, इसका मकसद हुआ कि आपने एक तो गिल्टी ले ली, उसके बाद फर्ज कीजिए कि अगर आपको केयरलेस का टिकट मिला है तो राइट अवे आपके 6 पॉइंट जो है आपके लाइसेंस से कट गए, और वो 3 साल तक आपके एब्स्ट्रैक्ट पे आते रहेंगे कि आपको केयरलेस का टिकट मिला था। इसी तरीके से मुख्तलिफ सेक्शंस के हिसाब से मुख्तलिफ आपके पॉइंट जाते हैं, और अगर आपको जो टिकट मिलती है आपने पैसे पे कर दिए, इसका मकसद हुआ कि मैंने इसको कबूल कर लिया कि ये मेरा जो चार्ज था वो सही था और मैं गिल्टी करता हूँ जब आप पैसे पे करते हैं। और फिर उसके बाद जो है वो आपके रिकॉर्ड पे रहता है, आपकी इंश्योरेंस बढ़ जाती है, अल्लाह ना करे आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई और टिकट मिल जाए, तो पिछला रिकॉर्ड निकाला जाता है कि आपके रिकॉर्ड पे तो दो टिकट पहले सही है। तो आपको ये समझना चाहिए कि आपको जब टिकट दी जाती है तो आपको ये कहा जाता है कि आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप गिल्टी कर लें, एक ऑप्शन है अर्ली रेजोल्यूशन, एक ऑप्शन है आपके पास ट्रायल एंड आप उसको जो है नॉट गिल्टी करते हो। हमेशा आपको ट्रायल और नॉट गिल्टी करना चाहिए ताकि आपका अपना वर्जन भी आप बयान कर सको, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं हुआ था जिसकी वजह से टिकट मिला, ऑफिसर ने ये कहा, जाहिर है आप ऑफिसर से आप कोई आर्ग्यूमेंट नहीं कर सकते, तो वो आपको टिकट दे के चले जाते हैं, लेकिन आपका एक अपना वर्जन होता है कि ऐसा नहीं था ऐसा था, तो वो आपको बताने का एक मौका मिलता है आपके रिप्रेजेंटेटिव को। नॉर्मली टिकट जो है वो पैरालीगल्स करते हैं, हमारी टीम में लॉयर मौजूद हैं जो आपके टिकट को डील करते हैं, जो कि बहुत बेहतर तरीके से करते हैं। तो ना सिर्फ आपको हम उन टिकट से निजात दिला देते हैं या कोई बेहतर तौर से आपको कोई फैसला लेकर देते हैं जो कि आप खुद नहीं ले सकते, और आपको कम से कम आपका एब्स्ट्रैक्ट जो है वो क्लीन रहता है या कम से कम आपकी इंश्योरेंस बिलावजह नहीं बढ़ जाती। लेकिन जहां हम हमेशा रेडियो पे बताते हैं कि कार एक्सीडेंट जब भी होता है आपको कंटिजेंसी फीस होती है, और आपको इन द एंड ऑफ द डे आपको अपनी टिकट के पैसे, आपको अपने जो सेटलमेंट के पैसे हैं वो आपको लॉयर की फीस जो है इन द एंड ऑफ द डे देनी है। लेकिन जब हम बात करते हैं टिकट की तो आपको टिकट में अप फ्रंट पैसे देने होते हैं, क्योंकि ये रिप्रेजेंटेटिव कोर्ट में जाके आपकी टिकट को नॉट गिल्टी करके फाइट करता है, और इसका तरीकेकार बिल्कुल डिफरेंट है और ये कंटिजेंसी फीस नहीं होती। हमेशा की तरह अगर आपका कोई भी कार एक्सीडेंट हो गया है आप मुझे कॉल कर सकते हैं। हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि आपकी अपनी अंजुम कुरैशी, जमाना बीत गया, क्या मैं इसी प्रोफेशन में हूँ, तीन डकैत हो गए, आपका हमारा साथ है, आवाज सुनते रहते हैं, प्लीज मुझे कॉल करें 416-570-0157। कोई कार एक्सीडेंट हुआ हो, कोई आपको टिकट मिली हो, आप जरूर कॉल करके हमसे बातचीत कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।
4: थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया अंजुम कुरैशी। फ्राइडे आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू। नंबर नोट कीजिए मतलब 416-570-0157। पेशावर जलमी पी एस एल 11 की चैंपियन बन गई है, बाबर आजम ने ट्रॉफी उठाई है, अंडर 19 की ट्रॉफी उन्होंने उठाई, तो उसके बाद शायद बड़ा इंतजार करना पड़ा उन्हें एक ट्रॉफी उठाने के लिए। हैदराबाद को उन्होंने शिकस्त दी। हैदराबाद की टीम वन साइडेड एक वक्त में हो गया था, क्योंकि हैदराबाद की टीम 129 रन पर आउट हो गई थी। तफसील हम बताएंगे थोड़ी ही देर में, और इस वक्त आपके लिए पहले पेश कर रहे हैं आज की शायरी।
5: शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है। अपने आप से आंख चुराए फिरती हूं मैं, आईने में किसका चेहरा देख लिया है। अब भी सपने बोए तो ईमान है उसका, उसने इन आंखों में सहरा देख लिया है। उसने मुझे दरअसल कभी चाहा ही नहीं था, उसने मुझे दरअसल कभी चाहा ही नहीं था, खुद को देकर ये भी धोखा देख लिया है। उससे मिलते वक्त रोना कुछ फितरी था, उससे बिछड़ जाने का नतीजा देख लिया है। रुख्सत करने के आदाब निभाने ही थे, बंद आंखों से उसको जाता देख लिया है। शायद उसने मुझको तन्हा देख लिया है, दुख ने मेरे घर का रास्ता देख लिया है।

0: रेडियो पाकिस्तान टोरंटो सीएमआर 101.3 एफएम स्टूडियोज में रब्ते के नंबर 416-593-0000। हर शख्स एक शिकायत ये करता है कि अपनों ने जो है वो धोखा दिया और गैरों से क्या शिकायत करें। आप क्या इस हवाले से कह सकते हैं, गैर भी उतना ही कुछ करते हैं या अपने करते हैं। वैसे कहते हैं अपना होता है तो वो छाँव में मारता है, लेकिन आजकल में खल इसके थोड़ा सा उलट हो गया। 7:30 हमारे स्टूडियोज की घड़ियों के वक्त लिए चलेंगे आपको कनेडियन शेड लाइन की तरफ। शॉप के लिए पेश करते हैं मानी
1: न्यूज के लिए मैदान दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट। फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861 647-295-7861।
2: गुड इवनिंग, यू आर लिसनिंग टू रेडियो पाकिस्तान टोरंटो। दिस इज मीवानी विद लोकल अपडेट्स। A man who caused a car crash that killed three siblings last year has been sentenced to 8 years in prison minus the time he has already served. Toronto Fire Chief Jim Jessop said crews are working on putting out the alarm fire at 11 Thorncliffe Park Drive, which was the site of weeks-long fire that displaced hundreds of residents in 2025. 4 Canadians are confirmed to be on board a cruise ship on Atlantic Ocean where the suspect outbreak of the rare hantavirus has killed 3 passengers and left 3 other people seriously ill. A Toronto woman who says she is desperate to die has filed an emergency motion with the Ontario Superior Court of Justice to receive a medical-assisted death for a sole underlying condition of a mental illness. Police in Durham region are investigating after 3 homes were damaged in what authorities described as an arson that took place in Pickering early Sunday morning. The federal government said Monday it will put $1.5 billion towards tariff relief in response to the United States expanding the range and the depth of its metal tariffs. Alberta's Paris movement have reached new milestone as organizers delivered what they say are more than 301,000 signatures calling for provincial voting on leaving Canada. 36% of Canadian restaurants operating at a loss or breaking even. The Ford government is introducing legislation cracking down on drug use on public transit while also targeting illegal drug production. Toronto is escalating its fight against negligent landlords as Toronto Mayor Olivia Chow says long overdue repair, pest control and safety work are finally underway at 500 Dawes Road, one of the city's most notorious neglected rental buildings. Stay tuned on Radio Pakistan Toronto for more such updates. Good night.
0: Canadian News headlines aapke liye Vani pesh kar rahi thi. Aap sun rahe hain Radio Pakistan Toronto CMR 101.3 FM. PSL का फाइनल पेशावर जलमी ने हैदराबाद किंग्समैन को 5 विकेट से हरा कर जीत लिया। दूसरी मरतबा जलमी जो है वो चैंपियन बनी है। 9 साल के बाद ये टाइटल जीता है। 130 रन का हदफ दिया था 16 ओवर की दूसरी गेंद पर 5 विकेट पर पेशावर जलमी ने ये नुकसान जो है विकेट स्कोर पूरा कर लिया। और पहली विकेट 6 रन पर गिर गई थी, मोहम्मद हारिस 6 रन बनाकर आउट हुए। टीम की दूसरी विकेट 7 पर गिरी, बाबर आजम 0 पर आउट हुए और मेखल शायद पहली दफ़ा इस सीरीज़ में 0 पर आउट हुए हैं। और तीसरी विकेट 33, चौथी 40 पे गिरी, कौशल मेंडिस 9 और माइकल 4 रन बनाकर जो है वो आउट हुए माइकल ब्रेसवेल। अच्छा, 5 विकेट पे एरन हार्डी और अब्दुल समद ने जिम्मेदारा बैटिंग की, 85 रन की पार्टनरशिप बनाई और फिर तकरीबन वो आखिर में बाउंड्री पर आउट हुए, अगर ना शायद वो छक्का होता तो उस वक्त ही मैच खत्म हो जाता। एरन हार्डी ने प्रेशर में 36 बॉल्स पे अपनी 50 मुकम्मल की, 56 रन बनाकर नॉट आउट रहे। अब्दुल समद ने 48 रन बनाए। फरहान यूसुफ ने विनिंग शॉट लगाया और 9 साल बाद अपनी टीम को PSL जितवाया। मोहम्मद अली ने 3, आकिफ जावेद और हनैन शाह ने 1-1 विकेट हासिल की। और पेशावर जलमी ने टॉस जीतकर हैदराबाद किंग्स को पहले बैटिंग की दावत दी थी। शुरू बहुत अच्छा था उनका, पहले 6 ओवर में शायद 70 से ज़्यादा स्कोर उन्होंने कर लिया था, लेकिन फिर 2 रन आउट हो गए उनके और फिर शायद 5-7 रन के अंदर ही 4 जब इनकी विकेटें गिरी हैं उसके बाद वो कुछ संभल ही नहीं पाए। और मैक्सवेल 0 पर पहली बॉल पर आउट हो गए। साइम एयूब 54 रन उन्होंने बनाए। मा सदाकत 11, मार्नस लेबिशन कप्तान 20 रन बनाकर आउट हुए। उस्मान खान ने 8 रन बनाए और 72 पर चौथे खिलाड़ी इरफान न्याजी थे, सिर्फ 1 रन बना के आउट हुए। मैक्सवेल भी कोई रन नहीं बना सके, वो भी 72 पर आउट हो गए। कुशाल परेरा जो है वो भी 1 रन बनाकर जो है रन आउट हो गए। इस तरह 73 पर उनके 6 खिलाड़ी आउट हो गए थे, उसके बाद वो संभल ही नहीं पाए। हार्डी को मैन ऑफ द मैच करार दिया गया, उन्होंने 50 बनाई और 4 विकेट भी लिए। उन्होंने सुफियान मुकीम को टूर्नामेंट का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। बेस्ट बैटर बाबर आजम, बेस्ट बॉलर सुफियान मुकीम, बेस्ट ऑलराउंडर शादाब खान को दिया गया। बड़े करोड़ों की तादाद करोड़ों की रकम जो है इनको दी गई। बहुत ज़बरदस्त इम्प्रेसिव जो है वो इनकी क्लोजिंग सेरेमनी थी, बहुत सी फायरवर्क्स भी था और बहुत डिफरेंट किस्म का एक बॉल के नीचे वो खातून जो हैं वो लेकर आईं ट्रॉफी, बड़ा ज़बरदस्त जो है वो, और 32,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद थे और बहुत ज़बरदस्त सी PSL बड़ा कामयाबी से, गो के आखिरी 2-3 मैचों में ही शायद शायकीन आए थे लेकिन बहुत ज़बरदस्त जो है आखिरी मैचेस जो है ज़बरदस्त रहे और पेशावर ज़ल्मी एक बार फिर चैंपियन बनी है। लेट्स सी अब आगे। अच्छा, उसके फ़ौरन बाद ही 2 प्लेयर्स ऐसे थे, बाकी पूरी टीम बांग्लादेश जा चुकी थी टेस्ट सीरीज़ में, वहाँ 2 टेस्ट खेलने बांग्लादेश के साथ, और फिर 2 प्लेयर्स हमारे जो हैं वो खुर्रम शहज़ाद और बाबर आजम जो है वो भी बांग्लादेश चले गए हैं और अब 8 तारीख को पाकिस्तान बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट होगा। बहुत लोगों ने तनकीद भी की बाबर आजम पे, शायद अभी भी कुछ तनकीद कर रहे हैं लेकिन लगता है ऐसे ही है कि शायद बाबर आजम ने अपनी फॉर्म जो है वापस जो है वो आ गई है, और क्लास कहते हैं परमानेंट होती है, फॉर्म जो है वो टेम्प्रेरी होती है, क्लास बाबर आजम की ऐसी है कि शायद वो बहुत परमानेंट है। 416-593-0003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM। कमर्शियल ब्रेक लेंगे, प्रोग्राम में वापस आते हैं, स्टे ट्यून। याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ते कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।

0: करने 4372643175 इट्स 4372643175
1: इफ यू आर इन्वॉल्वड इन अ कार एक्सीडेंट और अ स्लिप एंड फॉल यू कैन स्पीक टू अ लॉयर डायरेक्टली कॉल मोहम्मद आलम बैरिस्टर एट लॉ एंड पर्सनल इंजरी लॉयर एट आलम लॉ ऑफिस नो फी अनलेस ही विंस योर केस फॉर फ्री एडवाइस कॉल 416-625-2636 दैट्स 416-625-2636
2: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
0: 416-904-2046 or 416-662-7861.
3: अपने मकान की next month closing है. कुछ सोचा है TV और appliances कहाँ से लेने हैं?
4: हाँ, Brampton TV and appliances जहाँ special sale चल रही है. TV, fridge, washer dryer. किचन रेंज और माइक्रोवेव सारा कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीजनेबल प्राइस पे.
3: सेल तो अब चल रही है पर हमें चाहिए नेक्स्ट मंथ.
4: आज के रेट हम लॉक भी करवा सकते हैं.
3: दैट्स वंडरफुल.
4: वहाँ से सेल फोन और इंडिया भेजने के लिए 220 वोल्ट का सारा सामान भी मिल जाएगा.
3: ब्रैम्पटन में ये कहाँ पे है?
4: ऑन बवे जस्ट वेस्ट ऑफ मैक्लॉगलिन. टेलीफोन 905-450-2828 और विजिट brampton appliances.ca.
0: चायखाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन जहां आपको मिलेगा असली पाकिस्तानी स्टाइल चाइनीज फूड. पीसी लाहौर के शेफ जिन्हें 14 साल से ज्यादा अरसे का तजर्बा है. रिचे प्लाजा में फूड लवर्स के लिए पाकिस्तानी चाइनीज खानों के लिए बेहतरीन इंतखाब. नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेट मसाला एट ऑल. हर चीज मिलेगी आपको फ्रेश और प्राइसेस इंतहाई रीजनेबल. चायखाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन 3920 इग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट यूनिट 30 रिचे प्लाजा मिसिसागा. For booking information, call 905-514-7877. Wohi zaika, wohi lazzat aur wohi mehmandari. Chai khana, Pakistani Chinese cuisine.
5: Lisa ki yaad nahi aayi tujhe, Jassi. Jassi ko chhodiye, kyunki Lisa's Cosmetics line hai Spring Warehouse Sale khas aapke liye. Perfume, skin care, makeup, hair care, designer sunglasses, chocolates, aur bhi bahut kuch with mega savings up to 80% off. Durandar deals on all your favorite world famous brands jaise Tom Ford, Versace, Armani, Azzaro and more. Aapko aana hai 135 Commerce Valley Drive, East Markham, Highway 404 or 407 ke behad kareeb and close to 401. Sale chalegi April 18th se May 10th tak, perfect for Mother's Day gifting. To zyada swag at kam price sirf Lisa's Warehouse Sale par. Visit lisascosmetics.com.
6: The team of two, just for you.
7: Just for you, bringing you world's largest Eid festival from May 22nd till May 26th, from 1 p.m. till midnight at Maple Banquet Hall, Mississauga.
8: Fashion show, food, music, variety of stalls, free admission and parking. Call Shella at 647-273-2393.
7: Log on to eventsbyteamoftwo.com.
9: जनाब इवेंट बाई टीम ऑफ टू डॉट कॉम पर जाकर इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं. 5 days वर्ल्ड लार्जेस्ट ईद उल अजहा फेस्टिवल होने जा रहा है. 26th एनुअल फेस्टिवल है जिसमें एग्जीबिशन, प्रमोशन, सेल्स आपके लिए. आप अभी भी स्टॉल बुक करा सकते हैं 647-273-2393 पर रब्ता कर लीजिए. 22, 23, 24, 25 और 26 मई को मैपल बैंकुट हॉल 1325 एग्लिंटन एवेन्यू ईस्ट मिसागा में. एज यूजुअल फ्री एंट्री है, फ्री पार्किंग है, बिजनेस एक्सपो भी होगा, वैरायटी ऑफ स्टॉल्स होंगे, शॉपिंग, मेहंदी, फूड, फैमिली एंटरटेनमेंट है. आप किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन स्टॉल बुकिंग के लिए शैला जाफरी साहब से रब्ता करें 647-273-2393. हमारे साथ मौजूद हैं, खुश आमदीद कहें शैला साहब. अस्सलाम वालेकुम.
10: वालेकुम अस्सलाम अर्शद एंड रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के सुनने वालों को. अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू का बहुत सारा सलाम और बहुत सारा प्यार, क्योंकि आपके मैसेजेस जो आप देते हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो के थ्रू उसको सुनकर जो लोग अटेंड करते हैं, मैं एक दफा फिर रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आके हमें जरूर बताएं कि हम रेडियो पाकिस्तान टोरंटो से ये खबर सुन के यहाँ पहुंचे. हमें अच्छा लगेगा और हम ऑफकोर्स और ज्यादा प्यार और मोहब्बत बढ़ेगा हमारे आपके लिसनर्स और हमारे दरमियान. तो बिल्कुल आपने सही सारी इन्फॉर्मेशन दे दी माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. तैयारियां जारी हैं और हर दिन कोई ना कोई अट्रैक्शन और कोई ना कोई एक्टिविटी रखी गई है ताकि हर रोज आने वालों को भी दिलचस्पी का शॉपिंग के साथ साथ एंटरटेनमेंट भी हो, रोजाना ये होगा, पूरे 5 दिन कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट चलती रहेगी, सेलिब्रेशन रहेगी। वो जब हमारा इवेंट करीब आएगा तो हम आप सबको बताएंगे कि वो क्या किस दिन क्या हो रहा है, ताकि आप रोज भी आ सकें और जो आपको ज्यादा पसंद है उस दिन जरूर आने की कोशिश करें। मेपल बैंकवेट हॉल मिसिसागा में 22 मई से शुरू होगा और रुकता नहीं है, इवेंट बाय टीम ऑफ टू चलता रहता है जब तक के चांद रात नहीं आती। तो हम लोग इसको 26 तारीख तक जारी रखेंगे। बहुत अच्छे पैकेजेस बनाए गए हैं वेंडर्स के लिए, क्योंकि अब शादी ब्याह का भी सीजन है, पार्टीज का सीजन है, छुट्टियों का सीजन आ रहा है, तो तमाम तैयारी आपने मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में आके करनी है। हर तरह की चीजें वहां मिलेंगी और हमेशा की तरह मैं इसको रिपीट करती हूँ बार बार, ज्वेलरी का सबसे अच्छा, सबसे अपडेटेड और सबसे बड़ा फेस्टिवल मेपल बैंक्वेट हॉल में ये एग्जीबिशन सजाया जाता है। फूड हलाल फूड फेस्टिवल भी होगा वहां पर। इसके अलावा ऑफ कोर्स तमाम डिजाइनर्स कोशिश करते हैं कि शोकेस करें, तो सारे डिजाइन वहां शोकेस किए जाएंगे और बहुत से नए स्टाइल भी, नए डिजाइनर्स भी हमारे साथ शामिल हुए हैं। और इसके अलावा छोटे बिजनेसेस, होम बेस्ड बिजनेसेस या बुटीक जिनकी है, जिनके बड़े बिजनेसेस हैं, वो सब लोग हमारे साथ हिस्सा ले रहे हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है बिजनेस कम्युनिटी से कि जो भी आपका बिजनेस है आप जरूर वहां लाएं, प्रमोशन एग्जीबिशन एंड सेल करें और इवेंट बाय टीम ऑफ टू पे जरूर जाके विजिट करें और आपको पता चलेगा कि आपको भी हम प्रमोट करते हैं और आपकी पोस्ट भी बनाएंगे, उसको भी प्रमोशन मिलेगी कि आपके बिजनेस को कि आप हमारे साथ मौजूद हैं। और दूसरे आप हमारे वेंडर्स को देख सकते हैं हमारी वेबसाइट पे जाके, उनको टैग करें, उनको वहां से लिंक, हमारे वेबसाइट पे सबके लिंक हैं। तो इंशाल्लाह ताला बहुत खूबसूरत ईद उल अधा वर्ल्ड लार्जेस्ट 5 डेज का फेस्टिवल आप लोगों के लिए सजाया जा रहा है, लिहाजा आपने अपने फ्रेंड्स और अपने फैमिली को भी रेकमेंड करना है यहाँ आने के लिए और यहाँ एग्जीबिशन एंड सेल करने के लिए। अरशद, आपका शुक्रिया फिर से अदा करती हूँ मैं कि आप इसकी प्रमोशन में हमारे साथ बहुत हिस्सा लेते हैं। थैंक यू सो मच।
9: थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे फिर बात करते हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।
10: इंशाल्लाह,
9: अल्लाह हाफिज। नंबर नोट करें 6472732393। 22, 23, 24, 25 और 26 मई को मेपल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में ये प्रोग्राम होने जा रहा है।
11: आप सुन रहे हैं रेडियो पाकिस्तान टोरंटो FM 101.3 स्टूडियोज में, रابطے کے نمبر 416-593-0003۔ ٹورانٹو اور اس کے گرد و نواح میں مغرب کی آزان کا وقت ہو گیا ہے۔ دوسرے

0: बार्बिक्यू टुनाइट की दूसरी लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 200 से ज्यादा लोगों की गुंजाइश, बड़ी पार्टीज भी आप अरेंज कर सकते हैं। बार्बिक्यू आइटम्स, बिहारी कबाब, सीख कबाब, कड़ाही, बिरयानी, ताजा नान और बेशुमार डिशेज, जायका वही और खूबसूरत सेकंड लोकेशन। पार्टीज की बुकिंग या मालूमात के लिए कॉल कीजिए 9052829868। बार्बिक्यू टुनाइट की सेकंड लोकेशन 5165 डिक्सी रोड, डिक्सी और एमको का इंटरसेक्शन मिसिसागा में। 9052829868।
1: SSR Auto Service, 921 Pape Avenue, Southeast Corner of Pape and Martimore. हर किस्म की गाड़ियों की जर्नल और इलेक्ट्रिकल रिपेयर के लिए तशरीफ लाइए। ऑयल चेंज, टायर चेंज, लाइट रिपेयर, ब्रेक्स, सस्पेंशन, मफलर सर्विस, इंजन सर्विसेज, इसके अलावा सेफ्टी इंस्पेक्शन, 3D लेजर अलाइनमेंट के साथ साथ न्यू और यूज टायर्स भी अवेलेबल हैं। ड्राइव थ्रू मेंटेनेंस और नमाज की सहूलत भी। मियां अशरफ साहब या नबील अशरफ साहब से राब्ता कीजिए 416-466-8782। टोरंटो में 23 साल से 24/7 खुलने वाली वाहिद शॉप SSR ऑटो सर्विस 921 पे पे।
2: सिंस 1993 MWC फूड बैंक्स हैव प्रोवाइडेड इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज विद नॉन पेरिशेबल फूड, हलाल मीट एंड एसेंशियल हाउसहोल्ड आइटम्स। ओवर 10,000 फैमिलीज अक्रॉस कनाडा रिलाय ऑन MWC फूड बैंक्स टू सप्लीमेंट देयर फूड रिक्वायरमेंट्स। वी सर्व इन स्कारबोरो, मिसिसागा and in First Nations communities. Charity starts at home. Please donate generously to Muslim Welfare Canada. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
3: Apna Hum Safar Global Travel and Tours.
4: Travel and Tours, Mississauga में कम्युनिटी को दुनिया भर के लिए सस्ते तरीन टिकट ऑफर कर रहे हैं। IATA अप्रूव एजेंट तमाम मेजर एयरलाइंस से डील करते हैं। PIA के कंसोलिडेटर हैं और PIA टिकट्स के स्पेशल लो फेयर अवेलेबल हैं। बुक इन एडवांस एंड गेट स्पेशल डिस्काउंट। उम्रा और ज़ियारत की स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 9052753555
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में। शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंड फ्री फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777। आज की रियल स्टेट मार्केट में रियल स्टेट प्रोफेशनल ही आपकी मदद कर सकते हैं। वसीउद्दीन पिछले 14 सालों से सैकड़ों मुतमईन क्लाइंट्स को घरों की ट्रांजैक्शन और इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर चुके हैं। इस बदलती रियल स्टेट मार्केट में आप अगर दुरुस्त और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट या रेजिडेंशियल बाइंग सेलिंग करना चाहते हैं तो तजर्बाकार रियल्टर वसीउद्दीन से राब्ता करें 416-566-3642। घर तो सभी ले देंगे, अच्छा घर लेने के लिए कॉल रियल्टर वसीउद्दीन 416-566-3642।
5: Canadian Society of Peace and Relief proudly presents Ali Zafar for Spiritual Sufi and Qawwali Night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
1: 416-904-2046 or 416-662-7861.
6: If you are involved in a car accident or a slip and fall, you can speak to a lawyer directly. Call Muhammad Alam, barrister at law and personal injury lawyer at Alam Law Office. No fee unless he wins your case. For free advice, call 416-625-2636. That's 416-625-2636.
7: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
8: I'm afraid we're going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: Help is just one call away. No need to file bankruptcy. We can save your assets, stop collection calls, and make one monthly interest-free installment for maximum debt relief. Call Aisha Munawwar, Debt Solutions Specialist and Insolvency Counselor with Rumanek & Company Limited, a company with licensed insolvency trustee. Call Aisha Munawwar at 416-428-2165. That's 416-428-2165.
1: आप प्रिंटिंग करवाएं सबसे बेहतरीन रेट्स पर, सिर्फ $229 में हासिल करें दो रोल अप बैनर्स और सिर्फ $399 में 10,000 हाफ पेज फ्लायर्स। चाहिए ब्रांडिंग का मुकम्मल हल तो ले आएं कस्टम टेंट कनोपी सिर्फ $899 में और बिजनेस की जबरदस्त प्रमोशन के लिए 10,000 डोर हैंगर सिर्फ $999 में। मौका हाथ से ना जाने दें, अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6777।

0: राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशन इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट राजधानी स्वीट्स.ca।

Assalamualaikum, this is Naeem Tariq Yani from The Art of Investing. Thank you so very much. आपका लास्ट वीक का प्रोग्राम पसंद करने का और बहुत ज़्यादा डिफरेंस जो है वो अब मेड हो रहा है बेस्ड ऑन जो मार्केट अब आगे जा रही है. दो तीन महीने पहले या सॉरी दो तीन हफ्ते पहले हमने जो है बहुत ज़्यादा डिस्कस किया था बेस्ड ऑन जो ग्लोबल इकोनॉमी या ग्लोबल पॉलिटिक्स जो इस वक्त चल रही है उसकी वजह से टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज एंड न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में काफ़ी जो है वो हमें डिफरेंस देखने में आया था. इनफैक्ट अब जब चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई हैं चीज़ें जो है वो इट्स गेटिंग इन टू द प्रॉपर डायरेक्शन नाउ वी आर सीइंग दैट स्टॉक मार्केट इज गेटिंग ऑन द स्टेबल साइड एंड दैट्स एग्जैक्टली वॉट वी आर गोइंग टू डिस्कस इट टुडे. इंटरेस्ट रेट कैनेडा में भी और यूएस में भी जो है वो स्टेबल रहा है और उसकी वजह से जो रियल इस्टेट मार्केट है दैट इज गेटिंग इन टू अवर नेक्स्ट मोमेंटम. और हमने रियल एस्टेट मार्केट की जो है वो लास्ट वीक भी डिस्कस किया था हमने दैट फॉर ऑल द न्यू डेवलपमेंट यू आर एग्जेम्प्ट फॉर HST इफ यू बाय इट फ्रॉम और इफ यू बुक इट फ्रॉम अप्रैल 1 अंटिल मार्च 31 नेक्स्ट ईयर. सो ये सारी जो डेवलपमेंट हुई हैं ओवरऑल दैट इज फॉर टू बेटरमेंट ऑफ द इकोनॉमी. सो लेट्स स्टार्ट आवर प्रोग्राम. आज जो है हम डिस्कस करने वाले हैं ओवरऑल ही मार्केट ट्रेंड मार्केट स्ट्रक्चर प्राइस एक्शन क्या हुआ. सो नैसडैक वॉज अप और नैसडैक रहा 24,800 पर. बिग टेक अर्निंग्स इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट और मेटा दे आर बूमिंग राइट नाउ. माइक्रोसॉफ्ट ने कुछ नई इनोवेशंस की हैं अभी. एक इनोवेशन इंशाल्लाह मैं जो है वो आपके साथ अगले वीक भी शेयर करूंगा. दे हैव स्टार्ट मेकिंग अप अ ग्लास विच इज कॉल्ड माइक्रोसॉफ्ट सिलिकॉन. और इंस्टा आपका डेटा जो है जितना वो उस ग्लास में अब स्टोर होगा इंस्टेड ऑफ USB और instead of जो है वो हार्ड ड्राइव में. सो दे हैव मेड इट नॉट मेड इट टू पब्लिक एट येट बट दिस इज कमिंग इन एंड दैट वुड बी अ मेजर चेंज फॉर माइक्रोसॉफ्ट. S&P 500 दे हैव हिटिंग रिकॉर्ड्स बट स्ट्रगलिंग विद द बैंकिंग वीकनेसेस. ये हमें पता है क्योंकि इस वक्त जो है मार्केट US में भी जो स्टडी आपके पास इंटरेस्ट रेट रहा जिसकी वजह से बैंक थोड़े से जो है वो वीकर हो रहे हैं US में. कैनेडा का बैंकिंग सिस्टम जो है वो थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है विच इज वाई वी आर वेरी efficient in that way. TSX jo hai 33,900 raha which is lower and weighed down by sticky inflation data and that's exactly what we have seen. Inflation is jo hai wo bahut zyada different chal raha hai Canada mein and along with jo prices hai grocery or food prices hai they are kind of jacking up. So that's what we have seen. Crude is jo hai is week 107 pe aa gaya right और 7% upar aaya Wednesday ko as the Strait of Hormuz remains blocked. Ab wapas Strait of Hormuz block ho gayi hai which is why क्रूड इज कमिंग अप. अच्छा जी जो हमने इंट्रो में डिस्कस किया कि मार्केट इज गेटिंग स्टेबलाइज एंड विद सेलेक्टिव स्ट्रेंथ इमर्जिंग. मार्केट कोई अब पैनिक मोड में नहीं रही है कूल डाउन हो रही है और अब जो है वो स्टेबलाइजेशन और इवेल्युएशन मोड में मार्केट चल रही है. US मार्केट का ओवरऑल क्या रहा जो मार्केट बिहेवियर था दैट्स मेजर इंडेसेस राइट जो मूव साइडवेज ओवरऑल और स्मॉल गेन्स लॉसेज जो है वो देखने में आए कंसोलिडेशन फेज आफ्टर रिसेंट वोलेटिलिटी. और यही पिछले 4-5 वीक्स में मार्केट बहुत वोलेटाइल थी एंड दैट्स रीजन नाउ वी आर सीइंग इन अ डिफरेंट फेज. मैक्रो ड्राइवर्स जो US मार्केट के लिए रहे वो ऑयल स्टेबलाइजेशन है. इट्स बीन सेटल्ड आफ्टर प्रायर स्पाइक्स और ऑयल जो है वो स्टेबलाइज हो रहा है अभी भी. जो हमने जैसे जिक्र किया 107 बैरल था लास्ट वीक इट वॉज 94 बैरल एंड दैट्स हाउ वी आर सीइंग इट. सो एनर्जी प्राइस जो है वो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज और टोरंटो में बढ़ी है एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन. इन्फ्लेशन स्टिल इन फोकस US में इट्स नॉट एक्सेलरेटिंग बट स्टिल नॉट फॉलिंग फास्ट. इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशन जो थी वो वैसी रही जैसी है. वी आर नॉट आउट ऑफ इन्फ्लेशन रिस्क यार तो इन्फ्लेशन है US में और वहाँ का रिस्क जो है वो है भी वहाँ पर. इंटरेस्ट रेट अनसर्टेनिटी ये थी कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कट होगा कि नहीं होगा लेकिन आज जो इस वीक जो न्यूज आई है इसकी वजह से वो स्टेबल रहा है सेम रहा है जिसकी वजह से इन्वेस्टर रिमेन्स कॉशियस और इम्पैक्ट क्या हुआ है कि लिमिट्स अपसाइड इन द ग्रोथ स्टॉक. अच्छा जी इंडस्ट्रियल जो है वो कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ पे रही है राइट. रोटेटिंग इनटू रियल मनी सेक्टर इंडस्ट्रियल जो है वो वहां पे पैसा मूव हो रहा है वहां पे. कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी इकोनॉमिक आउटलुक और कंज्यूमर स्पेंडिंग एक्सपेक्टेशन क्योंकि आपकी बाइंग पावर होगी तो आप जो है वो स्पेंड करोगे एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इन द US मार्केट. अच्छा एनर्जी नो लॉन्गर लीडिंग टेक जो है वो उसने टेक ओवर कर लिया US में और ऑयल स्टेबलाइजेशन लेस अपसाइड. ये हमने लास्ट वीक भी डिस्कस किया था कि ऑयल की मार्केट जो है वो अगर स्टेबलाइज होती है तो
यूएस में वो इम्पैक्ट आता है उसकी नीचे जाने का, अगर ऑयल स्टेबलाइज होती है तो टोरंटो स्टॉक एक्सचेंज या एनर्जी सेक्टर टोरंटो में कनाडा में ऊपर जाता है, क्योंकि हम हमारे पास एनर्जी सेक्टर ज़्यादा स्ट्रांग है स्टॉक मार्केट के हवाले से। ओके जी, टेक्नोलॉजी स्टेबलाइजिंग, नो मेजर सेल ऑफ दिस वीक और रिकवरिंग आफ्टर प्रायर वोलेटिलिटी और टेक इज होल्डिंग ग्राउंड, आई मीन दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी हैव सीन माइक्रोसॉफ्ट और मेटा के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैपिटल फ्लो, पैसा कहाँ से कहाँ मूव हुआ, रोटेशन जो है वो इंडस्ट्रियल और स्टेबल टेक में रही और मार्केट इज स्टिल वेटिंग फॉर नेक्स्ट कैटलिस्ट कि नेक्स्ट जो है वो ट्रिगर क्या होगा और उसमें मार्केट मूव करेगी। अच्छा जी, यूएस सेगमेंट में जो बड़ा बड़ी चीज रही, एक तो फेड डिसीजन, फेडरल डिसीजन रहा कि जो इंटरेस्ट रेट हैं वो स्टडी रहेंगे 3.5 to 3.75%, नहीं मूव हो रहे वहां से। और जो अर्निंग हैवी वेट है इस वीक वो इंटेल रहा, उनकी मैसिव Q1 जो है वो रिपोर्ट आई है, और मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, अल्फाबेट, दीज स्टॉक्स आर कॉल्ड एज सेफ हेवन क्योंकि AI के बहुत ज्यादा काम होने की वजह से दे आर गेटिंग इन टू अ प्रॉपर टेक स्टॉक एंड दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इट। बैंकिंग क्रैक जो है वो रेयर आर पब्लिक डिवाइड विद इन द सेंट्रल बैंक, द अनसर्टिनिटी इज कॉजिंग ऑल सेल ऑफ द रीजनल US बैंक्स। बैंकिंग सेक्टर में कुछ डिफरेंस रहा US के मार्केट में, क्योंकि जो है वो अगेन बाइंग पावर के पॉइंट ऑफ व्यू से वी हैव सीन अ लॉट ऑफ चेंजेस ऑन दैट साइड। टोरंटो मार्केट को डिस्कस करते हैं, TSX जो है वो स्लाइटली मोर स्टेबल देन US जो हम देख रहे हैं, और इसकी जो ग्रोथ है वो स्टडी रही है, बट स्ट्रॉन्ग ग्रोथ नहीं रही है, लेकिन इट्स नॉर्मल, इट्स गेटिंग टुवर्ड्स दैट। की ड्राइवर्स कौन से रहे, अगेन ऑयल स्टेबलाइजेशन, ऑयल स्टेबलाइजेशन की वजह से एनर्जी सेक्टर ने लूज किया थोड़ा सा अपना जो है वो पॉइंट, लेकिन टेक TSX बिकम्स मोर बैलेंस क्योंकि हमारे यहाँ इतने ज्यादा जो है वो डायनामिक्स नहीं है जिस तरह US में है। सो वी आर हैविली रिलाय ऑन इधर ऑयल, वी आर हैविली रिलाय ऑन इधर एनर्जी इन ऑयल एंड हैविली रिलाय ऑन टेक, और जो भी हमारा इम्पैक्ट आता है वो US के पॉइंट ऑफ व्यू से आता है, विच इज वाई वी आर सींग इट। कमोडिटी बैलेंस, मेटल जो है स्टेबल रहा और मटेरियल सेक्टर दे आर एट द न्यूट्रल लेवल। डोमेस्टिक स्टेबिलिटी, इकोनॉमी जो इस वक्त चल रही है कैनेडा की, दे आर इन टू अ डिफरेंट शेप क्योंकि इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमी में काफ़ी इम्पैक्ट आता है एंड दैट्स वॉट उसकी वजह से आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो उस इम्पैक्ट से गुजरती है। अच्छा जी, क्या रहा कैनेडियन में, कैनेडियन ऑडियंस जो है वो जो इन्फ्लेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो इन्फ्लेशन जंप हुआ 2.4% अप फ्रॉम 1.8%। देर आर लॉट ऑफ ले ऑफ, प्रॉब्ली यू हैव हर्ड अबाउट, रॉजर्स ने अपने 10,000 जो है वो एम्प्लॉयज को उन्होंने अर्ली रिटायरमेंट देने का जो है वो ऑप्शन निकाला है, और मेजॉरिटी जो जिनको मैं जानता हूँ, जिनसे मैं बात कर रहा हूँ, दे प्रॉब्ली आर टेकिंग इट। दूसरा जो है वो डिफरेंट टेक सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा ले ऑफ हो रहे हैं, तो कैनेडियन मार्केट फ्रॉम जॉब परस्पेक्टिव और फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव इज नॉट दैट बिग राइट नाउ एंड वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ गैप्स इन द मार्केट। अच्छा जी, TSX में रोटेशन क्या रहा, विनर्स जो है वो एनर्जी रही, सनकोर, CNRL और मटेरियल्स में बैरिक गोल्ड रहा, ऑयल जो है 107 पे रहा और गोल्ड जो है वो नियरली स्टेइंग नियर रिकॉर्ड्स। कैनेडाज डर्ट्स एंड पाइप्स आर ओनली थिंग दैट कीपिंग द TSX इन द डीपर साइड। लूजर्स कौन रहे, टेलीकॉम और यूटिलिटीज, राइट, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी की वजह से दे आर लॉट ऑफ चेंजेस इन दैट पर्टिकुलर सेक्टर एंड दैट्स व्हाट वी हैव सीन। स्प्रिंग इकोनॉमिक अपडेट की क्या रही कि इस वक्त ऑटवा रिसेंटली टेबल इट्स अपडेट शोइंग अ डेफिसिट ऑफ $66.9 बिलियन और ये फिस्कल एक्सपेंशन जो है ये हाई एनर्जी कॉस्ट पे एंड इज पुटिंग कैनेडियन डॉलर ऑन प्रेशर। सो दैट्स एग्जैक्टली व्हाट वी आर सीइंग इस वक्त। जो ट्रेड चल रही है US वर्सेस कनाडा इज 0.73 और ये जो है वो अब प्रेशर आ रहा है कैनेडियन डॉलर पे। अगर हम US टू कैनेडियन मार्केट का कंपैरिजन करें इस वक्त, सो वोलेटिलिटी में मार्केट फेस कंसोलिडेशन US की है और स्टेबलाइजेशन जो है TSX की है। वोलेटिलिटी मॉडरेट वर्सेस लोअर, लीडरशिप एक वीक है, रोटेटिंग है, लीडरशिप चेंज हो रही है, सेक्टर चेंज हो रहे हैं वहां पे। कैनेडा में बैलेंस हो रहा है, राइट, क्योंकि एक तरफ हमने देखा कि बहुत ज्यादा एनर्जी सेक्टर ने लीड ले रहा था एंड देन टेक वॉज गेटिंग डाउन बट नाउ इट्स बैलेंसिंग इट आउट। की ड्राइवर्स क्या रहे, US में इन्फ्लेशन और रेट्स रहे, यहाँ पे ऑयल एंड स्टेबिलिटी रही की ड्राइवर्स। स्ट्रॉन्ग सेक्टर इंडस्ट्रियल वर्सेस इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल्स और वीक सेक्टर एनर्जी एंड एनर्जी ऑन द बोथ साइड।
अच्छा जी, बिफोर वी गो आई वुड लाइक टू शो यू गोल्ड प्राइस, जो कि हम हर वीक देखते हैं। इस वक्त आज की जो गोल्ड शेयर हैं, मैं आपको दिखाता हूँ ये, और ये इस वक्त की प्राइस है, अगर ये लोड हो जाए, 423.68। ये थोड़ा सा नीचे आया है, और इसको आप बिल्कुल जो है वो देखें, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है गोल्ड की प्राइस से। अगर गोल्ड की प्राइस बढ़ेगी सो यू विल सी इंक्रीज इन दिस चार्ट एज वेल। ETF हम देखते हैं, आई शेयर का जो है ETF, एक सेकेंड, हाँ जी, ETF हम देखते हैं यहाँ पे, और ETF की प्राइस इस वक्त है 53.42। ये इसी रेंज में फ्रॉम 49 टिल 55, दैट इज मूविंग मूविंग हियर एंड देयर, लेकिन इट्स गुड इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इट विल गिव यू रिटर्न इन द लॉन्ग रन। इसको आप शॉर्ट टर्म के लिए नहीं यूज करें, इसको लॉन्ग टर्म के लिए यूज करें, एंड दैट्स वेयर यू विल गेट मेजर रिटर्न आउट ऑफ इट। So this was it, folks. Thank you so very much for watching The Art of Investing with Naeem Kiani. Inshallah, next week we'll see you with the different market. Hopefully, सारी चीजें सही होना शुरू हो जाएं. और जो मैंने शुरू में Microsoft की जो नई product के बारे में जिक्र किया था, उसको जरूर उसके ऊपर research करें. It's called Microsoft.

0: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए। इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक। ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंकुट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777। इट्स 416-710-6677।
1: A harsh but true reality is that clean drinking water is inaccessible to many people living in third world countries. With the support of our donors, Muslim Welfare Canada has been successful in providing clean water through the digging of water wells and the installation of hand pumps for people living in remote and desert regions. Donate a well for $2,500 or a hand pump for $800. Call 1-866-754-3111 or visit mwcanada.org.
2: Welcome to Icon Event Space, where every occasion becomes unforgettable. From weddings and corporate gatherings to birthdays, anniversaries, conferences, and cultural festivals, Icon is designed to host it all seamlessly. With room for up to 1,200 guests, our venue blends flexibility, sophistication, and scale, all tailored to your vision. Great location with ample free parking. Convenience is always part of the experience. Savor our premium catering featuring South Asian, continental, and a world of international flavors curated just for you. Call us today at 437-425-2500 or visit iconeventspace.com.
3: अगर आपको दुबई या मिडिल ईस्ट नुमा जेवरात की तलाश है तो आपको दूर जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं। आज ही हमारे
4: मिसिसागा रिजवे
3: के स्टोर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स। हमारे पास सोने के बेहतरीन कंगन, कड़े, झुमके, हार और सोने के सेट्स भी दस्तयाब हैं। शादी हो या मेहंदी या कोई भी फंक्शन, आपकी पसंद के तमाम जेवरात आपको हमारे स्टोर में मौजूद मिलेंगे। आज ही हमारे स्टोर पर तशरीफ लाइए, अल करम ज्वेलर्स, 3465 प्लैटिनम ड्राइव, यूनिट 99, मिसिसागा, या फिर कॉल करें 905-828-0009। अल करम ज्वेलर्स, फरमाइश आपकी, गारंटी हमारी।
5: राह बेकर्स एंड स्वीट्स 60 साल से आपके हसीन लम्हों में शामिल। खुशियों से भरे मीठे जायके, नफासत और क्वालिटी में सबसे बेहतर। खालिस अज्जा से तैयार करदा मिठाई, केक्स, बिस्किट्स एंड स्नैक्स, वही अथेंटिक जायका और क्वालिटी। पाकिस्तान से अब आपके शहर मिसिसागा में। कुछ मीठा, कुछ नमकीन, राहत बेकर्स। आज ही विजिट कीजिए 3920 Eglinton Avenue West, Unit 24, Mississauga. Call 905-820-1500 or visit rahatbakers.ca.
6: रोशन मुस्तकबिल और अपनों का साथ जन्नत से कम नहीं। आप भी कनाडा को अपना घर बना सकते हैं और अपनों को पास बुला सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड एंड रेगुलेटेड इमिग्रेशन कंसल्टेंट शहबाज अकबर के साथ। मास्टर ऑफ बिजनेस क्लास इमिग्रेशन, एक्सप्रेस एंट्री, स्किल क्लास इमिग्रेशन, रेफ्यूजी क्लेम्स एंड फैमिली स्पॉन्सरशिप्स। कॉल नाउ एट 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन सॉल्यूशंस कनाडा।
7: Thinking of buying, selling or investing in real estate, whether it be residential, commercial or pre-construction, Arshad Bhatti and his team of professionals can help. We have guaranteed allocations in high-rise and low-rise pre-construction projects in and around the GTA. Call Arshad Bhatti at 416-300-5600. That's 416-300-5600 or register at arshadbhatti.com.
8: If you are looking for a reliable, professional, and affordable travel agency in your town, then your search is over. Global Travel and Tours is your personal travel partner. Our dedicated staff always ready to make your trip hassle-free, memorable, and cost-effective. We will assist you with hotel reservations, the transportation, visa assistance, and travel insurance. Please give us a call right now at 1-877-275-3555.
9: Managing your own business can be a lot of work. A professional accountant always makes a difference.

0: It's imperative that your accountant keeps your finances simple, accurate, and confidential. Audited? Need help? That's why we chose Scans Accountants. They make you feel at ease knowing you and your business are in good hands. Scans Accountants, team of professionals.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: At Alam Law Firm, our tireless efforts in the pursuit of justice for our clients include an unwavering belief. Beyond the courtroom battles, we forge meaningful connections with our clients.
3: Supporting our local community is integral to the values we hold dear.
4: Every single client file we represent at Alam Law bears my personal touch, a commitment that I stand by.
5: For legal representation that will aggressively fight for your rights, contact Alam Law Firm today.

0: and let Talhavati serve you the best. 647-295-7861. Reconstruction projects, residential and commercial properties. Special packages for first-time home buyers. A member of dedicated real estate professional team, Talhavati. 647-295-7861. Then let Talhavati serve you the best.
1: तैयार हो जाएं इस बकरीद पर सबसे बड़े मेले के लिए इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग खाने फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए फ्री एंट्री फ्री पार्किंग वेंडर्स और स्पॉन्सर्स अभी कॉल करें 416-710-6777 इट्स 416-710-6677
2: The Law Professionals at TM Law providing professional services in the GTA in the areas of civil litigation, criminal defense, family matters and real estate Serving the community in English, Punjabi, Hindi, and Urdu. For more information, call Tahir Majid, Barrister and Solicitor at 647-838-4773 or you can visit tahirlaw.ca.

0: है ना कहीं के टुर गई।
1: फिलहाल तो नहीं आई।
0: फिर ठीक है,
1: पर यार सानू भी टाइम दे दिया कर।
0: दे दिंदे आ तेनू टाइम, चाह पिलानी पाऊगी।
1: चाचा जी दो स्पेशल चा।
0: आज स्पेशल चा मैं पे आ रहे हैं। खैर है,
1: स्पेशल बंदा जो आया मेरे को।
0: स्पेशल बंदा तो हले आना है। आज लेट नहीं होगी वैसे थोड़ा जा?
1: ऐ तो फिर थानू ही पता है।
0: मैं तिकबर आ गया। मैं क्या लाया लगता टूकी होनी जान तो पहले ही।
1: इन्ना टाइम सानू भी दे दिया करो।
0: यार तू मेरी घड़ी ला ले।
1: नहीं घड़ी नहीं चल।
0: गरम गरम चल।
1: ले भी आ गई।

0: इट वॉज अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस, बहुत ही अच्छी थी. इस गाने में बड़ी मुश्किल मुश्किल मींडे थी, बीच में जगह थी, वो चीज भी आपने अच्छी निभाई, और फिर जो उसमें वेस्टर्न बिट्स थे वो भी आपने बहुत अच्छी तरह से किया. देन ऑफ कोर्स टुडे यू आर आल्सो ऑन अनदर, लाइक यू नो, इन अनदर एवटार, यू आर अ वेरी, यू नो, फ्रॉम वेरी डिफरेंट फ्रॉम लास्ट टाइम, एंड beautiful, enjoyable performance. Thank you so much for it.
1: Thank
0: it was
1: so much,
0: wonderful. Thank you
1: so much.

0: 93.3 FM.
1: न्यूज के लिए मैं दामुतिया है टीम भट्टी रियल स्टेट. फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 6472957861 6472957861.
2: पेश खिदमत है आज की अहम खबरें. अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान ने जौहरी हथियार हासिल कर लिए तो न इसराइल और न ही मशरक वस्ता बचेगा. उन्होंने कहा कि ईरानी बहरिया के पास मशीन गन लगी छोटी कश्तियों के सिवा कुछ नहीं बचा. उधर ईरान का कहना है कि आबनाए हुर्मुज में कश्तियों पर अमरीकी हमले में 5 शहरी जाँ बहक हुए. पासदारा ने इनकलाब का कहना है कि ईरानी अफवाज ने मुत्तहदा अरब अमारात पर कोई हमला नहीं किया और किसी भी कार्रवाई का भरपूर जवाब दिया जाएगा. पासदारा ने इनकलाब का यह भी कहना था कि आबनाए हुर्मुज से गुजरने के लिए ईरानी तजवीज करदा रास्ता मुंतखब न करने वाले जहाजों के खिलाफ फैसलाकुन कार्रवाई की जाएगी. अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो ने कहा है कि ईरान के खिलाफ जंग का जारहाना मरहला मुकम्मल हो चुका है और तेहरान को मुजाकरात की मेज पर लौटना चाहिए. उधर अमरीकी वजीर जंग पीट हेक्सेट ने कहा है कि अमरीका लड़ाई नहीं चाहता लेकिन ईरान को आबनाए हुर्मुज बंद करने की किसी सूरत में इजाजत नहीं देगा. ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराकची मंगल को चीन जाएंगे. सऊदी अरब का कहना है कि खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए पाकिस्तान की सालिसी और सिफारती कोशिशों की हिमायत करते हैं. उनका कहना था कि पाकिस्तान की कोशिशों के बायस ईरान और अमरीका के दरमियान बातचीत में कुछ पेशरफ्त देखने में आ रही है. वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुत्तहदा अरब अमारात में होने वाले मिज़ाइल और ड्रोन हमलों की शदीद मजम्मत. भारतीय रियासत मगरबी बंगाल में इंतखाबी शिकस्त के बाद ममता बनर्जी ने वज़ीर आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी होने से इनकार कर दिया. इमरान खान की बहन अलीमा खान का कहना है कि इमरान खान का इलाज फैमिली की मौजूदगी में करवाया जाए. और आज रात से गैस की कीमत में 10 सेंट फी लीटर इजाफा हो जाने का इम्कान. इन खबरों की तफसील आप सुन सकेंगे रात 8 बजे.
3: खास खास खबरें जुबैर दीन साहब आपके लिए पेश किया करते हैं. स्टूडियोज में रबते के नंबर 416-593-0003. गैलेक्सी इंटरनेट एक्सचेंज का आज का रेट है 203.50 रुपये. डेबिट और ईमेल ट्रांसफर के थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. पाकिस्तान में हर बैंक में आप ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. अगर अकाउंट नहीं है कैश बैंक ड्राफ्ट भी हासिल कर सकते हैं. घर बैठे 24 घंटे ऑनलाइन मनी ट्रांसफर कीजिए. gondarbrothers.com पे आप लॉग इन हो जाइए. आज का रेट है 203.50. कॉल कर लीजिए 905-306-0000. मंगल के दिन ऑल द सॉल्यूशंस में सिद्दीक साहब हमारे साथ हुआ करते हैं. राइट विंडो फोर्स से सवानु साहब से आपकी मुलाकात कराएंगे. ग्लोबल एडवाइजर इंक से नागपाल साहब आज के दिन हमारे साथ होते हैं. कनेडियन इंग्लिश हेडलाइन 7:30 बजे. तफसीली खबरें 8 बजे. लाइव कॉल्स आपके लेंगे तकरीबन 8:30 बजे के करीब. और भी कुछ मौजूद होंगे हमारी और आपकी बातें, लेकिन ये सब कुछ सुनने के लिए आपको हमारे साथ रहना है अब से 9 बजे तक. मैं आपका होस्ट दोस्त अरशद भट्टी हूँ. मेरे अच्छे बैर सामिन, शहद की मक्खियाँ फूलों का जो रस जमा करती हैं वो सब का सब शहद नहीं होता. इसका सिर्फ 1/3 हिस्सा शहद बनता है. शहद की मक्खियों को 1 पाउंड शहद के लिए 20 लाख फूलों का रस हासिल करना पड़ता है. इसलिए मक्खियाँ तकरीबन 30 लाख उड़ानें भरती हैं और इस दौरान वो मजमूई तौर पर 50,000 मील की मसाफत तय करती हैं. रस जब मतलूबा मकदार में जमा हो जाता है तो फिर उसके बाद शहद साजी का अमल शुरू होता है. शहद अपने इब्तदाई मराहल में पानी की तरह रकीक होता है, पतला होता है. शहद तैयार करने वाली मक्खियाँ अपने परों को पंखों की तरह इस्तेमाल करके फाजल पानी को भाप की तरह उड़ा देती हैं. जब जब पानी उड़ जाता है तो उसके बाद एक मीठा सा सयाल बाकी रह जाता है जिसको मक्खियाँ चूस लेती हैं. मक्खियों के मुंह में ऐसे गदूद होते हैं जो अपने अमल से इस मीठे सयाल मादा को शहद में तब्दील कर देते हैं. अब मक्खियाँ इस तैयार शहद को छत्ते के मखसूस तौर पर बने हुए सुराखों में भर देती हैं. ये सुराख दूसरी मक्खियाँ मोम के जरिए हद दर्जा कारगरी के साथ बनाती हैं. मक्खियाँ शहद को इन सुराखों में भरकर इसको डब्बा बंद गिज़ा की तरह एहतमाम के साथ महफूज कर देती हैं ताकि आइंदा वो इंसानों के काम आ सके. इस तरह बेशुमार एहतमाम जो शहद की तैयारी किए जाते हैं, खुदा ही ऐसा कर सकता था. तिलसमाती तौर पर चाहता अल्लाह रब्बे करीम तो अचानक शहद की नहरें बहा देता, पानी की तरह शहद का चश्मा बहा देता, मगर अल्लाह ने ऐसा नहीं किया. खुदा हर किस्म की कुदरत के बावजूद शहद को असबाब के एक हरदा दर्जे तक कामिल निज़ाम के तहत तैयार करना चाहते हैं ताकि इंसान को भी सबक हासिल हो. वो जाने कि खुदा ने दुनिया का निज़ाम किसी ढंग पर बनाया है और किन कवानीन और आदाब की पैरवी करके खुदा की इस दुनिया में कोई शख्स कामयाब हो सकता है. شہد کی مکھی جس طرح عمل کرتی ہے اس لفظ میں منصوبہ بند عمل کہا جاتا ہے، اس میں ایک پلاننگ موجود ہے۔ یہی اصول انسان کے لیے بھی ہے، انسان بھی صرف اس وقت کوئی بامانی کامیابی حاصل کر سکتا ہے جب وہ کوئی پلاننگ کرے تاکہ اپنے مقصد تک پہنچ سکے۔ منظم اور منصوبہ بند عمل اس دنیا میں کامیابی حاصل کرنے کا واحد یقینی ذریعہ ہے، شہد کی مکھی کے لیے بھی اور انسان کے لیے بھی۔ 416-593-0003 ریڈیو پاکستان ٹورانٹو CMR 101.3 FM، میں آپ کا ہوسٹ دوست ارشد بھٹی ہوں۔

बेहतरीन वक्त है इस बायर्स मार्केट में। अगर आप घर खरीदना चाहते हैं तो टीम भट्टी से राब्ता कीजिए। सही मशवरा और प्रोफेशनल सर्विसेज, कॉल अरशद भट्टी 416-300-5600 या तलहा भट्टी 647-295-7861। फॉर ऑल योर रियल एस्टेट नीड्स कॉल टीम भट्टी 416-300-5600 और 647-295-7861।

0: मॉर्गेज वही जो आपके लिए सही।
1: कॉल मोहम्मद सलमान एट 4372378888। इट्स 4372378888। लाइसेंस नंबर 124588।

इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को दोपहर 12 से रात 12 बजे तक ईद मेलों के लिए मशहूर कैपिटल बैंक्वेट हॉल मिसिसागा में शॉपिंग, खाने, फैमिली एंटरटेनमेंट और रोजाना स्पॉन्सर्स की जानिब से गोल्ड आइटम्स गिव अवे। रोजाना हजारों लोगों की आमद मुतवक्के। वेंडर्स के लिए सुनहरी मौका। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे अर्ली बर्ड प्राइसिंग का फायदा उठाइए। फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग। वेंडर्स और

0: तलहा भट्टी को कॉल मिलाएं।
1: तलहा भट्टी 6472957861 रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स रेजिडेंशियल एंड कमर्शियल प्रॉपर्टीज स्पेशल पैकेजेस फॉर फर्स्ट टाइम होम बायर्स अ मेंबर ऑफ डेडिकेटेड रियल एस्टेट प्रोफेशनल टीम तलहा भट्टी 6472957861
0: तलहा भट्टी
1: 6472957861
2: बहुत खुशबू आ रही है खाने में, ऐसा लग रहा है जैसे घर के पिसे हुए मसालों से बना हो।
3: अरे खुशबू कैसी नहीं होगी, ये हांडी के मसालों का कमाल है जो चुन चुन के इकट्ठे किए गए हैं खास हमारे लिए ताकि ये लज्जत और स्वाद हमें मिल सके।
4: हांडी मसाले बिल्कुल घर जैसा स्वाद।
5: फॉर होलसेल इंक्वायरी कॉल 4167465550 7465550।
6: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूँ और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
7: अगर आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली को कनाडा बुलाना चाहते हैं तो शहबाज अकबर उनकी इंतहाई प्रोफेशनल टीम आपको मुकम्मल कंसल्टेंसी फराहम करेंगे। अगर आप रिफ्यूजी क्लेम करना चाहते हैं या इमिग्रेशन रिफ्यूजी बोर्ड में किसी भी किस्म के अपील करना चाहते हैं, बिजनेस इमिग्रेशन अप्लाई करना हो, स्किल्ड वर्कर क्लास हो, कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास, स्टूडेंट वीजा या सुपर वीजा अप्लाई करना चाहते हो या फिर फैमिली स्पॉन्सरशिप, तो हमारी एक्सपर्ट टीम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करेगी। दो लोकेशन से आपको सर्व करते हैं, ईस्ट में मार्कम एंड शेपर्ड, वेस्ट में हाईवे 10 और स्टील्स का इंटरसेक्शन। अभी रब्ता कीजिए 416-855-9464। शहबाज अकबर साहब के रब्ते के नंबर 416-855-9464। ग्रीन स्टार इमिग्रेशन। The best gourmet pizza with best prices, Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga, or visit pizzapop.ca. Family ke saath dine in karein ya take out. Bachchon aur badon sabhi ki pehli choice Pizza Pop. Laziz aur mazedar tandoori chicken pizza, cheese steak pizza, chicken shawarma pizza. Exclusive family offer: large tandoori chicken pizza, large cheese pizza, two dipping sauce, three cans of pop for $24.99 only. For more information and take out order, call 905-828-0985. It's 905-828-0985. Pizza Pop, 3075 Ridgeway Drive, Mississauga. अगर आपकी कॉरपोरेशन पर कर्जे हैं जिसकी वजह से आप पर्सनली लायबल हो सकते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आप कॉरपोरेट बैंकरप्सी का सोच सकते हैं। इसके लिए अहमद मलिक ऑफ अहमद मलिक कर्जा माफ से राबता कर सकते हैं। साथ साथ अगर अभी तक आपने सीबा लोन पे ऑफ नहीं किया तो याद रखें, दिसंबर से पहले आपको ये लोन पे ऑफ करना होगा। डेडलाइन इज कमिंग सून। अहमद मलिक इस सिलसिले में आपकी मदद कर सकते हैं। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल कर लीजिए 905-783-1922। इट्स 905-783-1922। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाएं। आइकॉन इवेंट स्पेस में शादी, मेहंदी, रिसेप्शन, बर्थडे पार्टीज, कारपोरेट इवेंट्स, गजल और कवाली नाइट्स या किसी भी तकरीब के लिए तीन खूबसूरत और शानदार हॉल्स हैं जहां 1200 तक गेस्ट्स की भरपूर मेहमान नवाजी कर सकते हैं। तमाम हलाल डिशेस पाकिस्तानी शेफ की निगरानी में रिवायती जायकों के साथ तैयार की जाती हैं। इन हाउस स्टेजिंग, ऑडियो विजुअल सिस्टम, 10 प्रोजेक्टर स्क्रीन्स, मुकम्मल टेक्निकल सपोर्ट के साथ। बहुत ही कन्वीनियंट लोकेशन 6887 डिक्सी रोड में सिसागा, एम्पल पार्किंग और क्लोज टू हाईवेज। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड बुकिंग कॉल मिस्टर आलम 437-425-2500 और ब्रॉम्पटन में क्वींस मैनर इवेंट सेंटर 2 ऑक्शन लेन ब्रॉम्पटन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 416-814-3600 क्वींस मैनर इवेंट सेंटर।
8: सिर्फ मॉर्गेजेस, दैट्स राजीव तलवार द मॉर्गेज सुपरस्टार। मॉर्गेज रेजिडेंशियल लो या कमर्शियल, फॉर कस्टमाइज्ड मॉर्गेज सॉल्यूशंस चूज राजीव तलवार। मुश्किल से मुश्किल मॉर्गेज हो, लास्ट मिनट डील हो या फिर क्रेडिट इश्यूज हो, राजीव तलवार का वसी इल्म और तजुर्बा आपका काम आसान कर देगा। तो याद रखिए, मॉर्गेज उनसे मत लीजिए जो मॉर्गेज भी करते हैं, बल्कि मॉर्गेज सिर्फ उनसे लीजिए जो मॉर्गेज ही करते हैं। कॉल राजीव तलवार ऑफ लीडिंग एज मॉर्गेज एक्सपर्ट्स 9058191001 9058191001 license number 12374।
9: याद रखें, अगर आप किसी भी क्रिमिनल ऑफेंस में चार्ज हो गए हैं या आपको कोई भी फैमिली लॉ का मसला है, जैसे कि प्रॉपर्टी डिवीजन, स्पाउसल सपोर्ट, चाइल्ड कस्टडी एंड एक्सेस, या आपका कोई सिविल लिटिगेशन का मामला है, कम्युनिटी के जाने पहचाने और तजुर्बेकार लॉयर ताहिर मजीद से राब्ता कीजिए 6478384773। कानूनी मामलात के लिए उनसे राब्ता कीजिए जो कानून को मुकम्मल तौर पर जानते हैं। फॉर ऑल योर लीगल मैटर्स कॉल ताहिर मजीद 6478384773।
10: कैनेडियन सोसाइटी ऑफ पीस एंड रिलीफ प्राउडली प्रेजेंट्स अली जफर for spiritual Sufi and Qawwali night. Join us on Saturday, May 16th at the Paramount Fine Food Center. Tickets starting from just $29. Available now on Ticketmaster.ca. For sponsorship and info, please call
11: 416-904-2046 or 416-662-7861.
12: CUNY Global Advisor Inc. aapke liye laaye hain ek golden opportunity jisme government aapke pure study program ko sponsor karti hai, saath hi living expenses ke liye non refundable grant bhi deti hai jo 15 se $50,000 salana tak ho sakti hai. Agar aap permanent resident hain, citizen hain ya fir protected person hain to aap iske liye eligible ho sakte hain. Inke zyada tar clients ki age 40 saal ya usse zyada hai. Aap ghar ke comfort se 2 se 3 ghante fully online easy to pass courses kare aur non refundable grants aur living expenses ke haqdar bane. Inki fees sirf $299 hai, wo bhi grant milne ke baad, koi commission nahi. Mazid malumat aur assessment ke liye abhi call kar le 437-264-3175. It's 437-264-3175.
9: جی ہاں 437-264-3175 گلوبل ایڈوائزرنگ کے رابطے کے نمبر ہیں. گورنمنٹ آپ کو یہ سہولت فراہم کر رہی ہے کہ آپ نہ صرف پڑھیں, آپ کورس کریں, سرٹیفیکیشن لیں, بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو پیسے بھی دیتی ہے, اور پیسے بھی وہ جو آپ کو واپس نہیں کرنے ہیں. اور بہت ہی آسان طریقہ ہے, بہت تقریباً ہر شخص جو ہے اس کے لیے ایلیجبل ہو سکتا ہے. جتنی آپ کی انکم کم ہے اتنا آپ کو زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے. 437-264-3175 ناگپال صاحب کے رابطے کا نمبر ہے. کسی قسم کی انفارمیشن کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں, خوش آمدید کہیں گے. ناگپال جی, ویلکم یو ان ویری پاکستان ٹورانٹو.
13: سبھی کو سلام ہماری طرف سے.
9: بہت شکریہ. ابھی جیسے آپ بتایا کرتے ہیں کہ کچھ وقت کم رہ گیا ہے جس میں گرانٹ آپ کو نان ریفنڈیبل گرانٹ ملنے کے لیے شاید 2 مہینے باقی رہ گئے, تو میں چاہوں گا تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتا دیجئے کہ کون کون لوگ ایلیجیبل ہیں ان کورسز کے لیے, اور کیا کوئی ایج لمٹ بھی ہوتی ہے؟
13: ہاں جی, اس میں ایج لمٹ کچھ ہے نہیں.
9: ٹھیک ہے.
13: اور گورنمنٹ فنڈیڈ پروگرامز ہیں. گورنمنٹ آپ کو فیس, گورنمنٹ کالج کو ڈائریکٹلی فیس پے کر دیتی ہے.
9: ٹھیک ہو گیا.
13: ساتھ میں آپ کو رہنے کھانے کے لیے فنڈنگ دیتی ہے. فنڈنگ کے 2 پارٹ ہیں, ایک ہے گرانٹ جو واپس نہیں کرنا ہوتا, ایک ہے آپشنل لون جو کہ 0% پہ ہوتا جب تک آپ انرولڈ ہیں کالج کے اندر. فلی آن لائن پروگرامس ہیں, کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. تعلیم حاصل کرے حکومت سے فنڈنگ کو اپنے اکاؤنٹ میں سیدھے حاصل کرے, میرے نہیں اپنے اکاؤنٹ میں حاصل کرے.
9: صحیح.
13: جیسے کہ ہمارے اتنے ہی کلائنٹ, اتنے ہی سالوں میں ہزاروں کلائنٹ حاصل کر چکے ہیں. ہمیں 7 ایئرز ہو گئے بزنس میں, کوئی کیچ نہیں ہے اس کے اندر. جیسے گورنمنٹ کتنے دیشوں کو اتنی فنڈنگ کر دیتی ہے, ویسے جیسے کل گورنمنٹ نے 275 ملین اور دے دی یوکرین کو.
9: جی.
13: گورنمنٹ اگر تھوڑا سا پیسہ یہاں لگاتی ہے ایجوکیشن میں, ہمیں لگتا ہے کچھ کیچ ہوگا. کوئی کیچ نہیں ہے, کال کریں 437-264-3175. اسسمنٹ کرائیں, 30 سے لے کے 100,000 کی فنڈنگ کو اپنے اکاؤنٹ میں حاصل کریں, جس کا آدھا پیسہ گرانٹ ہے جو واپس ہی نہیں کرنا آپ نے.
9: 437-264-3175. اچھا, فنڈنگ کتنی بن جاتی ہے؟ فرض کر لیں فیملی آف ٹو ہے, فیملی آف فور ہے.
13: ہاں جی, فیملی آف ٹو ہے تو اپ ٹو 45,000, فیملی آف تھری ہے تو اپ ٹو 60,000, فیملی آف فائیو ہے تو اپ ٹو $100,000. دونوں پڑھتے ہیں, ہسبینڈ وائف ایزی ٹو پاس کورس کرتے ہیں, فلی آن لائن گھر کے کمفرٹ سے کرتے ہیں. اسائنمنٹس ہیں, ایگزامینیشن نہیں ہے. پی آر سٹیزن پروٹیکٹڈ پرسن آپ ہونے چاہیے, چاہے آپ اونٹاریو میں کہیں بھی رہتے ہیں آپ ایلیجیبل ہے, چاہے بیری رہتے ہیں کہیں رہتے ہیں, ڈزنٹ میٹر. کیوں؟ کیونکہ فلی آن لائن کورسز ہیں ہمارے پاس آپ کے لیے. بہت لوگوں کو ہیلپ کر چکے ہیں, ہمارے آفس آئے ہیں آپ 200 ایکسپورٹ بلیورڈ میں, آج بھی 6 سے 8 لوگوں کا اپروول آیا جن کے اکاؤنٹ میں فنڈنگ گر چکی ہے.
9: ویری گڈ. 437-264-3175, 437-264-3175. اچھا, ڈاکومنٹیشن کیا ہے, کون سے ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں؟
13: ہاں جی, پہلی بات تو اس میں کوئی, جو یہ آپ کو گرانٹ اور آپشنل لون مل رہا ہے, فنڈنگ مل رہی ہے, کوئی کولیٹرل نہیں ہے, کوئی سیکیورٹی نہیں ہے. گورنمنٹ میں آپ کو ایجوکیشن کے لیے فنڈنگ دیتی ہے, کس کے کھاتے میں؟ آپ کے کھاتے میں. کوئی کریڈٹ اسکور چیک نہیں ہے, آپ بینک کے پاس نہیں جا رہے, گورنمنٹ آپ کو فنڈنگ دے رہی ہے جی. اور اب آپ بولیں گے کہ गवर्नमेंट फंडिंग क्यों दे रही है, तो उन लोगों के लिए मैं बोला जाता हूँ 1 अगस्त 2026 के बाद गवर्नमेंट फंडिंग के सारी लोन में देगी. अभी ग्रांट दे रही 50% पैसा जो वापस नहीं करना आपने
9: जी.
13: और जो लोग कर रहे हैं वो दूसरा तीसरा सातवां कोर्स कर रहे हैं, और जो रह गए हैं वो रह ही जाएंगे.
9: सही है.
13: तो आप कॉल करें, हमारे ऑफिस आए 4372643175.
9: अच्छा, क्या आसान है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं ज्यादातर और घर बैठ के कर सकते हैं?
13: हाँ जी हाँ, फुली ऑनलाइन कोर्स है जो हमारे क्लाइंट्स मेजर चूज करते हैं. डॉक्यूमेंट्स भी क्या लगते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट, बच्चों के बर्थ सर्टिफिकेट, नोटिस ऑफ असेसमेंट, कोई अप्रोच नहीं है, कोई सेटिंग नहीं है, कोई कारीगरी नहीं है. इसलिए हमारी फीस भी $199 से $499 के बीच में है, डिपेंडिंग ऑन प्रोग्राम. कोई कमीशन नहीं है, पैसे भी हम बाद में लेते हैं. अब इसमें ईमानदारी किसकी चेक हो रही है, आप लोगों की, क्योंकि आपने पैसे बाद में हमें देने अपनी ईमानदारी से. क्योंकि पैसे किसके खाते में गिरते हैं गवर्नमेंट से, 30 से लेकर $100,000 तक किसके खाते में गिरते हैं, आपके खाते में, जिसका आधा पैसा क्या है, ग्रांट जो वापिस ही नहीं करना आपने. और जो ऑप्शनल लोन है उसके दो पॉइंट है जी. एक तो वो 0% पे, अगर 1 साल का कोर्स है तो 0% पे वो लोन, और 1.5 साल बाद आपने पे बैक करना स्टार्ट करना है, और 10 साल में आप पे बैक करते हो उस लोन को. मतलब आपने $50,000 की लोन पे $65 का ब्याज देना है एक महीने का 10 साल तक, बस यही ब्याज है.
9: वेरी राइट. आप कह रहे हैं कि कोई एज लिमिट नहीं है, ऑनलाइन कोर्सेज हैं, और जितनी इनकम कम होगी आपकी उतना आपको ज्यादा फायदा, ऐसा ही है?
13: बिल्कुल यही बात है. और इसमें गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स हैं, अभी इनरोल करें, 2 महीने रह गए और 3 बैच रह गए हैं.
9: ठीक.
13: और बाकी उसके बाद तो लोन ही आएगा, तो मुझे लगता नहीं था एडवेंटेज आप लोगों को होगा. करना है तो अभी करें, जो बहुत कम लोग रह गए, बहुत लोग को हम पहले से असिस्ट कर चुके हैं.
9: वेरी राइट. अभी कॉल कर लें 4372643175. थैंक यू वेरी मच नागपाल जी, बहुत शुक्रिया. फिर अगले प्रोग्राम में आपसे बात करते हैं. थैंक यू.
13: थैंक यू.
9: नंबर नोट कीजिए 4372643175, 4372643175. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब से मुलाकात की दरख्वास्त पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने जो फैसला सुनाया है उसमें दरख्वास्त को गैर जरूरी और फजूल करार देकर खारिज कर दिया है. वकील फैसल मलिक ने आज 9 मई GHQ हमला केस में बानी पीटी से मुलाकात की दरख्वास्त दी थी. अदालत ने दरख्वास्त गुजार पर ₹10,000 जुर्माना भी आयद कर दिया है और जुर्माना डिस्ट्रिक्ट बार रावलपिंडी की डिस्पेंसरी में जमा करवाने का हुक्म दिया है. फैसले में कहा गया कि जुर्माना गरीब मरीजों के इलाज पर खर्च किया जाएगा. अदालत ने कहा कि अडयाला जेल में मुलाकातों का तरीकेकार इस्लामाबाद हाईकोर्ट पहले ही तय कर चुकी है. ट्रायल कोर्ट मुलाकातों पर कोई मतजाद हुक्म जारी नहीं कर सकते. बानी पीटीआई GHQ हमला केस में जमानत पर हैं, जुडिशल तहवील में नहीं है. यह भी कहा गया कि बानी पीटीआई से मुलाकात के लिए पहले भी इसी नोए की 2 दरखास्तें दायर की गई. मुतल्लिका फोरम से रजू करने के बजाय दरखास्त गुजार अदालत का वक्त ज़ाया कर रहे हैं. सख्त फैसला है और हो सकता है कोई इंटरटेन ना ही इस किस्म की दरखास्त होती हो, लेकिन साथ जुर्माना भी कर दिया गया है. एक तरह का ये लगता है ऐसे है कि मैसेजिंग हो रही है. 4165930003 रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM. चाय खाना पाकिस्तानी चाइनीज कुजीन है जनाब. अगर आपको पाकिस्तानी स्टाइल के चाइनीज खाने खाने हैं तो आप तशरीफ ले जाइए चाय खाना चाइनीज कुजीन. ये रिजवे में है, 3920 एग्लिंटन एवेन्यू वेस्ट, यूनिट 30 है. और PC लाहौर की शेफ हैं, यहाँ 14 साल से ज़्यादा से कम का तजर्बा है और 100% हलाल है, फ्रेश और अथेंटिक फूड है. नो MSG, नो फ्रोजन मीट एंड नो पैकेज मसाला एट ऑल. तशरीफ ले जाइए. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन बुकिंग कॉल 905-514-7877. रेडियो पाकिस्तान टोरंटो CMR 101.3 FM में आपको होस्ट दोस्त अर्शद भट्टी हूँ.

0: स्पेशल पैकेज डील के लिए कॉल करें 905-275-3555 905-275-3555
1: 918 Dundas Street East Unit 1C Mississauga
2: लीजर्स कॉस्मेटिक्स के वेयर हाउस सेल के चंद ही दिन बाकी हैं 8, 9 और 10 लास्ट वीकेंड है ये आपको यहाँ अप टू 80% तक की सेविंग हो सकती है जिसमें कॉस्मेटिक एंड स्किन ट्रीटमेंट के प्रोडक्ट्स हैं प्रोफेशनल हेयर केयर प्रोडक्ट्स हैं हेल्थ एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं ब्रांड नेम परफ्यूम्स आपको मिल सकते हैं डिज़ाइनर सनग्लासेस इसके अलावा मदर्स डे के लिए बहुत स्पेशल गिफ्ट आपको मिलेंगे जाना है आपको 135 कॉमर्स वैली ड्राइव ईस्ट मार्कहम में lizacosmetics.com पे जाके आप मजीद इन्फॉर्मेशन भी ले सकते हैं इनाम घर ईद शॉपिंग फेस्टिवल 23, 24, 25 और 26 मई को होने जा रहा है कैपिटल बैंकट हॉल मिसागा में एवरीडे गोल्ड प्राइस जो है वो बजरे कुरंदाजी दिया जाएगा इसके अलावा यहाँ पे मदर्स डे का प्रोग्राम है सिंगिंग कॉम्पिटिशन है कपल के लिए प्रोग्राम्स हैं बेशुमार एवरीडे इनाम घर के जरिए इनामत दिए जाएंगे अपने बिजनेस को आप प्रमोट कर सकते हैं स्टॉल बुकिंग और आप स्पॉन्सरशिप के लिए कॉल कर लीजिए शम्स रहमान साहब को 416-710-6777
3: Our loan and credit card bills keep piling up. We have no money to pay them with our limited income.
4: I'm afraid we are going to go bankrupt and lose our house, business and all assets. Is this why we immigrated to Canada?

0: राजधानी। राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने, जिसके स्वाद के सभी है दीवाने। फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए। मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
2: क्या आपकी विंडोज और डोर्स लीक कर रहे हैं या पुराने हो गए हैं, तो यही वक्त है कि उन्हें आप तब्दील करवाएं। राइट विंडो फोर्स आपके लिए मेड इन कनाडा एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स इंस्टॉल करते हैं। एनर्जी स्टार विंडोज और डोर्स से आपके बिजली का बिल अप टू 30% तक कम हो सकता है। स्पेशल ऑफर, विंडोज अभी इंस्टॉल करवाएं और पेमेंट एक साल के बाद कर दें, कुछ डाउन पेमेंट्स के साथ। या अदायगी इजी इंस्टॉलमेंट्स में कीजिए, सम कंडीशंस में अप्लाई। मजीद मालूमात के लिए भी कॉल कर लें 416-206-3200। It's 416-206-3200।
3: जी हाँ, 416-206-3200 आप देखे नंबर है। जितना शदीद मौसम है यहाँ, विंडोज और डोर्स अगर आपके ठीक नहीं है, सर्दियों में सर्दी लगेगी, गर्मियों में गर्मी और साथ साथ बिजली का खर्चा भी। मेड इन कैनेडा और इंतहाई ज़बरदस्त किस्म के विंडोज जो हैं इंस्टॉल करते हैं राइट विंडो फोर्स। सुभानु जी हमारे साथ मौजूद हुआ करते हैं, मजीद डिटेल उन्हें से लेंगे। सुभानु जी, वेलकम यू इन वेरी पाकिस्तान टोरंटो।
4: थैंक यू, गुड इवनिंग बड़ी साहब,
3: बहुत शुक्रिया आपका। कितना सर्द मौसम है और गर्मी भी बाज बात पड़ती है तो कमाल की पड़ती है, तो विंडो की क्वालिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो कैसी होती है जो आप लोग इंस्टॉल करते हैं, उन विंडोज की क्वालिटी क्या है?
4: बट्टी साहब, बहुत तरीके की विंडोज मिलती है मार्केट के अंदर, बट आपको एज अ कस्टमर कैसे आप पता लगाएं कि भाई विंडो वाकई सही है और वो लंबा चलेंगी और लंबा साथ देंगी? तो उसका सबसे बढ़िया तरीका है कि नेचुरल रिसोर्स कनाडा की वेबसाइट है, आप वहां जाएं, विंडो फोर्स टाइप करें और आपको पता चल जाएगा कि हम लोग सर्टिफाइड हैं एनर्जी स्टार विंडोज हैं जिसकी लाइफ टाइम वारंटी है।
3: जबरदस्त।
4: सो बटी साहब, बहुत सारी कंपनीज हैं जो ग्लास के ऊपर सिर्फ 10 साल की वारंटी देती है, फ्रेम्स पे 25 साल देती है।
3: अच्छा।
4: बट हम हर चीज के ऊपर लाइफ टाइम वारंटी देते हैं।
3: अच्छा, जबरदस्त
4: जी।
3: जनाब नंबर नोट कीजिए, 416-206-3200, 416-206-3200। अच्छा, एक तो आजकल जिस तरह की सिचुएशन है, फाइनेंशियल क्राइसिस में तो सभी लोग हैं, आपने भी स्पेशल ऑफर दी हुई है, कुछ डाउन पेमेंट दे दें उसके बाद इंस्टॉलमेंट्स बना लें, क्या फाइनेंसिंग का भी कोई है मुमकिन कि फाइनेंस करवा सकें लोग?
4: बिल्कुल। तो आप ही के लिसनर हैं जिनका हमने अभी क्लोज करा है एक डील, जिसके अंदर बहुत ही आसान किस्तों में हमने उनकी विंडोज चेंज करी है। हम समझते हैं कि किसी के पास भी 10-15-20 हजार इमीडिएटली निकालने को नहीं होते हैं, सो उसका ख्याल करते हुए हमने एक स्कीम निकाली है जिसके अंदर आपको हार्डली 10-15% पेमेंट डाउन करनी है। फर्ज करिए आपके 10-12 हजार का बिल बनता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ $2,000-2,500 शुरू में देने हैं। बाकी आप अगर चाहें तो 3-6 महीने बाद पे कर सकते हैं, या फिर डे वन से अगर आप पे करते हैं तो हार्डली बट्टी साहब 125-140 ऐसे किस्त बनती है महीने की आजकल जी, इंस्टॉलमेंट। और आप ये देखेंगे आजकल मोबाइल के प्लान जो है वही $60-60 महीने के हैं।
3: बिल्कुल सही,
4: राइट।
3: हाँ, और वो, तो अब और वो सारी उम्र भरने पड़ते हैं, ये साल भरना पड़ेगा।
4: जी एग्जैक्टली। सो अगर आप ये भी देखिए कि उसके अंदर आपके सारे घर की विंडोज चेंज हो रही हैं।
3: ठीक है।
4: सो ऐसा नहीं मैं कह रहा हूँ कि 125 आपने एक विंडो का देना, पूरे सारे घर की आपकी मंथली किस्त जो है वो 125 के करीब बनती है।
3: नहीं राजनाब, अभी कॉल करके इन्फॉर्मेशन ले लीजिए, कोट ले लीजिए, आके देखेंगे तमाम चीज आपको बता देंगे। 416-206-3200 आप देखे नंबर। अच्छा, वारंटी तो आपने बता दी, वारंटी लाइफ टाइम वारंटी है।
4: जी। और एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा इस बार कि आप ये भी देखिए सर कि अब आगे आने वाले टाइम के अंदर जो रेट्स जो है वो हर चीज के ऊपर जा रहे हैं, तो अभी जो है हमारे पास जो रेट है वो पुराने अभी भी चल रहे हैं।
3: अच्छा।
4: अभी तक कोई नोटिफिकेशन हमारे पास आई नहीं है मई के महीने में, उम्मीद है हमें पूरी, क्योंकि हवा चल पड़ी है इस तरफ, क्योंकि पेट्रोकेमिकल भट्टी साहब हर चीज में यूज होता है, चाहे वो विंडोज हो, राइट। सो हमारी चीजों में भी पेट्रोकेमिकल का यूज है। डेफिनेटली जो आज 30-12 हजार की है, मैं आपको अगले साल नहीं कह रहा हूँ, मैं आने वाले 3 महीने में कह रहा हूँ, वो 14 हजार की होनी तय है।
3: बिल्कुल सही है जनाब, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो आप इस मौके का फायदा उठा लें, दिस राइट टाइम। आप 416-206-3200 पे रब्ता कर लीजिए। कुछ और ऐड करना चाहेंगे सुमानु जी?
4: बस मैं ये कहना चाहूंगा सर कि जिन लोगों ने भी ये सर्दियां किसी तरह निकाली है और विंडो की हालत खस्ता है और अंदर बिल्कुल मोल्ड दिख रहा है, वेट ना करें। मोल्ड एक बहुत बड़ा रीजन है जिससे घर में बीमारियां फैलती हैं। तो अगर आपकी विंडोज पे कालक आ चुकी है या आपकी ग्लास के ऊपर कालापन आ चुका है या विंडो फॉग हो रही है ऊपर से नीचे, आपके घर के अंदर मॉइस्चर घुस चुका है, इवेंचुअली वो आपके ड्राई वॉल को भी खराब करेगा। बिजली के बिल तो आप बता ही चुके हैं सर।
3: वेरी राइट, अभी कॉल कर लीजिए 416-206-3200, 416-206-3200। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह अगले हफ्ते
4: आपसे
3: मिलवाते हैं। थैंक यू,
4: श्योर, थैंक यू बेटा।
3: नंबर नोट कीजिए, अभी कॉल कर लीजिए 416-206-3200, 416-206-3200, आपकी मंथली इंस्टॉलमेंट्स बना देंगे, आसानी से आप पे कर सकते हैं। चलिए जनाब, वक्त हो चला आपको न्यूज़ क्रिफ लिए चलने का। 24 घंटे मायने शायद बड़े पाकिस्तान डॉट एफ एम पर सुन सकते हैं, हमारा टेलीविजन चैनल है टोरंटो 360 टीवी। रियल स्टेट के बारे से कोई सर्विस चाहिए, टीम भट्टी से रब्ता कीजिए, कॉल तलहा 647-295-7861, 647-295-7861। लिए चलेंगे आपको न्यूज़ की तरफ, जो पेश करें जनाब जुबैरुद्दीन साहब।
5: You're listening to CMR FM 101.3।
2: न्यूज के लिए हमें तावन दिया है अंजुम कुरैशी साहबा ने।
6: खुदा ना करे अगर आपका कार एक्सीडेंट हो गया और आप कानूनी मदद लेना चाहते हैं, तो ना सिर्फ हम आपके हक का जायज ज्यादा से ज्यादा पैसा लेकर दिलवाते हैं, बल्कि अपनी फीस भी आपका क्लेम दिलवाने के बाद ही लेते हैं। और मैं आपकी अपनी अंजुम कुरैशी आपकी अपनी जबान बोलती हूं, और हमारे पर्सनल इंजरी लॉयर्स की टीम आपके क्लेम को प्रोफेशनली हैंडल करते हैं। और अगर अपने क्लेम के सिलसिले में आप हमारे लॉयर के साथ मीटिंग करना चाहते हैं, तो हमारी कंसल्टेंसी बिल्कुल फ्री है। आज ही मुझे कॉल करें, आपके कार एक्सीडेंट केस में आपका इन्फॉर्मेशन लेना आपका हक है। 416-570-0157।
2: न्यूज के लिए ताउन देते हैं आइकॉन इवेंट स्पेस, 6887 डिक्सी रोड मिसागा, डिक्सी डेरी के इंटरसेक्शन, 3 खूबसूरत हाल, 1200 तक अफराद की गुंजाइश, एम्पल पार्किंग। अपने खुशी के लम्हात को यादगार बनाइए आइकॉन इवेंट स्पेस के साथ। मजीद मालूमात के लिए कॉल कीजिए 437-425-2500, इट्स 437-425-2500, आइकॉन इवेंट स्पेस। न्यूज के लिए हमें दावत दिया है टीम भट्टी रियल स्टेट, फॉर ऑल योर रियल स्टेट नीड्स कॉल तलहा भट्टी 647-295-7861, 647-295-7861।
7: बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान टोरंटो है। अब आप जुबैरुद्दीन से खबरें सुनिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खबरदार किया है कि अगर ईरान जौहरी हथियार हासिल करने में कामयाब हो गया तो दुनिया खतरे में पड़ जाएगी, ना ही मशरक वस्ता महफूज रहेगा और ना ही इसराइल बच पाएगा। उनका कहना था कि अमरीका ने ईरान को बुरी तरह शिकस्त दी है और अब ईरान मशीन गन लगी छोटी कश्तियों तक महदूद होकर रह गया है। उनका कहना था कि ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी काम कर रही है और ईरान डील करना चाहता है। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि आबनाए हुरमुज दोबारा खोलने के हवाले से अमरीका, जनूबी कोरिया और